प्रसाद क्रियाचार करे खटकर्मा इतरा ते संसारी अंतर मैल न उतरे हो मैं बिन गुर बाजी हारी। मेरे ठाकर रख ले वो कृपा तारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाओ। शास्त्र वेद सिमरत सब सोदे सब एका बात पुकारी बिन गुर मुक्त ना को उपावे मन वेखो कर बिचारी। आठ साठ मज्जन कर इसनाना भ्रम आए तर सारी अनक सोच करै दिन राती बिन सतगुर अंधियारी। धावत धावत सब जगत आयो अब आए हर द्वारी दुरमत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवां हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख ना बिसराओ मन ते हर हर साध संगत मैं पाया। माई खाट आयो घर पूता हर तन चलते हर तन बैसै हर तन जागत सूता रहाओ। हर तन इशनान हर तन ज्ञान हर संग लाए ध्याना हर तन तुलहा हर तन बेड़ी हर हर तार पुराना। हर तन मेरी चिंत विसारी हर तन लाया धोखा हर तन ते मैं नमृत पाई। हाथ चरियो हर थोका खावो खर्चो तोट न आवै हलत पलत कै संगे। लाद खजाना गुरु नानक कौ दिया एहो मन हर रंग रंगे। गुजरी महला पंजवां जिस सिमरत सब किले विख नासै पितरी होए उधारो सो हर हर तुम सधी जापो जा का अंत न पारो। पूता माता की आसीस निमख न बिसराओ तुम कहो हर हर सदा भजहो जगदीश रहाओ। सतगुर तुम कहो होए दयाला संत।

मन को एह उपदेश दरड़ावै सह सहज गुण गाई। साजन ऐसो संत सहाई जिस भेटे टूटे माया बंद बिसरना कब हूं जाई रहाओ। करत करत अनक बहु भांति नीकी ए ठहराई मिल साधु हर जस गावे नानक पवजल पार पराई। गुजरी महला पंजवा खिन मैं थापो था पनहारा कीमत जाए ना करी राजा रंक करे खिन पीतर नीचे जो तरी। त्याई अपनो सदा हरी सो जन देसा ताका कहां करिए जा मैं करी रहाओ। तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर मन सरन तुम्हारे परी अचेत याने बारक नानक हम तुमरा खो तार करी। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही चरण कमल रिदमाए सुम

सास सास तेरा नाम समारो तुम ही को प्रव्याही, नानक टेक पई करते की होर आस बेडानी लाही। गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निस्यार पोर केस संग दास पगचारो एह मनोरथ मोर। ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर, चित चित वो हर रस न्यारा दो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकर बिनो करो कर जोर, नाम जपै नानक दास तुमरो उधर से आखी फोर। गुजरी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक, आई इंद्र लोक ते ताए साध संगत को जोहे ना सकै मल मल धोवे तो पाए। अब मोहे आए परयो शरणाए, गुहज पाव को बहुत पर जा रहे मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ। सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर रही कंठ उर जाए, जन नानक अंग किया प्रभ करता जा कै कोट ऐसी दास आए। गुजरी महला पंजवा आप जस मिटै होवे जग कीर्त, उंदर गै बैसन पाई है जम की त्रास नास होए खिन मैं, सुख अंध सेती कर जाई है जाते काल न बिरथी जाइए। आठ पहर सिमरो प्रभ अपना मंत्र सदा त्याइए रहाओ। मोहे सरन दीन दुख भंजन तू देह सोई प्रभ पाइए, चरण कमल नानक रंग राते हर दास पैज रखाइए। गुजरी महला पंजवा विश्वंपर जियन को दाता, भगत परे भंडार जाकी सेवा निफल ना होवत खिन मैं करे उधार। मन मेरे चरण कमल संगराज, सगल जी जा को वारा दे ताहू को तू जाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रभ प्राण आधार, हुए सहाय जिस तू रखै तिस कहां करे संसार। गुजरी महला पंजवा जन की पै सवारी आप, हर हर नाम दियो गुरे अवखद उतर गयो सब ताप रहाओ। हर गोबिंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा तार, मिटी ब्याद सर्व सुख होए हर गुण सदा विचार।

आओ मात पिता सुत मीत भाई तिस बना नहीं कोए ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रव्या सोए कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवै काम सरण साधु निर्मला गत होए प्रभ कह नाम आगम दयाल प्रभु ऊचा सरण साधु जोग तिस प्राप्त नानका जिस लिखिया तुरसन जोग गुजरी महला पंजवां आपना गुर सेव सदी रमह गुण गोबिंद सास सास आराध हर हर लह जाए मन की चिंद मेरे मन जाप प्रभ का नाओ सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल थाओ रहाओ साध संग उधार एहो मानो आठ पहरे आराध काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटै सगले उपाद अटाला शेदा भेद स्वामी सरण ताकी आओ चरण कमल आराध हृदय एक सिम लिव लाओ पार ब्रह्म प्रभ दया धारी बख्शली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया गई शंका टूट दोखा नेरा पै बिनासे पाप गए निखूट हर हर नाम की मन प्रीत मिल साध बचन गोबिंद ते आए महान निर्मल रीत रहाओ जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पहे पूर्ण काम सास सास ना बिसर कब हूं ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगंत सदा अकथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर शरण गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महा दीर्घ रोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करण कारण योग मन तन बांछिया जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोबिंद लोचा पूर रहाओ आदि अंते मध्य आसा कुकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोबिंद रमणं काटिया जमजाल काम क्रोध लो मो मूठे सदा आवा गवन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन मिटत जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हर जन संत सर्ब बिद भ्रम ते पुकारे कतै नाही छोट हर चरण सरण अपार प्रभ के दृढ़ गही नानके ओट गुजरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद आराध श्री धर सफल मूर्त करण कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरण अरबिंद उपास काल कलेस मिटंत सिमरन काड जम दूत फास रहाओ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुवाओ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरण को दाता दुख भंजन सुख राए जाहे क्लेश मिटे पै परमा निर्मल गुण प्रभ गाए गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रकाश पाए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहरो हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरह संगत सब उदरै बिन से सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ सरण परयो नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरी अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसियले बरजत चोरी तावै त्रह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावै चेताओ बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ
उर्द मूल जिस साख्त लाहा, चार बेद जित लागे, सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे। पार जात कर अंगन मेरा, पुहप पत्र तत डाला, सर्व जोत निरंजन संभू, छोडो बो जंजाला। सुन सिखवंते नानक बिनवै, छोडो माया जाला, मन विचार एक लिव लागी। पुनरप जन्म ना काला, सो गुरु सो सिख कथियले, सो वै जे जाने रोगी। तिस कारण कामना तंदा नाही, तंदै गिरही जोगी। काम क्रोध अहंकार तजियले, लोभ मोह तिस माया, मन तत अवगत ते आया, गुरप्रसादी पाया। ज्ञान ध्यान सब दात कथियले, सेत बरन सब दूता, ब्रह्म कमल मदत तासर साधं, जगत नाही सूता। महा गंभीर पत्र पाताला, नानक सर्व जो आया, उपदेश गुरु मम पुनै न गर्म, बिख तज अमृत पी आया। गुजरी महला पहला, कवन कवन जाचै प्रभ दाते, ताके अंत न परै सुमार, जैसी पूख होए अब अंतर, तू समरासा देवनहार। ऐ जी जप तप संयम सच आधार, हर हर नाम दे सुख पाई है, तेरी भगत परे पंडार रहाओ। सुन समाद रह लिव लागे, एका एकी शब्द विचार, जल थल तरण गगन तह नाही, आपे आप किया करतार। ना तद माया मग ना छाया, ना सूरज चंद ना जोत्या पार, सर्व लोचन शब्द दृष्ट लोचन अभ्यंतर, एका नदर सोत्र पवन सार, पवन पानी अगन तिन किया, ब्रह्मा

आपन चाहे सो भगत कहिए, अपना प्यार आप लाए, आपे गावे आप सुनावे। इस मन अंधे को मार्ग पाए, अंधन नाचे सकत निवारे, शिव कर नींद ना होई। सकती कर जगत सूता, नाचे टापे अवरो गावे, मनमुख भगत ना होई। सुर नर विरत पख करमी नाचे, मुनजन ज्ञान बिचारी। सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध विचारी। खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुम्हारी। जी जंत सबे ही नाचे, नाचे खानी चारी। जो तुद भावै से ही नाचे, जिन गुरमुख शब्द लिव लाए। से भगत से तत् ज्ञानी, जिसको हुक्म मनाए। एहा भगत सच्चे स्यों लिव लागे, बिन सेवा भगत ना होई। जीवत मरे ता शब्द विचारे, ता सच पावे कोई। माया कै अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत् विचारी। गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिन को कृपा तुम्हारी। एकदम साचा विसरे, सावेला बिरथा जाए। साहे साहे सदा संभालिए, आपे बक्से करे रजाए। सही नाचे जो तुद पावे, जे गुरमुख शब्द विचारी। कहो नानक से सहे सुख पावे, जिन को नजर तुम्हारी। गुजरी महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर बिन जियरा रह ना सके, जो बालक खीरे धारी। आगम्या गोचर प्रभ गुरमुख पाई है, अपने सतगुर कह बलिहारी। मन रे हर कीर्त तरतारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाई है। जिन को कृपा तुम्हारी रहाओ, सनक सनंदन नारद मन सेवै। अंदर जपत रह बनवारी। शरणागत प्रहला जन आए, तिनकी पै सवारी। अलख निरंजन एको वर्त, एका ज्योत मुरारी। सब जाचक तू एको दाता, मांगे हाथ पसारी। भगत जना

कलयुग में नाम निदान भक्ति खटिया, हरि उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंद नाम त्याया, विचे ग्रह गुरबचन उदासी, हो मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुरे अपने विटों, जिन भ्रम पुला मार्ग पाया। महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले, जो देख दीपक पतंग पजाया, पंडित पुल पुल माया वेखै, दिखा किने केहो आन चढ़ाया, दूजे पाए पड़े नित बिखया, नाम दईए खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अहंकार बहु गर्भ वधाया, शादन भोजन ना लही सत पिखया, मन अठ जन्म गवाया, एतड़िया विचों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनो आख सुनाई है, जा कर दे सब कराया, पौड़ी माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अहंकारा, एह जम की सिरकार है, इना उपर जम का डंड करारा, मनमुख जम मग पाईयन, जिन दूजा पाओ प्यारा, जम पर बदे मारियन, को सुने ना पुकारा, जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले, गुरमुख निस्तारा। श्लोक महला तीजा, हौ मैं ममता मोहनी, मनमुखा नो गई खाए, जो मोहे दूजे चित लाए दे, तिन्ना व्याप रही लपटाए, गुर कै शब्द पर जाली है, ता एह विच्चों जाए, तन मन हो वै उजला, नाम वसै मन आए, नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए। महला तीजा, एहो मन केतड़िया, जुग भरमिया, थिर रह न आवै जाए, हर पाणा ता परमायन, कर परपंच खेलो पाए, जा हर बख्से ता गुर मिले, अस्थिर रह समाए, नानक मन ही ते मन मानिया, नाक्ष मरै न जाए। पौड़ी, काया कोटिया पार है, मिलना संजोगी, काया अंदर आप वस रहया, आपे रस भोगी, आप अतीत अलिप्त है, निर्जोग हर जोगी, जो तिस पावे सो करे, हर करे सो होगी, हर गुरमुख नाम ते आई है, लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा, वाहो वाहो आपा खाइंदा, गुर शब्दी सच सोए, वाहो वाहो सिफत सलाह है, गुरमुख बूझै कोए, वाहो वाहो बाणी सच है, सच मिला वाहोए, नानक वाह वाह करत्या प्रपाया, कर्म प्राप्त होए। महला तीजा, वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरे शब्द प्र मिलया आई, वड भागिया वाह वाह मोह कढ़ाई, वाह वाह करै सही जन सोहणे, तिनको परजा पूजने आई, वाह वाह कर्म प्राप्त होवै, नानक दर सच्चै शोभा पाई। पौड़ी, बजर कपाट काया गढ़ पीतर, कूड़ को सत अभिमानी, परम पूले नजर नायावनी, मनमुख अंध ज्ञानी, उपाय कता न लभनी, कर पेख तखे पेखवानी, गुर शब्दी खो लाई अनु, हर नाम जपानी, हर जीव अमृत बिरख है, जिन पिया ते त्रिपतानी। श्लोक महला तीजा, वाह वाह करत्या रैन सुख विहाए, वाह वाह करत्या सदा आनंद होवै मेरी माए, वाह वाह करत्या हर स्यों लिवलाए, वाह वाह करमी बोलै बोलाए, वाह वाह करत्या शोभा पाए, नानक वाह वाह सत्र जाए। महला तीजा, वाह वाह बाणी सच है, गुरमुख लद्दी पाल, वाह वाह शब्दे उचरै, वाह वाह हिरदय नाल, वाह वाह करत्या हर पाया, सहजे गुरमुख पाल, सेवड़ भागी नानका, हर हर दै समाल। पौड़ी,
ਏ ਮਨਾ ਅਤ ਲੋਭੀਆ ਨਿਤ ਲੋਭੇ ਰਾਤਾ ਮਾਇਆ ਮਨਸਾ ਮੋਹਣੀ ਦੈ ਦਿਸ ਫਿਰਾਤਾ ਅੱਗੇ ਨਾਉ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਏ ਸੀ ਮਨ ਮੁਖ ਦੁਖ ਖਾਤਾ ਰਸਨਾ ਹਰਸਨਾ ਚੱਖਿਓ ਫੀਕਾ ਬੋਲਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜੰਤਰ ਬਤਾਤਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਿਸ ਨੂੰ ਵਾਖੀਐ ਜੇ ਸੱਚਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਿਸ ਨੂੰ ਵਾਖੀਐ ਜੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਮਤ ਧੀਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਿਸ ਨੂੰ ਵਾਖੀਐ ਜੇ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਿਸ ਨੂੰ ਵਾਖੀਐ ਜੇ ਦੇਂਦਾ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਨਾਨਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇੱਕੋ ਕਰਸਾ ਲਾਹੀਐ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਕਰਹਿ ਮਨਮੁਖ ਮਰਹਿ ਬਿਖ ਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਾ ਭਾਵਈ ਦੁਖੇ ਦੁਖ ਵਿਹਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੈ ਲਿਵਲਾਏ ਨਾਨਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਕੈ ਪਾਣੈ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੇਵਾ ਭਗਤ ਬਨੀਜੈ ਹਰ ਕੈ ਪਾਣੈ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਸਹਿਜੇ ਰਸ ਪੀਜੈ ਹਰ ਕੈ ਪਾਣੈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਹਰ ਲਾਹਾ ਨਿਤ ਲੀਜੈ ਹਰ ਕੈ ਤਖਤ ਬਹਾਲੀਐ ਨਿਜ ਕਰ ਸਦਾ ਵਸੀਜੈ ਹਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਤਿੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲੀਜੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੇ ਜਨ ਸਦਾ ਕਰਹਿ ਜਿਨ ਕੋ ਆਪੇ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਤਿਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਹਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਨਿਤ ਕਰੇ ਸੋ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੈ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਹਰ ਤਿਨ ਕਹਿ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਿਰਦੈ ਉਚਰਾ ਮੁਖੋਂ ਪੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਿਓ ਨਾਨਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੋ ਕਰਹਿ ਹਉ ਤਨ ਮਨ ਤਿਨ ਕਉ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਉ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਫਲ ਪਾਇਆ ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸਨੋ ਦੇ ਸੋ ਖਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ

कड़ी मोहतन है विसरै नानक रवि है नित पौड़ी सूर बीर वरियाम केन ना होड़ी है फौसतानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी अवधूत देन चमोड़ी है जिन जन लैन रलाए एहो इना लोड़ी है त्रै गुण इनकै वस किने ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपूरा आराध बिखम दल फोड़ी है हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़ी है श्लोक महला पंजवां किलविख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजै नानक बिसरै नाओ महला पंजवां नानक सतगुर भेटे है।

पौड़ी सो सतगुर तन तानो जिन परमगढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया। नाम निदान या खुट गुर दे दारुओ, महारोग बिकराल उतने बिदारुओ। पाया नाम निदान बहुत खजानिया, जिता जन्मया पार आप पछानिया। महिमा कही ना जाए गुर समरथ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अरम अपरंपरा लाखा पेव। सलोक महला पंजवा, उद्यम करेंद्या जियो तू, कमावद्या सुख पुंच, ते आए द्या तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। महला पंजवा, शुभ चिंतन गोबिंद रमण, निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डरपिय, जिस मिल जपिय नाओ तिस जियो अरपिय। आया चित निहाल साहेब बेसुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वाल निरंकार। सब किश तिसके वस ना कोई बाहरा, सो भगता मन उठा सच सुमहरा। तेरे दास त्यायन तुद तू रखन वाले आ, सिर सबना समरथ नजर निहालिया। सलोक महला पंजवा, काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट बासना निवार। राख ले हो प्रभु अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा, खांदिया खांदिया मोह कठा, पै नंदिया सब अंग। नानक त्रिग तिना दा जीविया, जिन सच ना लगो रंग। पौड़ी ज्यों ज्यों तेरा

चार पाव दोए सिंह गुंग मुख, तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेगा पर है, तब कत मूंड लुकई है। हर बिन बैल

भक्त बन महिया अजहो ना पेट अगई है। जन भक्तन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ विसरियो एहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहन बहई है। कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रगराई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जौ भीख मंगावै ता क्या घट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई, भरम भुलाई जिस तू देवै तसै बुझाई। सतगुर मिलै ता से सजाई, किस हो पूजो दूजा नजर न आई। एक पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर धरिए पाओ। जे ओह देओ ता ओह पी देवा, कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला मलै ना लाछै पार मलो, परम लियो बैठो री आई। आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई। कौन कहे किन बुझी है, रमैया या कुल री बाई। रहाओ ज्यो आकाश पंखी आलो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यो जल माजे मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यो आकाश कड़ुवलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जंती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछरे थनो बिटारियो, फूल पावर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो। रहाओ मैं लागर बेरे है भयंगा, बिख अमृत बसे एक संगा। धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पाओ पूज चरावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलो

काहे भया सन्यासी भरमे पुली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ। घर घर खाया पिंड बधाया खिंथा मुंदा माया भूम मसान की पसम लगाई गुरबिन तत नाम पाया। काय जपोरे काय तपोरे काय बिलोवो पाणी लख चौरासी जिन पाई सो सिमरो निर्वाणी। कायक मंडल कापड़िया रे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमर

अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा घर चौथा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमं सत आद भावरतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाओ इच्छस जमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं भव भूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर धर शरणं हर भगत निज नेह केवला हृद कर्मणा बचसा जोगेन किं जगेन किं दानेन किं तपसा गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं भव भूत सर्वगतं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपं गुरप्रसाद राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे जन नानक के प्रभ

कित गली, हर के संत बतावो मार्ग, हम पीछे लाग चली रहाओ। प्रे के बचन सुखाने ही अर, ए चाल बनी है भली, लटरी मदरी ठाकर पाई, ओह सुंदर हर टोल मिली। एको प्रेओ सखिया सब प्रे की, जो पावे पिरसा भली, नानक गरीब क्या करे बिचारा, हर पावे तितराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है, गुरमुख रंग चलू लै राती, हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ। हाँ फिरों दीवानी आवल बावल, तिस कारण हर ढोली है, कोई मेले मेरा प्रीतम प्यारा, हम तिसकी गुलगुली है। सतगुर पुरख मनावो अपना, हरे अमृत पी झोली है, गुर प्रसाद जन नानक पाया, हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार, रहाओ लोकन की चिता।

तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी, हम क्यों कर मिले जूठारी। हमरे जिए होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ेयारी। हमरी मुंदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी। जो भावे त्यों राखो स्वामी, जन नानक शरण द्वारी। देव गंधारी हर के नाम बिना, सुंदर है नकटी। जो बेसवा के घर पूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रगटी। रहाओ जिनके हृदय नाहे हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरगटी। ज्यो निगुरा बहु बाता जाने, ओहो हर दरगह है प्रस्ती। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकटी। नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पाछ शुकटी। शक्का एक देव गंधारी महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुरचरणी चित लाइय, प्रभ होए कृपाल कमर पर गासे। सदा सदा हर त्याई है, रहाओ अंतर एको बाहर एको, समय एक समाई है। घट अवघट रविया सब ठाई, हर पूर्ण ब्रह्म दिखाई है। उस्तत कर है सेवक मुन केते, तेरा यंत्र कतहू पाई है। सुखदाते दुख भंजन स्वामी, जन नानक सतबल जाई है। देव गंधारी माई होन हार सो होई है, राच रहो रचना प्रभ अपनी। कहां लाभ कहां खोई है, रहाओ कह फूले आनंद बिखे सोग। कब हसनो कब रोई है, कब हूं मैल भरे अभिमानी। कब साधु संगत हुई है, कोई न मिटे प्रभ का किया। दूसर नाही अलोई है, कहो नानक तिस गुर बलिहारी। जे प्रसाद सुख सोई है, देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत। मेर तेर तजो अभिमाना, शरण स्वामी की परत। रहाओ जो जो कह सोई पल मानो, नाहिन का बोल कर दो। निमख ना बिसरो ही ए मोरे ते, बिसरत जाई हम मरत। सुखदाई पूर्ण प्रभ करता, मेरी बहुत अयान पजरत। निर्गुण कुरूप कुलीन नानक हौ, आनंद रूप स्वामी भरत। देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं, गावत सुनत जब तो उधार है। बरन्या बरना सब हूं, रहाओ जहते उपजो तही समान्यो। जहते उपजो तही समायो, एह बिद जानी तब हूं। जहां जहां एह देही धारी, रहना पायो कब हूं। सुख आयो पै परम बिनासे, कृपाल हुए प्रभ जब हूं। कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, सा संग तज लब हूं। देव गंधारी मन जो अपने प्रभ पावो, नीचो नीच नीच अत नाना, होए गरीब बुलावो। रहाओ अन के अडंबर माया के बरथे, तासो प्रीत कटावो। ज्यो अपनो स्वामी सुख मानै, ता मैं शोभा पावो। दासन दास रेण दासन की, जन की टैल कमावो। सर्व सुख वडियाई नानक, जीवो मुखो बुलावो। देव गंधारी प्रभ जी तो प्रसाद भ्रम डारियो, तुमरी कृपा ते सबको अपना। मन में यह बिचारियो, रहाओ कोट पराध मिटे तेरी सेवा। दर्शन दुख उतारियो, नाम जपत महासुख पायो। चिंता रोग बिदारियो, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, साधु संग बिसारियो। माया बंद काटे कृपा निध, नानक आप उधारियो। देव गंधारी मन सगल सियान परही, करण करावन हर स्वामी। नानक उठ गही, रहाओ आप मेट पै सरनाई। एह मत साधु कही, प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया। परमा देरा लही, जान परवीन स्वामी प्रभ मेरे, शरण तुम्हारी यही। खिन मैं था पो था पनहारे, कुदरत की

हर प्राण प्रभु सुखदाते, गुरप्रसाद काहूं जाते रहाओ। संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम, तिनको काल ना खाते। रंग तुम्हारे लाल पय है, राम नाम रस माते। महा किलबख कोट दोख रोगा, प्रभ दृष्ट तुहारी हाते। सोवत जाग हर हर हर गाया, नानक गुर चरण पराते। देव गंधारी पंजवा, सो प्रभ जत कत पेख्यो नैनी। सुखदाई जियन को दाता, अमृत जाकी बैनी रहाओ। अज्ञान देरा संति काटिया, जी दान गुर दैनी। कर कृपा कर लीनो अपना, जलते शीतल होनी। कर्म धर्म किश उपजना आयो, नहीं उपजी निर्मल करनी। छाड़ सियाणप संजम नानक, लागो गुर की चरणी। देव गंधारी पंजवा, हर राम नाम जप लाहा। गत पावै सुख सहज आनंदा, काटे जम के फाहा रहाओ। खोजत खोजत खोज बिचारियो, हर संत जना पया। तिना प्राप्त हो निदाना, जिनके कर्म लिखा। सेवड पागी से पतवंते, से ही पूरे साहा। सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक, जिन हर हर नाम विसाहा। देव गंधारी पंजवा, मन कह अंकार अफारा। दुर्गंध पवित्र अपावन पीतर, जोधी सहसो शारा रहाओ। जिन किया ते सिमर प्राणी, जियो प्राण जन तारा। तिसै त्याग अवर लपटावै, मरजन मैं मूद गवारा। अंध कोंग गोंग पिंगल मतहीना, प्रभ राखो रखनहारा। करन करावन हार समरथा, क्या नानक जंत बिचारा। देव गंधारी पंजवा, सो प्रभ नेरै हूं ते नेरै। सिमरत आए गाए गुण गोबिंद, दिन रैन सांझ सवेरै रहाओ। उधर देह दुलभ साधु संग, हर हर नाम जपेरै। करी ना मोहत ना चसा बिलंबो, काल नितै नित हेरै। अंध बिलाते काडो करते, क्या नाही करते रह। नाम आधार दीजै नानक कहो, आनंद सुख घनेरै शके दो। देव गंधारी पंजवा, मन गुरमिल नाम आराध्यो। सुख सहज आनंद मंगल रस, जीवन का मूल बाध्यो रहाओ। कर कृपा

पयो अनुग्रहो मिट्यो मोर्चा। अमोल पदार्थ ला दियो बलिहारे नानक लख बेरा, मेरे ठाकर अगम्यागा दियो। देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे, सफल आया जीवन फलता को पार ब्रह्म लिवलावे। रहाओ सुंदर सुगड़ सूर सो बेता, जो साधु संग पावे। नाम उचार करे हर रसना, बहुन न जो नीत आवे। पूर्ण ब्रह्म रव्या मन तन मह, आना दृष्टि आवे। नरक रोग नहीं होवत जन संग, नानक जिस लड़ लावे। देव गंधारी पंजवा चंचल सुपने ही उर जायो, इतनी ना बुझे कबहू चलना, बिगल पयो संग मायो। रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया, बिखिया एक यो पायो। लोभ सुने मन सो कर माने, बेग तहां उठतायो। फिरत फिरत बहुत श्रम पायो, संत द्वारे आयो। करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी, नानक लियो समायो। देव गंधारी पंजवा सर्व सुखा गुर चरना, कालमल डारन मने सुधारन, ए आसर मोए तरना। रहाओ पूजा अर्चा सेवा बंदन, एह टहल मोहे करना, बिकसे मन होवे परगासा। बहुर ना गर्भ परना, सफल मूर्त परसव संतन की, एह त्याना तरना। पयो कृपाल ठाकर नानक, पर्यो साध की सरना। देव गंधारी महला पंजवा, अपने हर पै बिनती कहिए। चार पदार्थ अनंद मंगल निध, सुख सहज सिद्ध लहिए। रहाओ मान त्याग हर चरणी लागो, तिस प्रभ अंचल गही है। आंच ना लागे अग्न सागर ते, शरण स्वामी की अही है। कोट प्राद महा अकिरत कान, बहुर बहुर प्रभ सही है। करना मैं पूर्ण परमेश्वर, नानक ते शरण ही है। देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा, रोग सोग सब दुख बिनासे, उतरे सगल कलेसा। रहाओ जन्म जन्म के किल बिखनास, कोट मजन इशनाना। नाम निधान गावत गुण गोविंद, लागो सहित्याना। कर कृपा अपना दास कीनो, बंधन तोर निरारे। जप जप नाम जीवा तेरी बाणी, नानक दास बलिहारे। शके तेन देव गंधारी महला पंजवा, माई प्रभ के चरण निहारो, करो अनुग्रहो स्वामी मेरे, मन ते कहो न डारो। रहाओ साधु तूर लाई मुख मस्तक, काम क्रोध बिख जारो। सब ते नीच आत्म कर मानो, मन में ओ सुखता रहो। गुण गावे ठाकरे अबनासी, कलमल सगले चारो। नाम निधान नानक दान पावो, कंठ लाए और तारो। देव गंधारी महला पंजवा, प्रभ जीओ पेखो दर्श तुम्हारा। सुंदर ध्यान तादर रैनी, जी प्राण ते प्यारा। रहाओ शास्त्र वेद पुराण अवलोके, सिमरत तत् विचारा। दीनानाथ प्राण पत पूर्ण, पावजल उदर नहारा। आद जुगाद भगत जन सेवक, ताकी बिखै आधारा। तिन जन की तूर बांछै नित नानक।

प्रेम रसाने जाको उपजी छोड़ न कतहू जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया जन कीनो सौत बेदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई है रहाओ। मोह रोग सोग तन बांधो बोझो नी परमाई है टिकट ना पावे बिन सतसंगत किस आगे जाई रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट घोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महला पंजवा ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ। दोए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्मन त्याया हाथ दे राखे परमेसर सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन कहो बल जाइए जो सबना करे उधार। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुर पै बिनो कहया भय कृपाल दयाल दुख भंजन। मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया। कर मस्तक तार साज निवाजे मोए दुष्ट जो खया पारि उपकारी सर्व सुधारी सफल दर्शन सहजया। कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया। देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो रख नहारे रहाओ। सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछै अंति वारे जब चितवाओ तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे। सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ साध दरसारे मन में राखो एक या सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे। देव गंधारी महला पंजवा प्रभ एह

लिया कत पाई है मन रुचा खोज असंखा अनकत पंथा बिन गुर नहीं पहुंचा। कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा। देव गंधारी महला पंजवा। मैं बहुविध पेख्यो दूजा नाही रीको। खंड दीप सब पितर रव्या पूरयो सब लो रहाओ। अगन अगम अगम्मा कवन महिमा मन जीवे सुन सो। चार या शर्म चार ब्रन्ना मुक्त पय सेव तो। गुर सब दृढ़ाया परम पद पाया दुती गए सुख हो। कहो नानक भव सागर तरिया हर निध पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा। कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

ज्यों बैसंतर काष्ट मझार, बिन संजम नहीं कार्य सार। बिन गुर ना पावै गो, हर जी को द्वार। मिल संगत तज अभिमान, कहो नानक पाए है परम निधान। देव गंधारी पंजवा, जानी ना जाई ता की गात रहाओ। कह पे खारो हाँ कर चतराई, बिस्मन बिस्मे कहन कहात। गण गंधर्व सिद्ध अर साधक, सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक। चतुर्वेद उचरद दिन रात, अगम अगम ठाकरे आगाद। गुण बेअंत बेअंत पन नानक, कहन ना जाई परे परात। देव गंधारी महला पंजवा, त्याय गाए करने हार। पौ नाही सुख सहज आनंदा, अनक ओही रे एक समार रहाओ। सफल मूर्त गुर मेरे माथे, जत कत पेखो तत साथे। चरण कमल मेरे प्राण आधार, समर्थ्या था बड़ा प्रम मेरा। कड़ कड़ अंतर साहेब नेरा, ताकी सरन आसर प्रभ नानक। जाका अंत ना पारा वार, देव गंधारी महला पंजवा। उल्टी रे माने उल्टी रे, सागर से कर उल्टी रे। झूठ है की रे झूठ प्रीत, छुटकी रे मन छुटकी रे। साकत संग ना छुटकी रे रहाओ। ज्यो काजर पर मंदर राखेओ, जो पैसा कालू खीरे। दूरों ही ते भाग गयो है, जिस गुर मिल छुटकी त्रिगुटी रे। मांगो दान किरपाल किरपा निद, मेरा मुख साकत संग ना जुटसी रे। जन नानक दास दास को करियो, मेरा मूंड साध पग्गा हेठ रुलसी रे। राग देव गंधारी महला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब दिन के समर्थ पंथ बिठले, हों बल बल जाओ। गावन पावन संतन तोरे, चरण उमा कह पाओ। रहाओ जासन बासन सहज केल करना मैं, एक अनंत अनुपैठाओ। रिद सिद्ध निद करतल, जग जीवन सर्वनाथ अनेक नाओ। दया मया कृपा नानक कहो, सुन सुन जस जीवाओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग देव गंधारी महला नावा, यह मन नैक ना कहो करे। सीख सिखाए रहे हो अपनी सी, दुर्मत ते ना टरे रहाओ। मद माया कै पयो बावरो, हर जस नहीं उचरे। कर पर पंच जगत को डहके, अपनो उधर भरे। सवान पूछ ज्यो होए ना सूदो, कहो ना कान तरे। कहो नानक भज राम नाम नित, जाते काज सरे। देव गंधारी महला नावा, सब किश जीवत को व्यवहार। मात पिता भाई सुत बंदप, आरफुन गृह की नार रहाओ। तन ते प्राण होत जब न्यारे, टेरत प्रेत पुकार। आदि करी को न रख, करते देत निकार। मृग तृष्णा ज्यो जग रचना, यह देखो हृदय विचार। कहो नानक पज राम नाम नित, जाते हो ते उधार। देव गंधारी महला नावा, जगत में झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत रहाओ। मेरो मेरो सब कहत है, हित स्यों बांध्यो चीत। अंतकाल संगी नह को, ए अचर जह रीत। मन मूर्ख अजू न समझत, सिख दे हारियो नीत। नानक पौजल पार पर, जौ गावै प्रभ के गीत। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निरवैर। अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद।
ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜਾ ਚੌਪਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦੂਜਾ ਦੂਤਨ ਸੰਗਰੀਆ ਭਯੰਗਨ ਬਸਰੀਆ ਅਨ ਕਿਉ ਪਰੀਆ ਤੋ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਕਰੀਆ ਤੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜਰੀਆ ਰਹਾਉ ਮਿਥਨ ਮੋਹਰੀਆ ਅਨ ਕਉ ਮੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਨ ਕਿਰੀਆ ਸਗਲ ਪਟਰੀਆ ਬਿਰਖ ਇਕੱਤਰੀਆ ਬਹੁ ਬੰਧੈ ਪਰੀਆ ਥਿਰ ਸਾਹ ਸਫਰੀਆ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਹਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸਰਨਰੀਆ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ ਹਰ ਕੀ ਗਤਨੈ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਚਹਾਰੇ ਅਰ ਬਹੁ ਲੋਕ ਸਿਆਨੇ ਰਹਾਓ ਛਿਨ ਮੈ ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਉ ਕਰੇ ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਰ ਡਾਰੇ ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖ ਨਾਵੈ ਜੈ ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਸਾਰੀ ਆਪੈ ਦੇਖਣ ਹਾਰਾ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਧਰੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਸਭ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਅਗੰਤ ਅਪਾਰ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਜਿਹ ਸਭ ਜਗ ਪਰਮਾਇਓ ਸਗਲ ਭਰਮ ਤਜ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਨੀ ਚਰਨ ਤਾਹੇ ਚਿਤ ਲਾਇਓ ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜਾ।

एक जन एक मन राम कै रंग मातिया लग संत चरणी पड़े सरणी मंत ना ओ महा बिनवंत नानक जिन नाम पल्लै सही सच्चे साहा।

दुख रोग ना पहु ब्यापै जिन्नी हर हर त्याया संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मनसा ते आई मिलिया पुरखिया पारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच्छ पुनी हमारी बिहागड़ा महला पंजवा कर दूजा एको अंकार सतनाम गुरप्रसाद वद सुख रै निड़िए प्रे प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसौ सदा पगा पग तूर बांछो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रेरंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी मिलन प्रीतम सच मगा बिनवंत नानक तार किरपा रहो चरण संग लगा मेरी सखी सहेलड़ियो प्रभ कै चरण लगे मन प्रे प्रेम कणा हर की भगत मंगे हर भगत पाईए प्रभ ते आईए जाए मिलिए हर जना मान मोह विकार तजिए अर्प तन तन एहो मना बड़ पुरख पूर्ण गुण संपूर्ण प्रभ प्रीत हर हर मिल पगे बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए हर नाम नित नित नित जपै हर नार सुहागणे सब रंग माणे रांड ना बैसई प्रभ पुरख चराणे न दुख पावै प्रभ ते आवै तन ते वटपागिया सुख सहज सोवै किल बिख खोवै नाम रस रंग जागिया मिल प्रेम रहना हर नाम गहना प्रे बचन मीठे भाणे बिनवंत नानक मन इच्छ पाई हर मिले पुरख चराणे तित ग्रह सोहलड़े कोड आनंदा मन तन रव रहया प्रभ परमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री तर गोविंद पत उदारणो प्रभ कृपा तारी हर मुरारी पै सिंध सागर तारणो जो सरन आवै तिस कंठ लावै एहो बिरद स्वामी संदा बिनवंत नानक हर कंत मिलिया सदा केल करंदा बिहागड़ा महला पंजवां हर चरण सरोवण तै करो निवास मना कर मज्जन हर सरे सब किल विख नास मना कर सदा मज्जन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नासे जन्म मरण ना होए तिस कहो कट्टै जमके फासे मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो बिनवंत नानक धार किरपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बिनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावै संत जना प्रभ का जयकारो राम मिल संत गावै खसम पावै हर प्रेम रस रंग पिनिया हर लाभ पाया आप मिटाया मिले चिरी विछुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम्या पारो बिनवंत नानक सदा निर्मलो सच शब्द रुण चुनकारो सुन वड भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी तिसरदै सुमाणी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जसिया प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नामुआ कल कले साधुख हरे हर शरण पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मंतन पाणी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत पए किश कहन ना जाई राम जिसते उपजियाड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल महियल एक रविया न दूजा दृष्टाया बन त्रिण त्रिपवन पूर पूर्ण कीमत कहन ना जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन एह बणत बनाई बिहागड़ा महला पंजवां खोजत संत फिरै प्रभ प्राण आधारो राम तान तन खीन पया बिन मिलत प्यारे राम प्रभ मिलो प्यारे मया तारे कर दया लड़ लाई लीजिय देह नाम अपना जपो स्वामी हर दर्श पेखे जीजिय
समर्थ पूर्ण

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरनाराम, तपत न कतै बुझै बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना, अमै सरोवर पियो अमै सरोवरो पियो, हर हर नामा राम संत संग मिले, जप पूर्ण कामा राम सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण, हर निमुख मनो ना बिसरै, आनंद अंदन सदा साचा सर्वगुण जगदीसर। अगणत ऊचिया पार ठाकर अगम जाको धामा, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकि महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सदमना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचक मिया पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवां शंत अनकाए रातड़िया, वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया, तेरा कोई ना बेली राम कोई ना बेली होए, तेरा सदा पछोता वहे, गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदो से देह आवे। तार वार विशुन्ने न पाप जुड़ते जाम्बा गौनिया केली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूप करै सब जाने जानी राम, लेखा तरम पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी अनक जोन परमाया, महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया, एक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी। बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोहे लोभाणी, बीच ना कोय करे अकिरत कान विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया, पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया। गुण गोविंद गुरमुख ना जपते जपया, तब तो थम गल लातिया, काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछता पिया। बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया, तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम। पतत उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम, पतत उदाहरण शरण स्वामी कृपा निदयाला, अंध कूप ते उदर करते सगल कट प्रपाला, शरण तेरी कट महा बेड़ी एक नाम देह आधारा। बिनवंत नानक कर दे राखो गोविंद दीन दयारा, सो दिन सफल गणिया हर प्रभु मिलाया राम, सब सुख प्रगटिया दुख दूर पराया राम। सुख सहज आनंद विनोद सदही गुण गोपाल नित गाइए, भज साध संगे मिले रंगे बहुत जोन ना ताइए। गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया, बिनवंत नानक आप मिलिया बहुत कतु ना जाया। बिहागड़ा महला पंजवां शंत सुनो बिनंतिया, स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम। दुख हरण कृपा करन मोहन कल कलेसै भंजना, शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना। सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे, अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे। तू समर्थ सदा हम दीन पिखारी राम,
माया मोहे मगन कट लिहो मुरारी राम। लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दुख कमावने। अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने। कार्य अनुग्रह पतत पावन बहुजोन प्रमते हारी। बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम। पल है अकृत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम। अगाध बोधिया पार करते मोहे नीच कछु ना जाना। रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना। त्याग चलती महा चंचल दोह कर कर जोरी। नानक सरण सम्राट स्वामी पैज रख मोरी। जा ते विछड़िया तिन आप मिलाया राम। साधु संग में हर गुण गाया राम। गुण गाए गोविंद सदा नीके कल्याण में प्रगट पए। सेजा सुहावी संग प्रभ कै अपने प्रभ कर ले। छोड़ चिंत अचिंत होए बहुत दुख ना पाया। नानक दर्श पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया। बिहागड़ा महला पंजवा संत बोल सो तरमीड़िया। मोन का तारी राम तू नेत्री देख चलिया। माया ब्योहारी राम संग तेरे कश ना चले बिना गोविंद नामा। देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा। पुत्र कलतरना संग सोबा हस्त कोर विकारी। बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी। राजन क्यों सोया तू नींद परे। जागत कत नाही राम। माया झूठ रुदन केते बिललाही राम। बिललाहे केते महामोहन बिन नाम हर के सुख नहीं। सहस सियाणप उपाव था के जय पाव तै जाई। आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र कट कट आही। बिनवंत नानक जिन साध संगम से पत सेती कर जाही। नरपत जान ग्रहयो सेवक स्याणे राम। सर पर विछड़ना मोहे पछताने राम। हर चंदौरी देख पूला कहां अस्थित पाई है। बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है। हाँ हाँ करतना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने। बिनवंत नानक बिन नाम हर के केते पछताने।

जो हर प्रभाव है सो थिया, सब करन तेरा कराया, सालाहे हो हर सबना ते वड्डा, जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जग जीता, जग जीता सब कोए, नामे कार्ज सिद्ध है, सहजे होए सो होए, गुरमत

का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्त अंध महला चौथा। अंधे चानन ता जा सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़े सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज। नानक शरण करतार की करता रखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै तदों पुछना सेवक बिया। तदो क्या को लेवै क्या को देवै जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख आपे अमृत पिया। आप निरंकार आकार है आपे आपे करै सोथिया। सलोक महला तीजा गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा। अंदन सहज प्यार सदा आनंद गावै गुण साचे अर्ध उर्द उरतार। अंतर प्रीतम वसिया तुर कर्म लिखिया करतार। नानकिया मिलाया नु आपे कृपा तार। महला तीजा कहया कथया ना पाईऐ अंदर रह सदा गुण गाए। विण कर मैं कने ना पायो भौक मोए बिललाए। गुर कै शब्द मन तन भिजै आप वसै मन आए। नानक नदरी पाईऐ आपे ले मिलाए। पौड़ी आपे वेद प्राण सब शास्त्र आप कथा आप भिजै। आपे ही बै पूजे करता आप पर पंच करी जै। आप निर्विर तो आप निर्विरती आपे कथ कथी जै। आपे पुन सब आप कराए आप अलिप्त वर्ती जै। आपे दुख सुख देवै करता आपे बख्श करी जै। सलोक महला तीजा सेखा अंदरों जोर छड तू पाओ कर चल गवाए। गुर कै पै केते निस्तरे पै विच निरपाओ पाए। मन कठोर शब्द भे तू सांत वसै मन आए। शांति विचकार कमावनी सा खसम पाए थाए। नानक काम क्रोध किनै ना पायो पुछो ज्ञानी जाए। महला तीजा मन मुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार। कूड कमावै कूड संग्रह कूड करे आहार। बिख माया तन संच मरे अंते होए सब शार। कर्म धर्म सुच संयम करे अंतर लो विकार। नानक जे मनमुख कमावै सो थाए ना पवै दरगै होए खुआर। पौड़ी आपे खानी आपे बाणी आपे खंडवर पंड करे। आप समुंद आप है सागर आपे ही विच रतन धरे। आप लहाए करे जिस कृपा जिसनो गुरमुख करे हरे। आपे पवजल आप है बोए था आपे खेवट आप तरे। आपे करे कराए करता अवरना दूजा तुझे सरे। श्लोक महला तीजा सदगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। नाम पदार्थ पाई है अचंत वसै मन आए। जन्म मरण दुख कटिए हमै ममता जाए। उत्तम पदवी पाई है सच्चे रह समाए। नानक पूर्व जिन कौ लिखिया तिन्ना सदगुरु मिलिया आए। महला तीजा नाम रत्ता सदगुरु है कलयुग बोइथ होए। गुरमुख होवै सो पार परै जिन्ना अंदर सच्चा सोए। नाम संभाले नाम संग्रह नामे ही पत होए। नानक सदगुर पाया कर्म प्राप्त होए। पौड़ी आपे पारस आप तात है आप।

आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप बेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन। जन नानक सालाहे नर जय, तुद करते तू हर सुखदाता वडन। श्लोक महला चौथा। बिन सतगुर सेवे जी के बंदना, जेते कर्म कुमाहे, बिन सतगुर सेवे ठवर ना पावही, मर जमै आवै जाहे। बिन सतगुर सेवे फिका बोलना, नाम ना वसै मन आए, नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बदे, मारी है मोह कल उठ जाए। महला तीजा। एक सतगुर की सेवा कर है चाकरी, हर नामे लगे प्यार, नानक जन्म सवार ने अपना, कुल का करन उधार। पौड़ी। आपे चाट साल आप है पादा, आपे चाटड़े पण कौवाने, आपे मिता आपे पिता माता है आपे, आपे बालक करे सियाने। एक थै पड़ बुझै सब आपे, एक थै आपे करे आने, एक ना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाने। जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगह जाने। श्लोक मरदाना पहला। कल कल वाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी।

अयुनी सह पंगुर प्रसाद राग वढ़ंस महला पहला कर पहला अमली अमल ना अंबड़ मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावे सब कोए हाँ वारी वन्या खनिए वन्या तो साहेब के नामे रहाओ साहेब सफलियो रुखड़ा अमृत जा का नाओ जिन पिया ते तृप्त पए हों तिन बरहा रह जाओ मैं की नजर ना आ वही वसै हबिया नाल तिखा तिहाया क्यों लह जा सर पीतर पाल नानक तेरा बाणिया तू साहेब मैं रास मन ते तोखा तां लह जा सिफत करी अरदास वढ़ंस महला पहला गुणवंती सहोरावया निर्गुण कूके काए जे गुणवंती थी रहे ता भी सहोरावन जाए मेरा कंतरी सालू की तन अवरा रावे जी रहाओ करनी कामन जे थी है जे मन तागा होए मानक मुल ना पाई है लीजे चित परोए राहो दसाई ना जुलाया खामड़ी आस तैं सह

जाए रहाओ। हम सब शरीर है, हम उपत होए, हम वड्डा गुबार है, हम विच बुझ न सकै कोए, हम विच भगत ना होवई, हुक्म ना बुझिया जाए, हम विच जियो बंद है, नाम वसै मन आए। नानक सतगुर मिले हम गई ता सच वसया मन आए, सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए। वडहंस महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेज एक एको प्रभ ठाकर गुरमुख हर रावे सुख सागर मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम हाँ वार वार अपने गुरु कौ जासा रहाओ। मैं अवगण भरपूर शरीरे हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया से मैं गुण नाही हाँ क्यों मिला मेरी माया हाँ कर कर थाका उपाप बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे। वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हाँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी हाँ क्यों कर पिर कौ मिलो एयानी जो पिर भावे सा सुहागण साई पिर कौ मिले सियाणी रहाओ। मैं विच दोस हाँ क्यों कर पिर पावा तेरे अनेक प्यारे हाँ पिर चित ना आवा जिन पिर रावे आ सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हाँ क्या करी दुहागण नित सुहागण।

जल थल महियल रहया परपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण परयो नानक हर द्वारे। वढांस महला पंजवा, तू वरदाता अंतर जामी। सब मैं रविया पूर्ण प्रभ स्वामी, मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा। हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संतां धूरे। चरण कमल हृदय उरधारे, तेरे दर्शन कौ जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढांस महला पंजवा, साध संग हर अमृत पीजै।

रतन जवाहर हर माणक लाला, सिमर सिमर प्रपय निहाला। जात कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभु।

सच कमाई है, जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है, लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है। जिथे जाए बहिया भला कहिए, सुरत शब्द लिखाई है, काया कूड़ विगाड़ काहे नाई है। ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, अमृत हर का नाम मेरे मन पाया।

नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया ता मैं कहया कहण जा तुझै कहाया वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसै ना आख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आ मजावना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना जो दे सहना मने कहना आखिया आख नाही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना सब

ऐसो करे किश पुण दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन्ना मिलिया कर्म होवा तुर कदे सब उपाई अन आप आपे नदर करे वढांस महला पहला करहो दया तेरा नाम वखाणा सब उपाई है आप आपे सरबे समाणा सरबे समाणा आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझी की है राजे एक ना पिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत भरम भुलाना सदा दया करो अपनी तां नाम खाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दू गया सुख आए समाणा गावन सुर नर सुगड़ सुजाना सुर नर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे माया मोहे चेतै नाही ऐला जन्म गवावे एक मूड मुगद ना चेतै मूले जो आया ते जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना तेरा भक्त सुहावा अमृत तेरी बाणी सेवक सेवै पाओ कर लागा साओ प्राणी साओ प्राणी तिन्ना लागा जिन्नी अमृत पाया नाम तेरा जोए राते नित चढ़ै सुवाया एक कर्म धर्म ना होए संजम जामना एक पछाणी वक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी हाँ बलिहारी साचे नावै राज तेरा कबो ना जावै राजू ता तेरा सदा निश्चल एहो कबो ना जावै चाकर ता तेरा सोए होवै जोए सहि समावै दुश्मन ता दुख ना लगै मूले पाप नेड़ ना आवे हाँ बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावै जुगै जुगंतर भगत तुम्हारे कीर्त करै स्वामी तेरे द्वारे जपै ता सा

राम ए चुकावहे गुर प्रसादी करो कृपा लेहो जम ओबारे जुगा जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा लाख्या पारा क्यों कर करो बेनंती हो आख ना जाना नदर करे ता सच पछाणा साचो पछाणा ताम तेरा जाम आप बुझावे दुख भूख संसार किए सो चुकावे बिनवंत नानक जाय सहसा बुझे गुर विचारा वड्डा साहब है आप अलख अपारा।

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेवने अपना अंतर सबद्या पारा अंतर सबद्या पारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मनमुख माया।

तुझको एक हो जाता। जत सत संयम कर्म कमावे, बिन गुर गत नहीं पाई, नानक तिसनो शब्द बुझाए, जो जाए पवै हर शरणाई, जो हर मत दे साई उपजै, होर मत ना काई राम, अंतर बाहर एक तू आपे दे बुझाई राम, आपे देह बुझाई अवरना भाई, गुरमुख हर रच आखिया, दर सच है सदा है साचा, सच है शब्द सुपाखिया, घर मैं निज कर पाया, सतगुर दे वडाई, नानक जो नाम रते सही महल पायन, मत प्रवान सच साई, वडांस महला चौथा शंत, एको अंकार सतगुर प्रसाद, मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम, हर हर हर हर नाम मेरा मन वसाई राम, हर हर नाम मेरा मन वसाई, सब दुख विसार नहारा, वडभागी गुर दर्शन पाया, तन तन सतगुरु हमारा, उठत बैठत सतगुर सेवो, जित सेव ऐ सांत पाई, मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई, हो जीवा सतगुर देख सर से राम, हर नाम दृढ़ाए, जप हर हर नाम विगसे राम, जप हर हर नाम कमल परगासे, हर नाम नवंग निद पाई, हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सह समाध लगाई, हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसे, हो जीवा सतगुर देख सर से, कोई आन मिलावे, मेरा सतगुर पूरा राम, हौ मन तन देवा, तिस काट शरीरा राम, हौ मन तन काट काट तिस देई, जो सतगुर बचन सुनाए, मेरा मन बैराग पया बैरागी, मिल गुर दर्शन सुख पाए, हर हर कृपा करो सुखदाते, देहो सतगुर चरण हम धूरा, कोई आन मिलावै, मेरा सतगुर पूरा, गुर जेवड़ दाता, मैं अवर न कोई राम, हर दानो हर दान देवै, हर पुरख निरंजन सोई राम, हर हर नाम जिनी आराध्या, तिनका दुख परम पौ पागा, सेवक पाए मिले वडभागी, जिन गुर चरनी मन लागा, कहो नानक हरिया मिलाए, मिल सतगुर पुरख सुख होई, गुर जेवड़ दाता, मैं अवर ना कोई, वडहंस महला चौथा, हाँ गुरबिन खरी निमानी राम, जग जीवन दाता, गुर मिल समाणी राम, सतगुर मिल हर नाम समाणी, जप हर हर नाम ते आया, जिस कारण हाँ टूंडेंदी, सो सज्जन हर कर पाया, एक दृढ़ हर एको जाता, हर आत्म राम पछाणी, हाँ गुरबिन खरी निमाणी, जिन सतगुर पाया, तिन हर प्रभ मेल मिलाए राम, तिन चरण सिरे वै, हम लागे तिन कै पाए राम, हर हर चरण सिरे वै तिनके, जिन सतगुर पुरख प्रभ त्याया, तू वडदाता अंतर जामी, मेरी सरदा पू हर राया, गुरसिख मेल मेरी सरदा पूरी, आंदन राम गुण गाए, जिन सतगुर पाया, तिन हर प्रभ मेल मिलाए, हौ वारी गुरसिख मीत प्यारे राम, हर नाम सुनाए, मेरा प्रीतम नामा दारू राम, हर हर नाम मेरा प्राण सखाई, तिस बिन कड़ी निमख नहीं जीवा, हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरमुख अमृत पीवा, हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे, हौ वारी गुरसिख मीत प्यारे, हर आपे पुरख निरंजन सोई राम, हर आपे मेले करै सो होई राम, जो हर प्रभ पावै सोई होवै, अवर न करना जाई,
ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਰ ਥਾਕੇ ਸਭ ਚਿਤਰਾਈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਰ ਆਪੇ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ, ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਹਮ ਪਾਇਆ ਰਾਮ, ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ, ਅਗਿਆਨਾ ਦੇਰ ਬਿਨਾਸੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਜਪਿਆ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸੇ, ਜਿਨ ਕਉ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ, ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਹਮ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਰਾਮ, ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵੈ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਿਖਾਈ ਰਾਮ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਿਖਾਈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀਂ, ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਛਡਾਇਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ

जिनी दर्शन जिनी दर्शन सतगुरु पुरख ना पाया राम, तेने फल जन्म सब बिरथा गवाया राम। ने फल जन्म तेन बिरथा गवाया, ते सागत मोए मर चूरे, कर होंदे रतन पदार्थ भूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिनका दर्शना करी आओ, जिनी हर हर नाम ना त्याया, जिनी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया। हम चात्रक दीन, हर पास बेनंती राम, गुरमेल गुरमेल मेरा प्यारा, हम सतगुर करै भक्ति राम। हर हर सतगुर करै भक्ति, जा हर प्रभ कृपा तारे, मैं गुरबिन अवरना कोई बेली, गुर सतगुर प्राण हमारे। कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चात्रक दीन, हर पास बेनंती। वड़हंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुर मेल सुदाता राम। हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम, सतगुर पास हर बास पूछे, जिन नाम पदार्थ पाया, पाए लगे नित करै बिनंती, गुर सतगुर पंथ बताया। सोई भगत दुख सुख समत कर जाने, हर हर नाम हर राता, हर कृपा कर गुर सतगुर मिल सुखदाता। सुन गुरमुख नाम, सबिन से हो मैं पापा राम, जप हर नाम, लथे अड़े जगतापा राम। हर हर नाम जिनी आराध्या, तिनके दुख पाप निवारे, सतगुर ज्ञान खड़ग हथ दीना, जम कंकर मार बिदारे। हर हर हर प्रभ कृपा तारी, सुखदाते दुखलाथे पाप संतापा, सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हम मैं पापा। जप हर नाम, मेरा मन पाया राम, मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरुत पय शरीरा, अंदन सह समाद हर लागी, हर जपया गैर गंभीरा। जात नाम जिन त्याया, तिन परम पदार्थ पाया, जप हर नाम, मेरा मन पाया।

तू दुख पंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया। सतगुर पेट राम रस पाया, जन नानक नाम उदारे। हर तारो कृपा कर, कृपा लिहो उबारे राम। वडहंस महला।

तन मानस जन्म पुन पाईया राम, मानस जन्म वड पुन्ने पाया, देह सो कंचन चंगड़िया, गुरमुख रंग चलूला पावे, हर हर हर नवरंगड़िया, एह देह सो बांकी जित हर जापी, हर हर नाम सुहाविया, वड भागी पाई नाम सिखाई, जन नानक राम्यो पाई।

आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम ले हां रोवे बिरहा तन का अपना साहेब समाले हां साहेब समाल है पंथ निहाल है असा पे उठे जाना जिसका किया तिन ही लिया हुआ तसे का पहना जो तिन कर पाया सो आगे आया असी के हुक्म करेहा आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम ले हां मरना मंदा लोका आखिए जे मर जाना ऐसा कोए सेवो साहेब समर्थ अपना पंथ सुहेला आ गए होए पंथ सुहेले जावो ता फल पावो आ गए मिले वडाई भेटे स्यों जावो।

है। मरण मुनसासु रिया हक है, जो होए मरण परवानो, सूरे से ही आज्ञा आखी है, दरगह पावे साची मानो, दरगह मान पावे पत स्यों जावे, आगे दुख न लागे, कर एक ते आवे ता फल पावे, जित सेवे पहु भागे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरे परवानो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है ओ संसारो, कीता वेख साहब अपना, कुदरत करे बिचारो, कुदरत बिचारे तारण तारे, जिन किया सो जाने, आपे वेख आपे बूझे, आपे हुक्म पछाणे, जिन किश किया सोई जाने, ताका रूपया पारो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है एहो संसारो, वडहंस महला पहला दखनी, सच सरंदा सच्चा जानिए, सचड़ा पर्वत गारो, जिन आपी ने आप साजिया, सचड़ा लाखिया पारो, दोए पुड़ जोड़ विछोड़ियान, गुरबिन कोरिया दारो, सूरज चंद सिरजियान, अहनिस चलत विचारो, सचड़ा साहेब सच तू, सचड़ा देह प्यारो रहाओ, तुद सिरजनी मेदनी, तुद सिरजी मेदनी, दुख सुख देव नहारो, नारी पुरख सिरजिया, बिख माया मोह प्यारो, खानी बाणी तेरिया, देह जिया आधारो, कुदरत तख्त रचाया, सच नवेण नहारो, आवागमन सिरजिया, तू थिर करना हारो, जमन मरना आए गया, बदक जियो बिकारो, पूंडड़ै नाम विसारिया, बूढ़ड़ै क्या तिस्चारो, गुण छोड़ बिखलदया, अवगुण कावण जारो, सदड़े आए तना जानिया, हुक्म सचे करतारो, नारी पुरख विछुनिया, विछड़िया मिलन हारो, रूप ना जाने सोहनिया, हुक्म बदी सरकारो, बालक बिरत ना जाननी, तोन हेत प्यारो, नौदर ठाके हुक्म सचै, हंस गया गैनारे, सा तन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया, मृत कड़ा अंगनड़े बारे, सुरत मुई मरमाइए, महल रुनी दरबारे, रवो कंत में लियो, सच्चे के गुण सारे, जल मल जाली ना वालिया, कपड़ पटिया बारे, वाजे वजे सच्ची बाणिया, पंच मोए मन मारे, जानी विछुनड़े मेरा मरण भया, त्रिग जीवन संसारे, जीवत मरे सो जानी है, फिर सचड़ा हित प्यारे, तुसी रोवो रोवन आई हो, झूठ मुठी संसारे, हाँ मुठड़ी तंदे तावनिया, फिर छोड़ियाड़ी विदन कारे, कार कार कंत महेलिया, रूड़े हित प्यारे, मैं फिर सच सलाहना, हौरे सियाड़िए नाम पतारे, गुर मिलिया वेस पलटिया, सा तन सच सिंगारो, आवो मिलो सहेलियो, सिमरो सिरजन हारो, बैयर नाम सुहागणी, सच सवारन हारो, गावो गीत ना बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो, वडहंस महला पहला, जिन जग सिरज समाया, सो साहिब कुदरत जानो वा, सचड़ा दूर ना पाली है, कटकट शब्द पछाणो वा, सच शब्द पछाणो, दूर ना जानो, जिन एह रचना राची, नाम ते आए ता सुख पाए, बिन नामे बिड़काची, जिन थापी बिद जाने सोई, क्या को कहे वखाणो, जिन जग थाप वताया जालो, सो साहिब परवानो, बाबा आया है उठ चलना, अद पंद है संसारो वा, सिर सिर सचड़े लिखिया, दुख सुख प्रभ विचारो वा, दुख सुख दिया जेहा किया, सो निबह जी नाले, जेहे कर्म कराए करता, दूजी कार ना पाले, आप निरालम तंद बांधी, कर हुक्म छडावन हारो, अज कल कर दिया काल व्यापै, दूजे पाए विकारो, जम मार्ग पंथ ना सुजई, उजड़े अंध गवारो वा, ना जल लेप तो लाइया, ना भोजन प्रकारो वा,
ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾਪੜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਉਬੋ ਨਾ ਦਿਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਜਮਨ ਨਾਹੀ ਪਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਪਾਰੋ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕੋ

अपने गुर कहो तन मन दीजै ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे सचड़ा आप जगत पाया गुर बिन कोर अंधारो आप मिलाए आप मिलाए आपे दे प्यारो आपे दे प्यार।

ज्ञान रतन काट चानन होवा नानक नाम प्यारो सचड़ा आप जगत उपाया गुरबिन कोर अंधारो। वड़हंस महला तीजा एहो शरीर जजरी है इसनों जर पहुंचा आए गुर राखे से उबरे होर मर जमै आवै जाए होर मर जमै आवै जावै अंत गए पछतावै बिन नामै सुख ना होई ऐथै कमावै सो फल पावै मनमुख है पत खोई। जमपुर कोर अंधार महागुबार नात थै पैण ना पाई एहो शरीर जजरी है इसनो जर पहुंचै आई। काया कंचन ता थीऐ जा सतगुर ले मिलाए भ्रम माया विचों कटियै सचड़ै नाम समाए सच्चै नाम समाए हर गुण गाए मिल प्रीतम सुख पाए सदा आनंद रह दिन राती विचों हो मैं जाए। जिनी पुरखी हर नाम चित लाया तिनकै हौं लागो पाए काया कंचन ता थीऐ जा सतगुर ले मिलाए सो सच्चा सच सा लाहीऐ जे सतगुर दे बुझाए बिन सतगुर परम भुलाणिया क्या मोह देसन आग्या जाए क्या देन मोह जाए अवगुण पछताए दुखो दुख कमाए नाम रतिया से रंग चलूला पिरकै अंक समाए। तिस जेवड़ियावर न सूझई किस आग्या कहिया जाए सो सच्चा सच सा लाहीऐ जे सतगुर दे बुझाए। जिनी सचड़ा सच सा लाहिया हौं तिन लागो पाए से जन सच्चे निर्मले तिन मिलिया मल सब जाए तिन मिलिया मल सब जाए सच्चै सरन आए सच्चै सहज सुभाए नाम निरंजन अगम्या गोचर सतगुर दिया बुझाए। आंदन भगत करै रंग राते नानक सच समाए जिनी सचड़ा सच त्याया हौं तिनकै लागो पाए। वडहंस की वार महला चौथा लला बह लीमा की धुन गावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला तीजा। शब्द रते वडहंस है सच नाम उर तार सच संग्रह सद सच रह सच्चै नाम प्यार। सदा निर्मल मैल न लगई नदर कीती करतार नानक हौं तिन कै बलिहारनै जो अंदन जपै मुरार। महला तीजा मैं जानिया वडहंस है ता मैं किया संग जे जाना बग बपड़ा ता जन्म ना देंदी अंग। महला तीजा हंसा वेख तरंदिया बगा पे आया चाओ डुब मोए बग बपड़े सिर तले उपर पाओ पौड़ी। तू आपे ही आप है आप कारण किया तू आपे आप निरंकार है कोई अवर ना बिया तू करण कारण समरथ है तू करे सोथिया। तू अण मंगया दान देवना सबना हां जिया सब आखो सतगुर वाहो वाहो जिन दान हर नाम मुख दिया। सलोक महला तीजा पै विच सब आकार है निरपौ हर जियो सोए सतगुर सेवै हर मन वसै तिथै पौ कदे ना होए। दुश्मन दुख तिसनो नेड़ न आवै पोहे न सकै कोए गुरमुख मन विचारिया जो तिस पावै सो होए। नानक आपे ही पत रख सी कार्ज सवारे सोए। महला तीजा एक सज्जन चले एक चल गए रेंदे पी फुन जाहे जिनी सतगुर ना सेवो से आए गए पछताहे। नानक सच रते से ना विछड़ै सतगुर सेव समाहे पौड़ी। तिस मिलिया सतगुर सज्जन जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिया सतगुर प्रीत मैं जिन हम मैं विचो मारी। सो सतगुर पूरा तन तन है जिन हर उपदेश दे सब सिरट सवारी नित जपियो संतो राम नाम पाओ जल बिखतारी। गुरपूरै हर उपदेसिया गुर विटड़ो हौ सदवारी। सलोक महला तीजा
सतगुर की सेवा चाकरी सुखी हूं सुखसार ऐथे मिलन वड़ियाईया दरगह मुख द्वार सच्ची कार कमावनी सच पहनण सच नाम आधार सच्ची संगत सच मिलै सच्चे नाए प्यार सच्चे शब्द हरख सदा दर सच्चे सच्यार नानक सतगुर की सेवा सो करै जिसनो नजर करै करतार महला तीजा होर विडाणी चाकरी त्रिग जीवन त्रिगवास अमृत छोड़ बिख लगे बिख खटना बिख रास बिख खाना बिख पहनना बिख के मुख गिरास एथे दुखो दुख कमावना मुया नरक निवास मन मुख मेह मैले शब्द ना जाननी काम क्रोध विनास सतगुर का पाओ छोड़या मन अठ कम न आवे रास जंपर बदे मारिया को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवो साध जन जिन हर हर नाम दृढ़ाया सो सतगुर पूजो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया ते सतगुर की सा पगी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिलिया पुख गई पेखी पुख ना जाए दुख लगे घर घर फिरे अगे दूनी मिले सजाए अंदर सहज ना आयो सहजे ही ले खाए मन हठ जिसते मंगना लेना दुख मनाए इस पेखे थावों गिरों भला जिथों को बरसाए सबदे रते तिना सोजी पई दूजे परम भुलाए पये किरत कमावना कहना कछू ना जाए नानक जोत पावै से भले जिनकी पत पावै थाए महला तीजा सतगुर सेव है सदा सुख जन्म मरण दुख जाए चिंता मूल ना हो वही है चिंत वस है मन आए अंतर तीर्थ ज्ञान है सतगुर दिया बुझाए मैल गई मन निर्मल होवा अमृत सा तीर्थ नाए सज्जन मिले सज्जना सच्चा शब्द सुभाए कर ही परचा पाया ज्योति ज्योत मिलाए पाखंड जम काल ना छोड़ई ले जासी पत गवाए नानक नाम रते से उबरे सच्चे स्यों लिवलाए पौड़ी तित जाए बहो सत संगति जिथे हर का हर नाम बिलोई है सहजे ही हर नाम लेहो हर तत ना खोई है नित जप्यो हर हर दिन सरात हर दरगह ढोई है सो पाए पूरा सतगुरु जिस तुर मस्तक ललाट लिखोई है तिस गुर कहो सब नमस्कार करो जिन हर की हर गाल गलोई है श्लोक महला तीजा सज्जन मिले सज्जना जिन सतगुर नाल प्यार मिल प्रीतम तिनी त्याया सच्चे प्रेम प्यार मन ही ते मन मान्या गुर कह सबदया पार एह सज्जन मिले ना विछड़ै जया मिले करतार एक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया शब्द ना करह विचार विछड़िया का क्या विछड़ै जिन्ना दूजे पाए प्यार मन मुख सेती दोस्ती थोड़िया दिन चार इस प्रीति टुट दी विलम ना हो वई इत दोस्ती चलन विकार जिन्ना अंदर सच्चे का पाओ नाही नाम ना करै प्यार नानक तिन स्यों क्या कीचै दोस्ती जे आप भुलाए करतार महला तीजा एक सदा

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सहिसमाणी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा किल बिख कटणु हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक ना वरते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे। गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसिया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुख अंदा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हों मैं बंधन कमाए जमन मरन सरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हों मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम नाम सुख होई। त्रै गुण सब तेरे तू आपे करता जो तू करै सो होई। नानक राम नाम निस्तारा शब्दे हम मैं खोई। सोरठ महला।

अरे मन मुग्ध्या चेत चंचल चेत तुम ऐसी हृदय ना आई, प्राण पत त्याग अंतू रचिया उर ज्यो संग बैराई। सोग ना व्यापै आप ना थापै, साध संगत बुद्ध पाई। साकत का बकना इउ जानो जैसे पवन चुलाई। कोट परादा शादे ओहे मनो कहना कछु ना जाई। जन नानक दीन सरण आयो प्रभु सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा पुत्र कलतर लोक ग्रह बनता। माया संबंधे ही अंत की बार को खरा ना होसी। सब मिथ्या असने ही रे नर काहे पपोरो देही। उड़ जाए गो तुम बादरो एक पाजो राम सने ही रहाओ। तीन संगियां कर देही कीनी जल कूकर पस में ही। होए आमरो ग्रह मैं बैठा करण कारण बिसरोही। अनक पांत कर मणिये साजे काचे ताग परोही। टूट जाए गो सूत पापरे फिर पाछे पछतोही। जिन तुम सिरजे सिरज सवारे तिस ध्यावो दिन रह नेही। जन नानक प्रभ कृपा धारी मैं सतगुर ओट गहे ही। सोरठ महला पंजवा गुर पूरा पेटियो वड भागी। मने भया परगासा कोय ना पहुंचन हारा दूजा। अपने साहिब का परवासा अपने सतगुर कै बलिहार। आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारे रहाओ। अंतर जामी करण हारा सोई खसम हमारा। निरपो पै गुर चरणी लागे एक राम नाम आधारा। सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है पी हो बनहारा। कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा। वड्डी वडे आई अचरज शोभा कारज आया रासे। नानक कौ गुरपुरा भेटियो सगले दुख बिनासे। सोरठ महला पंजवा सुखिए कौ पेख सब सुखिया। रोगी कै भाण सब रोगी करण करावन हार स्वामी। अपन हाथ संजोगी मन मेरे जिने अपना भरम गवाता। तिसकै पाणे कोई न भूला जिन सगलो ब्रह्म पछाता रहाओ। संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी। हाँ मैं रोग जाका मन व्यापत ओह जन्म मरे बिललाती। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया ता कौ सर्ब परगासा। अज्ञान अंधेरै सूजस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने नानक एहो सुख मांगे। जह कीर्तन तेरा साधु गावे तह मेरा मन लागे। सोरठ महला पंजवा तन संतन का तन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्ब कुशल तब थिया। संतन बिन अवर ना दाता बिया जो जो शरण पर साधु की सो पार गरामी किया रहाओ। कोट प्राद मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाई है। इहां सुखिया गै मुख उजल जन का संग वड भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केतक उपमा कही है। अगमा गोचर सद्य अविनाशी शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराध

जेह जन ओट गही प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरणे जेह नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गरणे जेह गुरमान प्रभु लिव लाई ते महा आनंद रस करया जेह प्रभु बिसार गुरते बेमुखाई ते नरक कोर मैं परया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय पय मगन चरनारा सोरठ महला।

हर जन को ही सुहावे पेख निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यो अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कह लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मैं विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवां हम मैले तुम यूजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकर दे सारा हो तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई तुम दान दे हो मेरवाना तुम करो भला हम पलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम रखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम एह हवाला राख संतन कै पाछे सोरठ महला पंजवां कर दूजा मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे पावक सागर

कीते कहो मेरे सम्मान है करनहार तरन जान है तू दाता मांगन कहो सगली दान दे प्रभ पान है खिन मैं अवर खिन मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीर ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना संत हमारी ओढ़ सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखिया पाई एह मन तेरा पाई रहाओ संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों ब्योहारा संतन स्यों हमलाह खाटिया हर भगत भरे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहां करै गो जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भय सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर स्यो मन मानिया रंग रते बिस्मादे सोरठ महला पंजवा जेती समग्री।

गुरपुरै दिया उपदेसा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर्विद जाने ता की कर मन सेवा। कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद मुद्र दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नाम वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवा मृतक का उपायो तन सासा। बिशरत यान मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते। हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई। ताकि कीमत कहन न जाई रहाओ। दुख सो का टायो डेरा अंध मंगल बिश्रामा। मन बाएं

गुरपुरे की अचरज वड्याई, नानक सदबलिहारे। सोरठ महला पंजवा, संचन करो नाम तन निर्मल, थाती अगम अपार, बिलश बिनोद आनंद सुख माणो। खाए जीवो सिख परवार, हर के चरण कमल आधार, संत प्रसाद पायो सच बोयथ। चढ़ लंगो बिक संसार, रहाओ पय कृपाल, पूर्ण अबनासी आपै कीनी सार। पेख पेख नानक बिकसानो, नानक नाही सुमार। सोरठ महला पंजवा, गुरपुरै अपनी कल तारी, सब घट उपजी दया, आपे मिल वडाई किन्नी, कुशल खेम सब भया। सतगुर पूरा मेरे नाल, पार ब्रह्म।

सुख संपत रास राख लहो भाई मेरे कहो प्रभ आगे अरदास रहाओ। जो मांगो सोई सोई पावाओ अपने खसम भरोसा कहो नानक गुरपूरा भेटो मिट्यो सगल्यां देसा। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया। मेरा गुरपूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी पूर्ण पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो गुरु नानक भय दयाला जय जयकार भय जग पीतर होवा पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ महला पंजवा हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे करे अपने सदा सदा रंग माण। साचा साहेब साध मेहरवान बंद पाया मेरे सतगुर पूरे हुई सर्व कल्याण रहाओ। जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पैनन खान अपने दास की आप पैज राखी नानक सत कुरबान। सोरठ महला पंजवा दुरत गवाया हर प्रभ आपे सब संसार उबारिया पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी अपना बिरद समारिया। होई राजे राम की रखवाली सुख सहज आनंद गुण गावो मन तन दे सुखाली रहाओ। पत ते उदाहरण सतगुर मेरा मोहे तिसका परवासा बख्श लय सब सच्चा साहेब सुन नानक की अरदासा। सोरठ महला पंजवा बख्शिया पार ब्रह्म परमेसर सगले रोग बेदारे गुरपूरे की सरनी उबरे कार्ज सगल सवारे। हर जन सिमरिया नाम आधार तापो तारिया सतगुर पूरे अपनी कृपा तार रहाओ। सदा आनंद करह मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राखिया वड्डी वड्याई नानक करते की साच शब्द सतपाखिया। सोरठ महला पंजवा पय कृपाल स्वामी मेरे तित साचा दरबार सतगुर ताप गवाया पाई ठांड पई संसार। अपने जी जंत आपे राखे जमै की ओ हटतार हर के चरण हृदय उतार। सदा सदा प्रभ सिमरिए भाई दुख किलबिख काटन हार रहाओ। तिसकी सरनी उबरै भाई जिन रचिया सब कोए करण कारण समरथ सो भाई सच्चै सच्ची सोए। नानक प्रभु त्याई है भाई मन तन शीतल होए। सोरठ महला पंजवा

कहो नानक हम मैं पीत गुर खोई, तौ दयार बीठ लो पायो। सब रहो अंदेसरो मायो, जो चाहत सो गुरु मिलायो। सर्व गुणा निदरायो रहाओ दूजा, सोरठ महला पंजवा, गई बहोड़ बंदी छोड़। निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना, धर्म ना जाना, लोभी माया तारी। नाम परयो भगत गोविंद का, एह राखो पैज तुम्हारी।

जैसा बालको पाए सुभाई लख अपराध कमावे कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावे पिछले अवगुण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब जाने ता किस पै आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर भाव है पैज रखाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकरो आपे सुने बेनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय अनंदा दुख कलेश सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले संठे जग जीवन

क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवै प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रहो आप प्रभ स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांचो संता तूरी, सोरठ महला पंजवा, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हरे अपनी कृपा तारी, प्रपूर्ण पै सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात ना काई रहाओ, करते पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया, तोट ना कतहूं आवै, मेरे पूरे सदगुर पावै, सिमर सिमर दयाला, सब जी पय कृपाला, जय जयकार गोसाई, जिन पूरी बणत बनाई, तू पारो स्वामी मोरा, एहो पुन पदार्थ तेरा,

हम बारक तौ शरणाई, प्रभ आपे पैज रखाई, मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रतपालन लागा, करी तेरा कराया राओ, जी जंत तेरे तारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, जेकरा वैसो करना, नानक दास तेरी सरना। सोरठ महला पंजवा, हर नाम हृदय परोया, सब काज हमारा होया, प्रभ चरणी मन लागा, पूर्ण जाके भागा, मिल साध संग हर त्याया, आठ पहरिया राध्यो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाओ, परा पुरबला अंकर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्श समावै, नानक दास सच्चे गुण गावै, सोरठ महला पंजवा, गुरमिल प्रभु चितारिया, कार्ज सब सवारिया, मंदा को नाय लाए, सब जय जयकार सुनाए, संतो साची शरण स्वामी, जी जंत सब हाथ सहकै, सुप्रभ अंतर जामी रहाओ, करतब सब सवारे, प्रभ अपना बिरद समारे, पतत पावन प्रभ नामा, जन नानक सतगुरबाना, सोरठ महला पंजवा, पार ब्रह्म साज सवारिया, एहो लहोड़ा गुरु उबारिया, आनंद करो पित माता, परमेश्वर जी का दाता, शुभ चितवन दा

दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना सोरठ महला पंजवां ऐथे उथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप राखे घट घट शब्द सुभाखे गुर के चरण ऊपर बल जाई दिन सरहण सा सा संभाली पूर्ण सबनी थाई रहाओ आप सहाई होवा सच्चे दा सच्चा टोवा तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ शरणाई सोरठ महला पंजवां सतगुर पूरे पाणा ता जपया नाम रमाणा गोविंद कृपा तारी प्रभ राखी पैज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छा सोई फल पावे बिरथी आस ना जाई रहाओ कृपा करे जिस प्राण पदाता सोई संत गुण गावे प्रेम भगत ता का मन लीना पार ब्रह्मन पावे आठ पहर हर का जस रमणा बखैठ गौरी लाथी संग मिलाए लिया।

मेरा करता है संत साध पए साथी। कर कहली ने सर्बस दीने आप मिलाया, कहो नानक सर्व थोक पूर्ण पूरा सतगुर पाया। सोरठ महला पंजवां। गरीबी गदा हमारी खन्ना सगले नशारी, इस आगै को ना टिके बेकारी। गुरपूरे एह गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै उधरै सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया एह पूर्ण हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया सब पार ब्रह्म नदरी आया। सोरठ महला पंजवां। गुरपूरै पूरी कीनी बगसपनी कर दीनी, नित्यानंद सुख पाया थाव सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती गुरपूरै कृपा कर दीनी, विरलै किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावो पाई गुरबाणी गावै पाई, ओ सफल सदा सुखदाई। नानक नाम ते आया पूर्व लिखिया पाया। सोरठ महला पंजवां। गुरपूरा आरा दे कारज सगले सादे, सगल मनोरथ पूरे बाजे अनहद तूरे। संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाओ। गुरपूरे की बाणी पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास बखाणी निर्मला कथ कहानी। सोरठ महला पंजवां। भूखे खावत लाव भूखे खावत लाज ना आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै। अपने काज को क्यों अलकाई है, जे सिमरन दर गै मुखी उज्जल, सदा सदा सुख पाई है रहाओ। ज्यो कामी काम लुभावै त्यों हर दास हर जस पावै। ज्यो माता बाल लपटावै त्यों ज्ञानी नाम कमावै। गुरपूरे ते पावै जन नानक नाम ते आवै। सोरठ महला पंजवां। सुख सांद घर आया, निंद कै मुखशाया, पूरे गुर पहराया बिनसे दुख सवाया। संतो साचे की वड़ियाई, जिन अचरज सो बनाई रहाओ। बोले साहेब कै पाण दास बाणी ब्रह्म वखाण। नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बणत बनाई। सोरठ महला पंजवां। प्रभ अपना हृदय ते आए, कर सही सलामत आए। संतोख भया संसारे, गुरपूरै लै तारे। संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत की गणत न गणई, राखै बाल गोपाला रहाओ। हर नाम हृदय और तारे, तन सबे थोक सवारे। गुरपूरै तुस दिया फिर नानक दुख ना थिया। सोरठ महला पंजवां। हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। गुरपूरे की वड़ियाई, ता की कीमत कही ना जाई। हाँ कुर्बान जाई तेरे नावै, जिसनो बख्श लह मेरे प्यारे। सो जस तेरा गावै रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा। नानक प्रभ शरण आई, मुख निंदक कै शाई। सोरठ महला पंजवां। आगै सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता। परमेश्वर बणत बनाई, फिर डोलत कतहू नाही। साचे साहेब स्यो मन मान्या, हर सर्ब निरंतर जान्या रहाओ। सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करें प्रतपाला। अचरज तेरी वड़ियाई, नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवां। नाल नारायण मेरा, जमदूत ना आवै नेरा।
ਕੰਠ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਾਰ ਵਿਡਾਰੇ ਸਗਲੇ, ਦਾਸ ਕਉ ਸਮਤ ਦਿੱਤੀ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ, ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਫਿਰ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਆਏ, ਜਿਨ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ, ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੋ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਰਹਾਉ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਭਾਈ, ਨਾਨਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵਲਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰੱਖੈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਤ ਜਗ ਪੀਤਰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਸ ਚਾਖੈ।

सुनी पुकार समरथ स्वामी बंधन काट सुवारे तहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनित पारे उतारे संतन के कार्य सगल सवारे दीन दयाल कृपाल कृपा निद पूर्ण खसम हमारे रहाओ आओ बैठ आदर सब थाई ऊन नकत हूं बाता भगत सिर पाओ दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोरठ महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हरे मन राम स्यों कर प्रीत सर्वन गोविंद गुण सुनाओ वर गाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर माधो हो हे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तो हे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भज लै जाते अवसर बीत सोरठ महला नावा मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहाओ दारा मीत पूत रथ संपत धन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नावा मन रे कौन कुमत लीनी परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी रहाओ मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो नहीं उपजियो कछ ज्ञाना कट ही माए निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हारे ओ अस्त्र मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण बिचारो जै सिमरत गण काशी उदरी ताको जस उतारो रहाओ अटल भयो त्रुजा कै सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्रह ते छूटा मेहमा नाम कहां लो बरनाओ राम कहत बंधन ते टूटा अजा मल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तैं पी उतरें पारा।

करई कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई कल मैं एक नाम कृपा निध जाहें जपै गत पावै और धर्म ताकै सम नाहन एह बिद बेद बतावै दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई महामोह अज्ञान तिमर मोह मन रहो उरजाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई बिख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस नाहे निस्बासर बिख्यान कौ तावत कह बिदरो कौताहे रहाओ वेद पुराण सिमरत के मत सुनो निमख नाहिए बसावै पर धन पर धारा सिउ रचियो बिरथा जन्म सिरावै मद माया कै पयो बावरो सूजित न कछ ज्ञाना कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म न जाना जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी सोरठ महला नावा अरे नर एह साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार अज हूं समझ कश बिगड़ो नाहन पज ले ना मुरार कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई सगल जगत अपने सुख लागेओ दुख में संग ना होई रहाओ दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यों लागे जब ही निरतन देखियो नरकाओ संग शाड़ सब भागे

लोभ मोह अवमानना हर सोग ते रह न्यारो नाहे मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्याग जगते रह निरासा काम क्रोध जे परस नाहन ते कट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जे नर कौ कीनी तेह ए जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यो पानी संग पानी। सोरठ महला नावा प्रीतम जान लेहो मन माही अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ को काहू को नाही रहाओ। सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहूं दिस घेरै विपत परी सभी संग छाड़त को नयावत नेरै।

एको चेत मनुआ न डोले तावत वर्ज रहावे सहजे माता सदा रंगराता साचे के गुण गावे मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जेह बा नेत्र सोत्र सच राते जल बुझी तुझै बुझाई आस निरास रह बैरागी निज कर ताड़ी लाई पिखिया नाम रजे संतोखी अमृत सहज पियाई।

बिख माया चित मोहया पाई, चतराई पत खोए, चित में ठाकर सच वसै पाई, जे गुर ज्ञान समोए। रूडो रूडो आखिए पाई, रूडो लाल चलूल, जे मन हर सिओ बैरागिए पाई, दर कर साच अपूल। पाताली आकाश तू पाई, कर कर तू गुण ज्ञान, गुर मिले सुख पाया पाई, जूका मनो गुमान। जल मल काया मांजिए पाई, पी मैला तन होए, ज्ञान महारस नाइए पाई, मन तन निर्मल होए। देवी देवा पूजिए पाई, क्या मांगो क्या देहे, पाहन नीर पखालिए पाई, जल में बुढ़े तेहे। गुर बिन अलख ना लखिए पाई, जग बुढ़े पत खोए, मेरे ठाकर हाथ वड्याइया पाई, जय पावे तें दे। बैयर बोले मिठली पाई, साच कह पिर पाए, ब्रह बेदी सच वसी पाई, अदक रही हरनाए। सब को आखे अपना पाई, गुरते बुझे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईंधन अदक सकेलिए पाई, पाव करन चक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा, कर पहला ते तुकी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख लय हर जियो, हरनाक समार पजाया। गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम भुलाया, हर जी एह तेरी वडियाई। भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी सरनाई रहाओ। भगता नु जम जोहे ना साकै, काल ना नेड़े जाई, केवल राम नाम मन वसिया, नामे ही मुक्त पाई। अरे दसिद सब भगतां चरनी लागी, गुर कै सह सुबाई। मन मुखा नु प्रतीत ना आवई, अंतर लोभ सुवाओ, गुरमुख हृदय शब्द ना भेदियो, हर नाम ना लागा पाओ। कूड़ कपट पाज लह जासी, मनमुख फीका या लाओ, भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता। माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विधाता, हों मैं मार मन सामने समाणी, गुर कै शब्द पछाता। अचिंत कम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब का ईश्वर नहारा। ओना की रीस करे सो विगुचे, जिन हर प्रभ है रखवारा, बिन सतगुर सेवे करे ना पाया, मनमुख पौंक मोए बिललाई। आवे जावे ठौर ना पावे, दुख में दुख समाई, गुरमुख होवे सो अमृत पीवे, सहजे साज समाई। बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े, जे अनेक कर्म करे अधकाई, वेद पढ़े ते वाद वखाणे, बिन हर पत गवाई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, पज छूटे गुर सरनाई। जिन हर मन वसिया से दर साचे सचियारा, ओना दी सोभा जुग जुग होई, कोई न मिटन हारा। नानक तिन कै सद बलिहारै, जिन हर राखिया उर तारा, सोरठ महला तीजा दो तुकी। निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई, सतगुर की सेवा लाए। सतगुर की सेवा उत्तम है पाई, राम नाम चित लाए, हर जियो वापे बख्श मिलाए। गुणहीन हम अपराधी पाई, पूरे सतगुर ले रलाए रहाओ। कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे,
ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆਨ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੈ ਚਾੜ ਮਨੂਰੈ ਤੇ ਕੰਚਨ ਪਏ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਰਸ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਆਪ ਛੋੜ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸਿਆ ਭਾਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਤਿਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਿਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਸਮਾਓ ਗੁਰਬਿਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਰ ਭਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਪਉ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਪਉ ਕਰਨੀ ਸਚਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਪਾਈ ਤਿਨਕੈ ਹਉ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜਨਮ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਕੁਲਪੀ ਲਈ ਬਖਸਾਏ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਭਾਈ ਤਿਸ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ

आओ गुर की कार कमावनी पाई आप छोड़ चित लाए सदा सहज फिर दुख न लगे पाई हरि आप वसै मन आए फिर का हुक्म न जान पाई सा कुलखणी कुनार मन अठकार कमावनी पाई विणना में कूड़ियार से गावे जिन मस्तक भाग है पाई पाए सच्चे बैराग आंदन राते गुण रवै पाई निरपव गुर लिवलाग सबना मार जीवाल दा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है पाई जिसकी वड्डी है दात मनमुख मैली डुमनी पाई दरगे नाही थाओ गुरमुख होवै ता गुण रवै पाई मिल प्रीतम साज समाओ एत जन्म हरना चेतो पाई क्या मोह देसी जाए किड़ी पवंदी मोहायोन पाई बिख्या नो लोभाए नाम समालै सुख वसै पाई सदा सुख सांस शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ महला पंजवा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिनै उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वथ किन कहिया क्यों देखिए पाई करता एक या कथ गुरु गोविंद सलाहिए पाई जिसते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दानो दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके कर सब किश है पाई नौनिद भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा गम अपार जी जंत प्रतपाल दा पाई नित नित करदा सार सतगुर पूरा भेटिए पाई शब्द मिलावन हार सच्चे चरण सिरेविय पाई परंप हो वै नास मिल संत सभा मन मांजिय पाई हर कै नाम निवास मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवै प्रगास गुर बचनी सुखी उपजै पाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई होई है सब की तूर कट कट ब्रह्म पसारिया पाई पेखै सुने हजूर जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई तित दिन मरिय चूर करण करावन समर्थो पाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस पावै ता मेल लय पाई हृदय नाम निवास गुरमुख कमल प्रगासिया पाई हृदय होवै प्रगास प्रगट भया प्रताप प्रपाई मौल्या तरत आकाश गुरपूरै संतोखिया पाई अहिंस लागा पाओ रसना राम रवै सदा पाई साचा साध सुआओ करनी सुन सुन जीविया पाई निचर पाया था ओ जिस पर तीत न आवे पाई सो जीअड़ा जल जाओ बहुगुण मेरे साहेब पाई हों तिसके बल जाओ ओह निर्गुणी आरे पालदा पाई दे निथावे थाओ रिजक संबाहे सास सास पाई गूड़ा जाका नाओ जिस गुर साचा पेटिए पाई पूरा तिस करवाओ तिस बिन कड़ी ना जीविए पाई सर्व कला भरपूर सास ग्रास ना विसरै पाई पेखो सदा हजूर साधु संग मिलाया पाई सर्व रहा भरपूर जिन्ना प्रीत ना लगिया पाई से नित नित मरदे चूर अंचल लाए तराया पाई पौ जल दुख संसार
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਭਾਈ ਕੀਤੋ ਨਿਹੰਗ ਅਪਾਰ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਰਨਾਗਤੀ ਪਾਈ ਜੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਕੱਟਣ ਹਾਰ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੁਖ ਸਾਗਰੋ ਪਿਆਰੇ ਤਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਕਾਡ ਬਿਖ ਪਸਰੀਆ ਪਿਆਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਇਆ ਜਿਸਨੋ ਕੀਤੋ ਕਰਮ ਆਪ ਪਿਆਰੇ ਤਿਸ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਸੋ ਆਰਾ ਦੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਇਆ ਮਨ ਤਨ

माया लालच अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिंतु विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए तूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारे तिनका रहया मूल सात संग ना की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरै प्यारे सो मुह कल उठ जाए मन मुख टोई नह मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस स्याण पां प्यारे एक न चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वसना जातिया प्यारे कू न चली नाल सतगुर जिना मिलायोन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंदन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सही सदा खरे समर्थ पुरख दयाल देओ प्यारे भगतां तिसका तान ते सरनाई टह पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे न विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंगम साधे पंच जना स्यो संग न छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बाधे प्यारे इन बिद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी कै द्वारा दीजे बुद्ध बबेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरियो बन माही तड़ तीर्थ सब धरती प्रमयो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए मन की मैल ना उतरै एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु बिद दान दा तारा अन्न बस्त्र भूम बहु अरपे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडाओ तो खट कर मारत रहता हाँ हो करत बंधन मैं परया न मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर रहया वड्डी हार जा फिर जन्मे हर स्यो संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर कर मन कह करमा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक हे रंग माता पयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल न कत मन जीबै सच्चा सोए ससरै पेयै पै वसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा सिंगारी ना मनो कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावे नानका करम मणि सब सच महला चौथा सोरठ

हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लबई, सब देखिया जगत मैं टोले। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, मन अंत ना काहूं डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया, तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया, दाता करता आप आप भोगण हारिया, सब तेरा शब्द वरत ओ पावन हारिया। हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर कौ वारिया, श्लोक महला तीजा। हाँ मैं जल दे जल मोए, भ्रम आए दूजे पाए, पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए। एहो जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुभाए, शब्द रते से शीतल पाए, नानक सच कमाए महला तीजा। सफल्यो सतगुर सेवया तन जन्म परवान, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसरै सही पुरख सुजान। कुल उधारे अपना सोजन होवै परवान, गुरमुख मोए जीव दे परवान है, मनमुख जन्म मराहे, नानक मोए ना आखिया जे गुर कै शब्द समाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है, सतसंगत साधु लग हर नाम समाई है। हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है, हां गोला लाला तुद मैं हुकुम फरमाई है। हाँ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइया, श्लोक महला तीजा। पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास, मोह ठगौली पाई अन विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवन दा दूजे पाए मोयास। जिनी गुरमुख नाम ना चेतियो से बहन ना मिलनी पास, दुख लागा बहुत घना पुत कलातना साथ कोई जास, लोकां विच मोहकाला होवा अंदर उबे सास, मनमुखा कोना विसही चुक गया वे सास। नानक गुरमुखा नो सुख अगला जनांतर नाम निवास। महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए, सतगुर का पाणा अंदन करे से सच रहे सुमाए। दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे बेकार, मनमुख आप सवारथी कारज ना सके सवार। नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई न मिटन हार, पौड़ी तुदे आपे जगतो पाए कै आप खेल रचाया, त्रै गुण आप से

कह जाए तिसनो सुख सुपना नहीं, दुखे दुख विहाय, घर घर पढ़ पढ़ पंडित थके, सिद्ध समाध लगाए, एह मन वसना आवई, थके कर्म कुमाए, पेख तारी पेख कर थके, अड़सठ तीर्थ नाए, मन की सार न जाननी, हम मैं परम पुलाए, गुर प्रसादी पौ पया, बड़ भाग वस्या मन आए, पै पया मन वस होवा, हम मैं शब्द जलाए, सच रते से निर्मले, ज्योति ज्योत मिलाए, सदगुर मिले ना हो पाया, नानक सुख समाए पौड़ी, एह भूप तराने रंग, दिन चार सुहावना, एहो माया रंग सुंब, खिन मैं लै जावना, चलदिया नाल ना चलै, सिर पाप लै जावना, जा पकड़ चलाया काल, तां खरा डरावना, ओ वेला हथ न आवै, फिर पछतावना, सलोक महला तीजा, सतगुर ते जो मोह फिरे, से बदे दुख सहाहे, फिर मिलना पाए नी, जब मैं तै मर जाहे, सहसा रोग ना छोड़ई, दुखी मैं दुख पाहे, नानक नदरी बख्श लेहे, सब दे मेल मिलाहे, महला तीजा, जो सतगुर ते मोह फिरे, तिन्ना ठौर ना ठाओ, ज्यों छुट्टड़ कर कर फिरै, दो चारण बद नाओ, नानक गुरमुख बख्शीऐ, से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी, जो सेवै सत मुरार, से भव जल तर गया, जो बोले हर हर नाओ, तिन जम छड़ गया, से दरगह पैंदे जाहे, जिन्ना हर जप लया, हर से वैसे ही पुरख, जिन्ना हर तुद मया, गुण गावा प्यारे नित, गुरमुख परम पौ गया, सलोक महला तीजा, थाले विच तैं वस्तु पईओ, हर भोजन अमृत सार, जित खादे मन तृप्तिऐ, पाईऐ मोख द्वार, एहो भोजन आला।

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आसा। काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा। मन रे सरयो ना एक काजा भजियो ना रघुपत राजा। रहाओ बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया। नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाय लिखाया। भगत नार दी हृदय न आई काश पूछ तंदीना। राग राग नी डिब होए बैठा उन हर पै क्या लीना। परयो काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी। कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जय जानी। कर दूजा

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला।

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतऊ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पवसा गिरतार मुरारी सोरठ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुधारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पहली जह रहाओ, छिन छिन तन छीजै जरा जनावै, तब तेरी ओक कोई पानी ओ ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पवने सुख बनया, किस जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै, हाँ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ, दोए शेर मांगो चूना, पाओ की ओ संग लूना, अध शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जिवाले, खाट मांगो चौपाई, सरहाना अवर तुलाई, ऊपर कौ मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा, मैं नाही कीता लबो, एक नाव तेरा मैं फबो, कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया, राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब देखा तब गावा, तो जन तीरज पावा, नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ, जह चिल मिलकार दिसंता, तै अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी, चमकार बिजल तही, नेरै नाही दूर, निजात मैं रया भरपूर, जय अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जलै शंशारा, गुरप्रसादी जानिया, जन नामा सहे समानिया, कर चौथा सोरठ, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान शिवाई हो, तो पै दुगनी मजूरी दहाओ, मोको बेडी देहो बताई हो, रिबाई बेडी देन न जाई, देख बेडी रे उसमाई, हमारे बेडी प्राणे आधारा रहाओ, बेडी प्रीत मजूरी मांगे, जो को शान शवावे हो, लोग को टंब सबोते तोरे, तो अपन बेडी आवे हो, ऐसो बेडी बर्न ना सको, सब यंत्र सब ठाई हो, गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कह न जाई हो, बेडी के गुण सुन री बाई, जल्द बांतू था प्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी, लंकप भीखण आ प्यो हो, सोरठ करती जा, अड़मड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कन हर

हम बाती, जाओ तुम तीर्थ तौ हम जाती, साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोरी अवर संग तोरी। जह जह जाओ तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकरे और ना देवा। तुमरे भजन कटै जम फासा, भगत हेत गावै रवदासा। जल की पीत पवन का थंबा, रगत बूंद का गारा। हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसै बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा। बंके बाल पाग सिर डेरी, एहो तन होएगो पसम की ढेरी। ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चुमारा। चमरटा गांठ

पूरे भाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाण कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखै आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही ना जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बख्शे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे हम मैं वे सबकार कमाहे गुर प्रसादी हम मैं जाए आपे बक्से ले मिलाए बिखिया का तन बहुत अभमान हंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सह सोई आपे साजे करता सोए तिस बिंदु जाय अवर ना कोए जिस सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आगे राग तनासरी महला तीजा कर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद हम पीख कपे खारी तेरे तू निज पत है दाता हो दयाल नाम देहो मंगत जन कहो सदा रहो रंग राता हम बलिहारे जाऊं साचे तेरे नाम विटाऊं करण कारण सबना का एको अवरना दूजा कोई रहाओ बहुते फेर पए किरपन कहो अब किश कृपा कीजै हो दयाल दर्शन देहो अपना आपी ऐसी बस करी जै पंत नानक परम पट खूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर स्यो मन मानिया तनासरी महला चौथा कर पहला चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेवै संत भगत तिनके सब पाप निवारी हामी ऊपर कृपा कर स्वामी रख संग तुम जो प्यारी हार गुण कह न सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ जन्म जन्म के लागे विख मोरचा लग संगत साध सवारी जो कंचर बै संतर तायो मलका टी करते उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हरे और तारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हम मैं मारी हर हर अगम अगाद बोध अपरंपर पुरख पारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जपयो तिनका दुख परम पौ भागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी हर कह नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिव लागी रहाओ संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकर हम सांगी जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलग बुलागी क्या हम किरम नान निक कीरे तुम वट पुरख वडागी तुमरी गत मित कह ना सके प्रभ हम क्यों कर मिलया पागी हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सतगुर बानी हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल सब के लिख पाप लह जानी रहाओ ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिनकी तूर मंगे प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफलियो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुखानी।

तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सुहै दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे तेरा वर्ण ना जापै रूप ना लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रविया सर्ब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करै सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मुरारे ज्यो भावै त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण दुआरे तनासरी महला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बड़ायो कमल हेत बिन सो है पवरा उन मार्ग निकस ना पायो अब मान एक स्यो मोह कीना मर न जावे सदही संगे सतगुर सबदी चीना रहाओ काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओ परवस भयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बेदारा देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी माया कौ लपटाना अत रचियो कर लीनो अपना उण छोड़ सरा पर जाना बिन गोबिंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बजायो प्रीत प्रभु सदकेला तनासरी महला पंजवा कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा

ब्रह्म पसार पसारियो भीतर सदगुर ते सोजी पाई सब को मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन दूर परायो मन का बिरहा ता मेल कियो मेरा राजन बिनस्यो टीठा अमृत बूठा शब्द लगो गुर मीठा जल थल महियल सर्व निवासी नानकर मैया डीठा तनासरी महला पंजवा जब ते दर्शन पेटे साधु भले दिनस ओए आए महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विदाता पाए अब मोहे राम जसो मन गायो भयो प्रगास सदा सुख मन में सतगुर पूरा पायो रहाओ।

गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानक जिन जमते काढे तिस गुर कै कुर्बानी। तनासरी महला पंजवा जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनया दुख सुख मेरा तौ बिद नीकी खटानी जी की एक ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोल कहीरा गुरदीनो मनतानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक बखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानको निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजनियार पूमन ताकी त्रिशन ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी। बिखिया मह किन्हीं तृप्त ना पाई ज्यो पावक ईंधन नहीं त्रप बिनहर कहाँ आगाई। रहा हो दिन दिन करत

कामवंत कामी बहु नारी परग्रे जोहन चुके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लो मैं सूके हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना तनासरी महला पंजवा लवे न लागन को है कछु है जाको फिर एह तावै जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बन आवै जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चेतना बसा रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरन साको उस तां की कीमत कहन न जाई काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आए चिंता जाको दया करी मेरे ठाकर तिन गुरै कमानो मंता दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग रव्या जो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा

चंदन लेप होत देह कौ, सुख गर्दप भस्म संगीत, अमृत संग नाहे रुच आवत, बखैठ गौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी, इस युग में पवित पुनीत, जात अकारथ जन्म पदार्थ, काज बाद रह जीत। जन्म जन्म के किलविख दुख भागे, गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुखते निकसियो, नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवां, पानी पखा पीसो संत आगे, गुण गोविंद जस गाई, सास सास मन नाम समारे, विश्राम निद पाई। तुम कर

खोजै सब ता कहो बिख मना जाई लैन रहाओ। जाप ताप परम जाप ताप परमन बसदा कर उर्द ताप लै गैन एह बिदन है पतियानो ठाकर जो जोत कर जैन। अमृत नाम निर्मोल हर जस तिन पायो जिस कर पैन साध संग रंग प्रपेटे नानक सुख जन रैन। तनासरी महला पंजवा बंधन ते छुटकावै प्रभु मिलावै हर हर नाम सुनावै अस्त्र करे निचल एह मनुआ बहुण ना कतहू तावै। है कोई ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो हियो देओ अर्पो अपनो चीत रहाओ। पर तन पर की निंदा इन स्यो प्रीत न लागै संतै संग संत संपाखन हर कीर्तन मन जागै। गुण निदान दयाल पुरख प्रभु सर्व सुख दयाला मांगै दान नाम तेरो नानक ज्यों माता बाल गोपाला। तनासरी महल

देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राखो सगल है मरना रहाओ। चंदन चोवा रस भोग करता नेकै, बिखिया बेकार देखो सगल है फीके। एकै गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन तन तन अपन थापियो। हर जपना निमख जापियो, अर्थ दर्ब देखो कछ संग नाही चलना। जा कोरे कर्म पल्ला, तिन ओट गही संत पल्ला। तिन नाही रे जम संतावै, साधु की संगना। पायो रे परम निदान, मिट्यो है अभिमान। एक निरंकार नानक मन लगना। तनासरी महला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, काल कलेस लोभ मोह महापौजल तारे। रहाओ सास सास निमख निमख, दिन सरैन चितारे। साध संग जपन संग मन दान तारे। चरण कमल नमस्कार गुण गोबिंद विचारे, साजना की रेण नानक मंगल सुख सधारे। तनासरी महला पंजवा, कर अठवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ, सास सास संभाले ए लोक पर लोक संग सहाई। जत कत मोहे रखवाले, गुर का बचन बसै जी नाले। जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, पाहे ना साकै जाले। रहाओ निरतन कौ तन अंदले कौ टेक, मात दूध जैसे बाले। सागर में बोइथ पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा, पै कृपाल दयाल गोबिंदा। अमृत हृदय सिंचाई, नव निध रिध सिधार लाग रही जन पाई। संतन का आनंद सगली जाई, गृह बार ठाकर भगतन का रवर आश्रम ठाई। रहाओ ता को कोई ना पहुंचन हारा, जा कै अंग गुसाई। जमकी त्रासन कै जिस मृत, नानक नाम ते आई। तनासरी महला पंजवा, दर्भवंत दर्भ देह गर्ब है भूमवंत अभिमानी। राजा जन सगल राज हमरा, त्यों हरजन टेक स्वामी। जे को अपनी उड़ सुमार, जैसा बित तैसा हुए वरत, अपना बल नहीं हार। रहाओ आन त्याग पय के आसर, सरन सरन कर आए। संतानुग्रह पय मन निर्मल, नानक हर गुण गाए। तनासरी महला पंजवा, जा कहो हर रंग लागो इस जुग में। सो कहियत है सूरा, आत्म जिणै सगल वस तांकै, जा का सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग, सरनी पावन नाम ते आवन। सह समावन संग रहाओ, जन के चरण वसै मेरे ही अरे। संग पुनीता देही, जन की तूर दे हो कृपा निध। नानक कै सुख एही। तनासरी महला पंजवा, जतन करै मान खुडहै कावै, ओह अंतर जामी जानै। पाप करे कर मुकर पावै, पेख करै निर्बान। जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर, उत ताकै उत ते उत पेखै, आवै लोभी फेर। रहाओ जब लग टुटै नाही मन परमा, तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा, नाम गुर दी होय अपने। जाके मस्त करमा, नाम दृढ़ावै नाम जपावै, ताका जुग मैं तरमा।
ਜਨ ਕਉ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਸੋਭ, ਨਾਮੋ ਗਤ ਨਾਮੋ ਪਤ ਜਨ ਕੀ, ਮਾਨੈ ਜੋ ਜੋ ਹੋਗ ਰਹਾਓ। ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਸ ਜਨ ਕੈ ਪਾਲੈ, ਸੇਈ ਪੂਰਾ ਸਹਾ, ਨਾਮ ਵਿਵਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਆਧਾਰਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਹਾ, ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਪਏ ਦਰਸ ਭੇਖੇ, ਮਾਥੈ ਪਰੋਰਵਾਲ, ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਵ।

महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचनन उपर साल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राख महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला।

नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। तनासरी महला पंजवां औखी कड़ी ना देखन देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ सिओ लाग रहे हो मेरा चीत आद्यंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवां जिसको बिसरे प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगेओ। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस छीज गया सब तंते प्रीतम सिओ मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवां जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम। गोबिंद मोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान।

संतन का संग पावा, सोग अगन में मन ना व्यापै, आठ पहर गुण गावा, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मदयंत प्रभ जापन, नानक रंग लगा परमेश्वर, बाहुड़ जन्म ना छापण। तनासरी महला पंजवा, मांगो राम ते सब थोक, मानख कहो जाचत शरम पाई है, प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ। कोखे मुनजन सिमरत पुराना, वेद पुकारै कोख, कृपा सिंध सेव सच पाई है, दोवै सोहेले लोक। आन आचार व्यवहार है जेते, बिन हर सिमरन फोक, नानक जन्म मरण पह काटे, मिल साधु बिन से शोक। तनासरी महला पंजवा, तृष्णा।

जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधक डराओ, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तरो, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पस ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरध पछानो, तब हों पतत तरो। तनासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदियां एको ओंकार, सतगुर प्रसाद गुरसागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगै नहीं दूरे, हर रस चोग चुगै प्रभावै, सरवर में हंस प्राण पत पावै, क्या पग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबै मैल ना जाए, रहाओ रख रख धर्म रख रख चरण धरे विचारी, दुबदा छोड़ पै निरंग।

वछल पै काटन हारे। हमें मार मिले पगतारे, अनक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए। जन्म

जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कहो जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द भरम पौ भागै। सूरत मूर्त आदि अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिलै मिलिया प्रवान। नात स्मरण न आवण जान, ठाकुर मैं दा दास मैं सोए। जै देखा तै अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाईऐ। बिन गुर भेटे मरियाई जाइऐ रहाओ। सो गुर करो जे साज दृढ़ावै, अकथ कथावै शब्द मिलावै। हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकर साच प्यारा। तन मैं मनुआ मन मैं साचा, सो साचा मिल साचे राचा। सेवक प्रभ कै लागै पाए, सतगुर पूरा मिलै मिलाए। आप दिखावै आपे देखै, हठ ना पतीजै ना बहु पेखै। घड़ पांडे जन अमृत पाया, प्रेम भगत ब्रह्मन पति आया। पढ़ पढ़ भूलै चोटा खाहे, बहुत सियाण पयावै जाहे। नाम जपै पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए। पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पय उदासा। मन मैलै सूचा क्यों होए, साच मिलै पावै पत सोए। आचारा विचार शरीर, आजुगा सहज मन तीर। पल पंकज मैं कोटो धारे, कर कृपा गुरमेल प्यारे।

अन क्यो पाव करो माया को बचित धरो मेरी मेरी करतो सद ही विहावै कोई ऐसो रे पेटै संत मेरी लाहै सगल चिंत ठाकर स्यो मेरा रंग लावै पड़े रे सगल बेद नह चूकै मन भेद एक खेना तीरै मेरे करके पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरा हृदय संचा जे तेरे तीर्थ नाए अहं बुद्ध मैल लाए कर को ठाकरो एक तिल ना मानै कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन सनानै सगलिया शर्म कीने मनु आनै पतीने बबेकहीन देही तोए कोई पाई है रे पुरख विधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कही ना लेखै जिस भेटिए सफल मूर्त करै सदा कीर्त गुर प्रसाद को नेत्रों पेखै मन अठ जो कमावै तिल ना लेखै पावै बगल जो ध्यान लावै माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभ की कथा सुनाई तिस पेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राए काटै रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरभय गोबिंद सुख नानक ला दे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल जा।

हमरा मन तानो राम को नामा, राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई रहाओ। बनता सुत देहे ग्रहे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधे आई। अजा मालो गज गन का पतत कर्म कीने, तेऊ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बेदन खेद राम नाम लेही, गुरप्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई, जिन तरन तर मुंड बलाए।

दुर्योधन से पाई, बारह जो जन शत्र चल था, देही गिरज न खाई, सर्व सो इनकी लंका होती, रावण से अधकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्वासा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए, दस बैर अग्न मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो, सत्तर दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो, पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, यह संसार ते तभी छूटो, जो माया न लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेहता दर्शन पावो, इत कर भगत करे जो जानो, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देव बाहर क्या भरमो, ए संजम हर पाई है, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, ज्यो कुरंक निसनाद बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, तेरा नाम रूडो रूप रूडो, आतरंग रूडो मेरो रामैया रहाओ, ज्यो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पावरला, ज्यो कोकल को अंब बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, चकवी कौ जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसला, ज्यों तरणी कौ कंत बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, बारक कौ जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली कौ जैसे नीर बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, साधक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू डिठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला,

पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा तू कुनरे मैंजी नामा हो जी आला ते निवारणा जमकारणा पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वह मुन जनो जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

गहाओ, हर हर हर जस घूमर पावो। मिल सतसंगो महाराम, आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लैलाहा। हर हर कृपा तार गुर मिलो, गुर मिले हरिओ महाराम, कर कीर्त जस माथा, खिन खिन राम नाम गावा। मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगत्यो महाराम, जय श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना लैलाहा। खिन खिन भगत करै दिन राती, गुरमत भगत्यो महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लैलाहा। गुरमत पंच दूत वस आवै, मंतन हर यो महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाय सदा लैलाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो, हर

जय श्री महला चौथा, आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा, आपे ही आप आवर्त, आपे नाम्यो महाराम, आपे दीप लोभ दीपाहा, आपे सतगुर सुमंद मथाहा, आपे मथ मत कढ़ाए, जप नाम रतन यो महाराम, सखी मिलाओ मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम्यो महाराम, आपे वरदाना वरसाहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा, हर हर दात करो प्रभाव, गुण नानक नाम्यो महाराम, जैत सरी महला चौथा, मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वे साहा, हर हर कृपा तार मधसूदन, मिल सत संग यो महाराम, हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा, गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जपियो महाराम, सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम न पुजै पुजाहा, हर हर अतुल तोलत पारी, गुरमत जपियो महाराम, सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा, किल विख मैल

हाहा करत बिहानी अवदै ता मैं संतोख ना पाया। हस्त रथ असव पवन तेज तनी पूमन चतरंगा, संग ना चालियो इन मैं कछुवै ऊर सदायो नांगा। हर के संत प्रिया प्रीतम प्रभ के ता कै हर हर गाइयै, नानकी हां सुख आगे मुखी उज्जल संग संतन कह पाइयै। जैत सरी महला पंजवां कर तीजा दो पदे एको अंकार, सतगुर प्रसाद देहो संदेसरो कहियो प्रे कहियो। बिसम भई मैं बहुबिद सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ। को कहतो सब बाहर बाहर को कहतो सब महियो, वर्ण ना दिसै चिहन ना लखियै सुहागन सात बुझहियो। सर्ब निवासी घट घट वासी लेप नहीं अल्पहियो, नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो। जैत सरी महला पंजवां।

बेसुमार बेअंत बढ़ दाता मने गही रहो पेख प्रभु को। जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु को। गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कभू चूरो बुझ प्रभु को। जैत सरी महला पंजवा लोड़ इंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके। कट कट तिसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा। नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम अंधेरा। थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा। संत संग पावै जो नानक तिस बहुर ना हुई है फेरा। जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे। एक ओवंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग। तजी सियानप चिंत विसारी अहंग छोड़ियो है त्याग रहाओ। जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग। कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग। तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड भाग। जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग। जैत सरी महला पंजवा मन मैं सतगुर ध्यान तरा। दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ। काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमै डरा।

या ना मने सिर खाक शाने जिन संग मंतन जालिया। श्री राम रंगिया पार पूर्ण नै निमख मन मैं उठिया। बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया। चरण कमल सरण आए नानक आया। दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया। मिल साध संगे भजे श्री तार कर अंग प्रभ जी तारिया। हर मान लिए नाम दिए अवर कश ना बिचारिया। गुण निधान अपार ठाकर मन लोड़ींदा पाया। बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। जैत श्री महला पंजवा वार श्लोका नाल एको अंकार सतगुर प्रसाद। सलोक आदि पूर्ण मध पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर। सिमरंत संत सर्वत्र रमण नानक अग्नासन जगदीश्वर। पेखन सुनन सुनावन मन में दृढ़िय साच। पूर रहो सर्वत्र मैं नानक हर रंगराज। पौड़ी हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई। करण कारण समर्थ प्रभ जो करे सो होई। खिन मैं थाप्यो थापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक और चंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन सा सा सिमरंत नानक महायग्न ना बिनासन। मुख तले पैर उपरे वसंदो कहुथड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विसारियो उदरै जिस दै नाए। पौड़ी रगत बिंद करने मिया अग्न उदर मजहार। उर्द मुख कुचीर बिकल नरक घोर गुबार। हर सिमरत तू ना जलै मन तन उर तार। बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे जासै जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आसा पूर्ण। खंडन काल कलेश प्रभ सिमर नानक ने दूरन। हब रंग माने जिस संग तै स्यों लाइय नेहो सो सहो बिंदना विसर।

जिस बिसरतो तन भस्म होए कहते सब प्रेतो खिनग्रे मैं बिसना देवही जिन स्यो सोई है त कर अनर्थ दर्ब संचया सो कार्य केत जैसा बीजै सो लुणै कर में हो खेत अकृत कणा हर विसरिया जोनी परमेत सलोक कोटदान इस नानंग अनक सोधन पवित्र उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप विमुचते ईंदन की तो मुकणा पोरी दित्ती मुपाहे मन वसंदड़ो सच सहो नानक हबो डुखड़े उलाहे पौड़ी कोट अगा सब नास होहे सिमरत हर नाओ मन चिंदे फल पाई है हर के गुण गाओ जन मरण पै कटी है।

लगड़ा सोने हो मन मजाहू रतिया, विदड़ो सच थोक नानक मिठड़ा, सोतनी पौड़ी हर बिन कछु ना ला गई, भगतन कौ मीठा, आन सुआ सब फीकिया, कर निरनौ डीठा, अज्ञान परम दुख कटिया, गुर भय बसीठा, चरण कमल मन बेदया, जो रंगम जीठा, जियो प्राण तन मन प्रभु, बिनसे सब झूठा, सलोक त्यागत जलंग ने जीव मीनंग ने, त्याग चात्रक मेघ मंडल है, बाण बेदांच कुरंक नादं, अलबंधन कुसुम बसने, चरण कमलर चंत संत, नानक आना रुचते, मुखडे गाऊ पलक, छड़ियाना डे उचित, जीवन संगम ते स्थणी, हर नानक संता मित पौड़ी, ज्यो मछली बिन

है। नाद कुरंकै बेदया सनमुख उठतावै, पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै, त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै। सलोक चितवंत चरण कमलं सा सा सिया राधन नै बिसरंत नाम अचत, नानक आस पूर्ण परमेश्वर है। शीतला मन मजाहे पलक ना थी वै बाहरा, नानक आसड़ी निवाहे सदा पेखंदो सच धनी पौड़ी। आसावंती आस गोसाई पूरी है, मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है, देहो दर्श मन चाओ ले जाए विसूरी है। होए पवित्र शरीर चरना धूरी है, पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है। सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत है, नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है। हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे, नानक सेई धन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी। सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा, पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा। हर जस लिखे बेअंत सोहै से हथा, चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा। संता संग उदार सगला दुख लथा, सलोक भावी उदूत करण हर रमण संजोग पूर्ण। गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त, कीम ना सक्का पाए सुख मिति हूं बाहरे, नानक सावेलड़ी प्रवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी। सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई, सो मूर्त भला संयोग है जित मिलै गुसाई। आठ पैर हर त्याय कह मन इच्छ पुजाई, वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई। मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई। सलोक पतत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण, शरण सूर भगवान जपंत नानक हर हर हरे। छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास, नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी। मेल लहो दयाल टह पै द्वारिया, रख ले वो दीन दयाल परमत बवहारिया। भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया, तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया। कर गै लेहो दयाल सागर संसारिया। सलोक संत उदरण दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन, निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है। चंदन चंदना सरद रुत मूल न मिटई काम, शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी। चरण कमल की ओट उधरे सगल जन, सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन। तोट न आवै मूल संचया नाम तन, संत जना स्यों संग पाइय वड्डे पुन। आठ पहर हर त्याय हर जस नित सुन। सलोक दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन, दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया। पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप, जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी। जा प्रभ पय दयाल ना व्यापै माया, कोट अगा गए ना।

चरण पखार करो गुर सेवा, मन चरामो भोग, छोड़ आपत बाद हंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग, कहो नानक एक बिन दूजा, अवर ना करन है जोग। टोडी महला पंजवा, सतगुरे आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोभा, चिंता लाहे हमारी रहाओ। अवर ना सूजे दूजी ठाहर, हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़िया लेखा छूटै, हम निर्गुण लेहो उबारी। सदबख सिंधु सदा मेहरबाना, सब ना दे आधारी, नानक दास संत पाछै पर्यो, राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवा, रसना गुण गोपाल निध गायण, सांत सहज रहस मन उपजो, सगले दुख पलायण रहाओ। जो मांगै सोई सोई पावै, सेव हर के चरण रसायण, जन्म मरण दोहूं ते छूटै, पव जल जगत तरायण। खोजत खोज तत् बिचारियो, दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। टोडी महला पंजवा, निंदक गुर कृपा ते हटियो, पार ब्रह्म पर भय दयाला, शिव कै बाण सिर काटियो रहाओ। काल जाल जम जोहे न साकै, सच का पंथा थाटेओ, खात खर्चत किश निखुटत नाही, राम रतन तन खाटेओ। पसमा पूत हुआ खिन पीतर, अपना किया पाया, आगम निगम कह जन नानक, सब देखै लोक सुबाया। टोडी महला पंजवा, किरपन तन मन किलवख परे, साध संग भजन कर स्वामी, ठाकन कौ इक हरे रहाओ। अनक छिद्र बोहित के छुटकत, थाम ना जाही करे, जिसका बोहित तिस यारा दे, खोटे संग खरे। गली सैल उठावत चाहै, ओए ऊहां ही है तरे, जोर सकत नानक किश नाही, प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवा, हर के चरण कमल मन त्याओ, काड़ कुठार पित बात हंता, औखद हर को नाओ रहाओ। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिगड़ न को लागै, जाकी प्रभया गै अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण, करण कारण प्रभ एक, बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता, नानक हर हर टेक। टोडी महला पंजवा, हर हर नाम सदा सद जाप, तार अनुग्रो पार ब्रह्म स्वामी, वसदी की नी आप रहाओ। जिसके से फिर तिन ही समाले, बिन से सोग संताप, हाथ दे राखे जने अपने, हर होए माई बाप। जी जंत होए मेहरवाना, दया तारी हरनाथ, नानक शरण परे दुख पंजन, जाका वड़ प्रताप। टोडी महला पंजवा, स्वामी शरण परयो दरबारे, कोट पराध खंडन के दाते, तुझ बिन कौन उधारे रहाओ। खोजत खोजत बहु प्रकारे, सर्ब अर्थ बिचारे, साध संग परम गत पाई है, माया रच बंधारे। चरण कमल संग प्रीत मन लागी, सुरजन मिले प्यारे, नानक अनद करे हर जप जप, सगले रोग निवारे। टोडी महला पंजवा, कर तीजा चौपद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। हां हां लपट्यो रे मूड़े, कछु ना थोरी, तेरो नहीं सो जानी मोरी रहाओ। आपन राम ना चीनो खिनुआ, जो पराई सो अपनी मनुआ, नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहू चित लायो। सो संचियो जित भूख तसायो, अमृत

बिनसे माया के साधु संगत मिटे बिसूर, सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन की प्यास, एक खिन रह ना सको बिन प्रीतम, दर्शन देखन को धारी मन आस। रहाओ सिमरो नाम निरंजन करते, मन तन ते सब किल विखनास। पूर्ण पार ब्रह्म सुखदाते, अविनाशी बिमल जाको जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ, कर कृपा भेटे गुणतास। सांत सहज सूख मन उपजियो, कोट सूर नानक प्रगास। टोडी महला पंजवां, हर हर पद पावन, जी प्राण मान सुखदाता, अंतर जामी मन को पावन। रहाओ सुंदर सुगड़ चतर सभ्यता, रिद दास निवास भगत गुण गावन। निर्मल रूप अनूप स्वामी, करम भूम बीजन सो खावन। बिस्मन बिस्म पहे बिस्मादा, यान न बियो दूसर लावन। रसना सिमर सिमर जस जीवा, नानक दास सदा बल जावन। टोडी महला पंजवां, माई माया शाल, त्रिन की अगन में की छाया, गोविंद भजन बिन हड़का जाल। रहाओ छोड़ सियान बहु चितराई, दोए कर जोड़ साध मग चल। सिमर स्वामी अंतर जामी, मानुख देह का एहो उत्तम फल। बेद बखयान करत साधु जान, पागहीन समझत नहीं खल। प्रेम भगत राचे जन नानक, हर सिमरन दहन भय माल। टोडी महला पंजवां, माई चरण गुर मीठे, वड़े भाग देवै परमेसर, कोट फला दर्शन गुर डीठे। रहाओ गुण गावत्या चुत अविनासी, काम क्रोध बिनसे मद टीठे। अस्त्र पए साच रंग राते, जन्म मरण बाहुर नहीं पीठे। बिन हर भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे। नाम रतन पायो जन नानक, नाम बेहून चले सब मूठे। टोडी महला पंजवां, साध संग हर हर नाम चितारा, सहजानंद होवे दिन राती, अंकर भलो हमारा। रहाओ गुर पूरा पेट्यो वड भागी, जां को अंत ना पारा वारा। कर गह काड लियो जन अपना, बिकसागर संसारा। जन्म मरण काटे गुरबचनी, बहुना संकट द्वारा। नानक शरण गही स्वामी की, पुनः पुनः नमस्कारा। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भोगवै, हर सिमरत बिन सह सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिखनास, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण पई आसा, दर्शन पेट उतरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना तुख। टोडी महला पंजवां, हर हर चरण हृदय और तारे, सिमर स्वामी सतगुर अपना, कार्य सफल हमारे। रहाओ पुन दान पूजा परमेश्वर, हर कीर्त तत् विचारे। गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकर अगम्या पारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, तिनका बाहुर कश ना बिचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मझारे। टोडी महला नावा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कहो कहां अपनी अदमाई, उर्ज कनक कामनी के रस, नह कीर्त प्रभ गाई। रहाओ जग झूठे कहो साच जान कै, ता स्यो रुच उपजाई। दीन बंद सिमर्यो नहीं कबहू, होत जो संग सहाई।
मगन रहो माया मैं निस्दन छुट्टी न मन की काई कह नानक अब नाहे अनत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगता की एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जल की माछली चरै खजूर। काए रे बकबाद लायो जिन हर पायो तने छपायो रहाओ पंडित होए कै बेद बखाना मूर्ख नाम देवरा मैं जाना। कौन को कलंक रहयो राम नाम लेत ही पतत पवित पय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन कौ परत गया आई एकादशी वर्त रह काहे कौ तीर्थ जाई। पणत नाम देव सुकृत सुमत पय गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन छंदे खेल अच्छ रहाओ कुंभार के कर हांडी अच्छ राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी अच्छ रांडी सांडी हांडी गो बाणिए के कर

साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल कौ दे दान रहाओ। तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार, जिन पैदा इस तू किया सोई दे आधार। जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार, खटखट मालक दिलां का सच्चा परवदगार। कुदरत कीम ना जानिए वड्डा वे परवाहो, कर बंदे तू बंदगी जिचर कट मैं साहो। तू समराथया काथया गोचर, जियो पिंड तेरी रास, रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। तिलंग महला पंजवा कर तीजा, करते कुदरती मुस्ताक, दीन दुनिया एक तू ही सब खलक ही ते पाक रहाओ। खिन माहे था प्यो थापदा आचर्ज तेरे रूप, कौन जाने चलत तेरे अंधियारे मैं दीप। खुद खसम खलक जहान अल्लै, मेहरवान खुद आए, दिन सरैन जे तू दियारा दे सो क्यों दोजक जाए। अजराइल यार बंदे जिस तेरा आधार, गुने उसके सगले आफू तेरे जन देखे दीदार। दुनिया चीज फिलहाल सगले सच सुख तेरा नाओ, गुरमिल नानक बूझिया सदा एक सो गाओ। तिलंग महला पंजवां।

तू दाना तू बिना मैं विचार क्या करी, नामे चे स्वामी बख्संद तू हरी। हल्ले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ हाँ बल बल जाओ, निकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ रहाओ। कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेरवई, द्वारका नगरी रास बगोई। खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मगोल। चंदी हजार आलम एक लखाना, हम चिनी पातशाह सामले बरना। आस पात गज पात नरे नरेंद, नामे के स्वामी मीर मुकंद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग सुही महला पहला, चौप दे कर पहला। पांडा तोए बैस धूप देवो, तौ दूधे कौ जावो। दूध करम फुन सुरत समायण, होए निरास जमावो। जपो ता एको नामा, अवर निराफल कामा रहाओ। एहो मनी टी हाथ करो फोन, नेत्रो नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मथिये, इन बदे अमृत पावो। मन संपटो जित सत सर नावन, पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे, इन बिद साहेब रवत रह। कहिंदे कहे कहे कह जावे, तुम सरे अवर ना कोई। भगतहीन नानक जन जंपै।

अंतर वसै ना बाहर जाए, अमृत छोट काहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवै, बंधन बंध आ सब जग पवै। सेवा करे सो चाकर होए, जल थल महियल रव रहा सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। सुही महला पहला, कर सेवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना। कोटम कर लड़ी मस, तोतिया जूठ ना उतरै, जे सो तोवा तिस। सज्जन सेई नाल मैं, चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन। रहाओ कोठे मंडप माड़ियां, पासो चितवियां हां, टठियां कम ना आवनी विचों सखणियां हां। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन, कुटकुट जियां खावणे बग्गे ना कई अन्न। सिमर रुख शरीर मैं जन देख भुलन, से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया डूगर वाट बहुत, अखी लोड़ी ना लहा हौ चढ़ लंगा कित। चाकरियां चंगियाईया अवर सियाण पकित, नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। सुही महला पहला, जप तप का बंद बेड़ला, जित लंघै वहेला ना सरवर ना उछलै, ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम जीठड़ा, रत्ता मेरा चोला साध रंग ढोला। रहाओ साजन चले प्यारिया, क्यों मेला होई, जे गुण होवै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै, जे मिलिया होई आवा गौण निवारिया है साचा सोई। हम मैं मारने वारिया, सीता है चोला, गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो सौ खरा प्यारा, हम सह केरिया दासियां साचा खसम हमारा। सुही महला पहला, जिन कौ पांडे पाओ तिना सवार सी, सुखी करै पसाओ दुख विसार।

देख बहुत चितराई मनवा दे दस्तावे हो मैं ब्यापिया शब्द ना चीने फिर जूनी आवे नानक नजर करे सो बूझे।

लाल रंगीले प्रीतम मनमोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोह दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै। मेरे ठाकुर अगम अपारे क्या सेवक मावाओ क्या कहरी जावाओ बिदगित पावो दरसारे। मित नहीं पाईए अंत न लहिए मन तरसे चरनारे पावो दान ढीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे। जन नानक कहो गुर कृपा तारी प्रभ हाथ दे निस्तारे सुही महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मंगन बहुता महल ना पावे कहतो पहुता जो प्रेमाने तिन की रीसा कूड़े मूर्ख की हाठीसा रहाओ। पेख दिखावे सच ना कमावे कहतो महली निकट ना आवे। अतीत सदाए माया का माता मन प्रीत कह मुखराता कहो नानक प्रभ बिना सुनी जय कुचल कठोर कामी मुक्त की जय। दर्शन देखे की वड्याई तुम सुखदाते पुरख सुभाई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा बुरे काम को ऊठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया। अवसर अपना बुझैना एना माया मोह रंग लपटाना रहाओ। लोभ लहर कौ बिगस फूल बैठा साज जना का दर्शन दीठा कबहू ना समझे अज्ञान गवारा बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ। बिखे नाद करन सुन पीना हर जय सुनत आलस मन कीना दृष्ट नाही रे पेखते अंदे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ। कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मोहे साध संग दीजै तौ किश पाईए जौ होइए रेना जिसे बुझाए तिस नाम लैना रहाओ। सुही महला पंजवा कर मैं ठाकुर नदर न आवै गल मैं पाहण लै लटकावै भरमे पूला सख्त फिरता नीर बिरोलै खप खप मरता रहाओ। जिस पाहण को ठाकर कहता ओह पाहण लै उसको डुबता गुनहगार लून हरामी पाहण नाव ना पार गिरामी गुरमिल नानक ठाकर जाता जल थल महियल पूर्ण विधाता सुही महला पंजवा।

संत करे हर रंगा, तह मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा। गोहज कथा ए गुरते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सूही महला पंजवा, जा कै दर्श पाप कोट उतारे, भेटत संग एहो पव जल तारे। ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे रहाओ। जा का शब्द सुनत सुख सारे, जा की टहल जमदूत बिदारे। जा की तीरक इस मने सुधारे, जा कै सिमरन मुख उजलारे। प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे, शरण नानक तिन सद बलिहारे। सूही महला पंजवा, रहन ना पावै सुर नर देवा, ऊठ सिधारे कर मुन जन सेवा। जीवत पेखे जिन्नी हर हर त्याया, साध संग तिनी दर्शन पाया रहाओ। बाद सहा सहा वापारी मरना, जो दिसै सो काले खरना। कूड़ै मोहे लपट लपटाना, छोड़ चलिया ता फिर पछताना। कृपा निधान।

सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम्या गोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले।

घुड़सवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम रहाओ। प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ, जीवत मरत निहचर पावे थाओ। सो साहो सेव जे टोट ना आवै, खात खर्चत सुख अंध विहावै। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सुही महला पंजवा, गुर पूरे जपहे दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल। पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा रहाओ। साध संगत स्यों प्रीत बन आई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न सके तीने ताप। निमख न बिसरे हर चरण तुम्हारे, नानक मांगे दान प्यारे। सूही महला पंजवा, से संजोग।

जिस कृपा करे बसे तिसनेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे पाज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बेकार दो कर चारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परन पोखण संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर। हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब से गुर पूरे, मिल पाप तजायण रहाओ। जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म ते आई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पए जप दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवा, कर का काज ना जानी रूड़ा, झूठे तंदे रचियो मूड़ा।

दर्शन कौ लोचै सब कोई, पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई। प्रेम विशोहा करत गसाई, निर्दय जंत तिस दया ना पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई, करवास ना देवै दुत्तर माई। दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष ना दीजै कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवां, कर चौथा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए। कित ही कामना तौल हर, जित हर बिसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग, जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना, माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी, सुख मन संतोखाए। ऐसो राजना कितै काज, जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै, ओह सोभा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया, जेहरा चलो बाए। सब किश तुमरे हाथ प्रभ, आप करे कराए। साथ साथ सिमरत रहा, नानक दान पाए। सूही महला पंजवां, हर का संत प्राण तन, तिसका पनिहारा। भाई मीत सुत सगल ते, जीहू ते प्यारा। रहाओ केसा का कर बीजना, संत चौर टोलावो। शीस निहारो चरण तल, तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो, दीन की न्याई। तजब मान सरणी परो, हर गुण निद पाई। अवलोकन पुनः पुनः करो, जन का दरसार। अमृत बचन मन में सिंचाओ, बंदाओ बार बार। चितवो मन आसा करो, जन का संग मांगो। नानक को प्रभ दया कर, दास चरणी लागो। सुही महला पंजवा, जिन मोहे ब्रह्मांड खंड, ताहू मैं पाओ। राख लेहो एहो बिखई जियो, देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी, ता कै पाछे जाओ। छोड़ जाहे जो सगल कहो, फिर लपटाओ। करहो कृपा करना पते, तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती, साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवा, कर पंजवा पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना। जप मन गोबिंद एक है, अवर नहीं को लेखै। संत लाग मने छाड़, दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया। विच मन कोट वरिया, निज मंदिर प्रिया। तहां आनंद करिया, नै मरिया नै जरिया। कीर्तन जुरिया बहुविद फिरिया, पर कौ हिरिया। बिखना किरिया अब साधु संग परिया। हर द्वारे खरिया दर्शन करिया, नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया। सूही महला पंजवा, रास मंडल कीनो आखारा। सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा, पेखै खुशी भोग नहीं हारा। सब रस लैत बस्त निरारा, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा, नानक रेण।

ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुरै पठाया रहाओ। महादुत्तर माया जैसे पवन चुलाया, सुर सुन ही डराया कर रोत हमराया। ग्रह अंध कु पाया पावक सगराया, गही ओट साधाया नानक हर त्याया। अब मैं पूरा पाया राग सुही महला पंजवां, कर शेवां एको ओंकार। सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेनंतियां, मिले नाम आधारा। तुठा सच्चा पात साहो ताप गया संसारा। भगता की टेक तू संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा रहाओ। सच तेरी सामगरी सच तेरा दरबारा, सच तेरे खजीनिया सच तेरा पासारा। तेरा रूपया गम है अनूप तेरा दरसारा, हम कुर्बानी तेरिया सेवका जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरियां जा पाया अगम्या पारा, गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरणा को बलिहारा। राग सुही महला पंजवा, कर सतवा एको ओंकार। सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाए, जिसनो होए दयाला। साई भगत जो तुद पावे, तू सर्व जिया प्रतपाला।

मेरे राम हौसो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्म हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई। साधक सिद्ध फिरै बिल लाते, ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवधूता। तिन पी अंत न पायो तेरा, लाए थके बिपूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया। सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक, ता मन तन हर हर त्याया। सुही महला पंजवा, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। संतहो सागर पार उतरियै, जे को बचन कमावै संतन का। सो गुर प्रसादी तरियै रहाओ, कोट तीर्थ मजन इस नाना। इस कल में मैल भरी जै, साध संग जो हर गुण गावै। सो निर्मल कर लीजै, वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र। इन पढ़िया मुक्त ना होई, एक अखर जो गुरमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद बैस, उपदेश चौ वर्ण कौ सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मैं, कड़कट नानक माजा। सूही महला पंजवा, जो किश करै सोई प्रमानै। ओए राम नाम रंग राते, तिनकी शोभा सबनी थाई। जिन प्रभ के चरण पराते, मेरे राम हर संतां जीवट ना कोई। भगता बने आई प्रभ अपने स्यों, जल थल मैयल सोई रहाओ। कोट अपराधी संत संग उधरै, जमता कह निर्णय आवै। जन्म

आस चुकाई मेरे राम राए तुद चित आया उबरे तेरी टेक प्रभासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उधरे रहाओ अंध कूप ते काल लिए तुम आप है कृपाला सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेसर बंधन काट छड़ाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुखदाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कछ ना सीओ तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देख।

चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरै द्वारे आया, नानक कहो प्रभ भय कृपाला सतगुर पूरा पाया। सूही महला पंजवा तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरै सो मर जाए। दयाल होवै जिस उपर करते सो तुद साते आए। मेरे साहेब तू मैं मानने मानी, अरदास करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी। रहाओ चरण धूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कहो बल जाई। अमृत बचन हृदय उर तारी तव कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुद पै सारी, तुद जे वड अवर ना कोई। जिसनो लाए लह सो लागे, भक्त तुहारा सोई। दोय कर जोड़ मांगो एक दाना, साहेब तुठे पावा। सास सास नानक आराधे आठ पहर गुण गावा। सूही महला पंजवा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो।

आओ आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौतरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्या इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे, सगल मनोरथ तिस

तिन मुख नाम न उपजै, दूजै व्यापे चोर जियो। मूल न बुझै अपना, से पशुआ से ढोर जियो। नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगै सुख जियो। करता चेतना आवई, फिर लगै दुख जियो। सुख दुख दाता

सच्चे की लिव उबर है बख्शे बख्शन हार जियो अन को की जय मित्रा खाक रलाए मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवे जाए जियो नजर प्रभु ते छुट्टी है नजरी मेल मिलाए जियो गाफल ज्ञान में होने गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो खिंचो तान में गुची है बुरा भला दोए नाल जियो बिन शब्द पैर ते आ सब जो ही जमकाल जियो जिन कर कारण तारे आ सब सहदे आधार जियो सो क्यों मनो विसारी है सदा सदा दातार जियो नानक नाम ना विसरै निदारा आधार जियो सुही महला पहला काफी कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया चले जन्म सवार वखर सच लै पथ पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ मन तन सच सलाहे साचे मन पाया लाल रता मन मानिया गुरपूरा पाया हाँ जीवा गुण सारे अंतर तू वसै मन माए सहजे रस रस मूर्ख मन समझाए आखो के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित निर्दय संभाल प्रीतम अपना जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना मन मुख परम पुलाना ना तिस रंग है मरसी होए विडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा कर आणिया गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद पावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सुही महला पहला ज्यों आरन लोहा पाए पन कढ़ाई है त्यों साक्त जोनी पाए पवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हाँ मैं आवै जाए परम पुलावना रहाओ तू गुरमुख रखन हार हर नाम ते आई है मिले तुझे रजाए शब्द कमाई है तू कर कर वेख आप देह सो पाई है तू देख थापो थाप दर भी नाई है

काया अंदर सब किश वसै खंड मंडल पाताला, काया अंदर जग जीवन दाता वसै सबना करे प्रतपाला, काया का मन सदा सुहेली गुरमुख नाम समाला, काया अंदर आपे वसै अलख ना लखया जाई, मन मुख मुग्ध बूझै नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लिखाई, काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे भंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नव निध पाई है गुर कै शब्द विचारा, काया अंदर तोल तुल आवै आपे तोलनहारा, एहो मन रतन जवाहर माणक तिसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाइय नाही नाम पाइय गुर बिचारा, गुरमुख होवै सो काया खोजै होर सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावै होर क्या को करे चतराई, काया अंदर पाओ पाओ वसै गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा, सच्चा अपना खेल रचाया आवागौन पसारा, पूरे सतगुरे आप दिखाया सच नाम निस्तारा, सा काया जो सतगुर सेवै सच्चा आप सवारी, विण नावै दर ढोई नाही ता जम करे खुवारी, नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा धारी, राग सुही महला तीजा कर दसवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद दुनिया ना साला है जो मर वंज सी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे प्रवाहो, रहाओ दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन, जंपर बदे मारी है वेला ना लाहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पायर चन, तिसना भुख ना उतरै अंधन जलत फेरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप डुबे कुटंब स्यो सगले कुल डोबन, निंदा पली किसै की नाही मनुख मुग्द करन, मोह काले त्रिनिंदका नरके कोर पवन, ए मन जैसा से

आए सतगुर नो मिले से पायरा सच्चा शब्द लगन सच मिले से न विछड़ा दर सच्चा दे सन से भाई से सजना जो सच्चा सेवन अवगण विकण पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुखी उपजै सच्ची भगत करेन सच वणंजै गुर शब्द स्यों लहा नाम लयेन सोइना रूपा पाप कर कर संचियै चलै ना चल दया नाल विणनावै नाल ना चल सी सब मुठी जमकाल मन का तोसा हर नाम है हिरदै रखो संभाल एहो खर्चा खुट है गुरमुख निभै नाल ए मन मूलों भुलिया जासै पत गवाए एहो जगत मोहे दूजै व्यापिया गुरमति सच ते आए हर की कीमत ना पवै हर जस लिखण ना जाए गुर कै शब्द मन तन रपै हर सों रह समाए सो सहो मेरा रंगला रंगे सही सुभाए कामन रंग ता चढ़ै जा पिरकै अंक समाए चिरी विछुन्ने पी मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निद नाम है खान खर्चन नान खुटई हर गुण सहज रवन नावे जन्मै ना मरै नावे दुख सहन गुर राखे से उबरे हर स्यों केल करन सज्जन मिले ना विछड़ै जे अंदन मिले रहन इस जग मैं विरले जानिए नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है किद बिद मिलिया जाए गुर कै शब्द परम कटिए अचिंत वसै मन आए गुरमुख हर हर नाम जपन हों तिन कै बलिहारण मन हर गुण सुधार वन रहाओ गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याय न रंग स्यों गुरमुख नाम लगन तुर पूर्ब होवै लिखिया गुर पाणा मन लयन वडभागी कर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वेखा लिया प्रभ आत ब्रह्म पछान सब ना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोए गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोहो माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए सेवा सा प्रभावसी जो प्रपाए थाए जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चितलाए राग सुही अष्टपदियां महला चौथा कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा हाँ तिस पै आप विचाई दर्शन हर देखण कै ताई कृपा करै ता सतगुर मेलै हर हर नाम ते आई रहाओ जे सुख देहे ता तुझै आराधी दुख पी तुझै ते आई जे भुख देहे ताई तही राजा दुख विच सुख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि

जी जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी राज जियो तुद अंतर हो सुख वसा तू मंत्र साबाह जियो पाणे तख्त वडाईया पाणे पीखो दास जियो पाणे थल सिर सर्व है कमल फुलै आकाश जियो पाणे पवजल लंगी पाणे मंज परिया जियो पाणे सो सहो रंगला सिफतरता गुणदास जियो पाणे सह पिहावला यावन जान मुयास जियो तू सौ अगमा तोलवा हौ कह कह टह पैया जियो क्या मांगो क्या कह सुनी मैं दर्शन पूख प्यास जियो गुरसबदी सह पाया सच नानक की अरदास जियो सूही महला पंजवा गुणवंती जो दिसै गुरसिखड़ा तिस निम निम लागो पाए जियो आखा बिरथा जी की गुरसज्जन दे मिलाए जियो सोई दस

निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु होए दासा जीवत मरी है भव जल तरी है जे थी वह कर्म लिखिया सा गुर से बीजे अमृत पीजे जिसला वह सह त्यानो नानक शरण पया हर द्वार हों बलबल सत कुरबानो सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो न माना सद कुरबाना सगलाया मिटाई है ओह तन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पाया विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवां हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसके बलराम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है कर तिसके बलराम जियो बाबल मेरा वड समर्था करण कारण प्रभारा जे सिमरत दुख कोई ना लागे पौजल पार उतारा आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अंदन मंतन पीवा हरे

भला संयोग मूर्त पल साचा अब चल निवर खाई जन नानक प्रभय दयाला सर्व कला बने आई। आनंदा वजह नित वाजे पार ब्रह्म मन वूठा राम गुरमुखे सच करनी सारी बिरसे परम पै झूठा राम। अनहद बाणी गुरमुख वखाणी जस सुन सुन मंतन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करया। घर मैं नव निध भरे भंडारा राम नाम रंग लागा नानक जन प्रभ कदे न विसरै पूर्ण जाके पागा।

कौड़ा बोल न जाने पूर्ण भगवान अवगुण को ना चितारे पतत पावनो हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने कहले कटकट वासी सर्व निवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा। हाँ बिसम पई जी हर दर्शन देखिया पारा मेरा सुंदर स्वामी जी। हाँ चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा ते जेवड़े अवर ना कोई आदि अंत मध्य प्रभ रव्या जल थल मई अलसोई। चरण कमल जप सागर तरिया पवजल उतरे पारा नानक शरण पूर्ण परमेसर तेरा अंत ना पारा वारा। हाउ निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो गुर सतगुर कहया जी साचा या गंभीचारो मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे सहज सुख आनंद कनेरे हमे बिंठी गाठे सब कै मद सब हूं ते बाहर राग दुख ते न्यारो नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सदारो। मैं खोजत खोजत जी हर निहचल सो कर पाया सब अत्रुव डिठे जियो ता चरण कमल चितलाया प्रभ अविनाशी हों तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सब पूर्ण मन चिंदी इच्छ पुजाए स्रोत सिमरत गुण गावै करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा निध स्वामी वडभागी हर हर गाया। एक ओवंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की सलोका नाल महला तीजा सलोक महला तीजा। सूहै वेश दुहागणी पर पिर रावण जाए पिर छोड़िया कर अपने मोही दूजे पाए। मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग शुद्ध पदार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग। गुरमुख होवै सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच पिर राव्या हर नामा उरतार। आज्ञाकारी सदा सुहागणो आ मेली करतार नानक पिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार। महला तीजा सुहवीए निमाणी है सो सहो सदा समाल नानक जन्म सवार अपना कुलपी छुट्टी नाल पौड़ी। आपे तख्त रचाए उन आकाश पताला हुक्मे तरती साजियान सच्ची धर्मशाला। आप उपायख पाएंदा सच्चे दीन दयाला सब नारिक सुबाहेंदा तेरा हुक्म निराला। आपे आवरदा आपे प्रतपाला श्लोक महला तीजा सुहबता सोहागणी जा मन लह सच नाओ सतगुरे अपना मनाए लै। रूप चढ़ी ता अगला दूजा नहीं था ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे ना हो वही एन सलागे पाओ। नानक सोहागण का क्या चहन है अंदर सच मुख उजला खसम महे समाए। महला तीजा लोका वेहो सुहवी सुहा वेस करी वेसी सहना पाई है कर कर वेस रही। नानक तिन्नी सहो पाया जिन्नी गुर की सिख सुनी जो तिस पावै सो थी है इन बिद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सिट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा सचे लख्या पारा।

जिस तू मिलै सो तुद मिल सोई सचियारा। श्लोक महला तीजा। सूह वी है सूहा सब संसार है, जिन दुरमत दूजा पाओ। खिन मैं झूठ सब बिनस जाए, जो टिके ना बिरख की छाओ। गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सख्त सवै करे आई, मन वस्या हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित मिलिया हर गुण गाओ। महला तीजा। सूहा रंग विकार है, कंत न पाया जाए। इस लैंदे बिलम ना हो वही, रंड बैठी दूजै पाए। मुंद एयानी दुमनी सूहै वे सुलभाए, शब्द सच्चा रंग लाल कर पह पाए। सिंगार बनाए नानक सदा सुहागनी, जे चलन सतगुर पाए पौड़ी। आपे आपो पाया ने आप कीमत पाई, तिसदा यंत्रा जा पई गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है दूजै परमाई, मन मुख ठौर ना पाई नी फिर आवै जाई। जो तिस पावै सो थीऐ सब चलै रजाई। सलोक महला तीजा। सूहै वेस कामन को लखनी, जो प्रभ छोड़ पर पुरख धरे प्यार। ओस सील ना संजम सदा झूठ बोलै, मन मुख कर्म खुवार। जिस पूर्व होवै लिखिया ते सतगुर मिलै पतार। सूहा वेस सब उतार धरे, गल पहरै खिमा सिंगार। पेयै सहुरै बहु सोभा पाए, तिस पूज करे सब संसार। ओहर लाई किसै दी ना रलै, जिस रावे सृजनहार। नानक गुरमुख सदा सुहागणी, जिस अविनाशी पुरख

उड़ते कौ उड़ता, जीवते कौ जीवता मिले, मुवे कौ मुआ। नानक सो सालाही है जिन कारण किया पौड़ी, सच त्यायन से सच्चे गुर शब्द विचारी, हम मैं मार मन निर्मला हर नाम और तारी। कोठे मंडो माणिया लग पए गवारी, जिन किए तिसे ना जाननी मनमुख गोबारी। जिस बुझाए सो बुझसी सच्चा, क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा, कामन तौ सिंगार कारो, जै पहला कंत मनाए, मत से जय कंत ना आवई एवै बिरथा जाए। कामन पिर मन मानिया तौ बनिया सिंगार, किया तौ प्रवान है जां सौ तरे प्यार। पाओ सिंगार तंबोल रस, भोजन पाओ करे, तन मन सौपे कंत कौ तौ नानक पो करे। महला तीजा, काजल फूल तंबोल रस, ले तन किया सिंगार, सेजै कंत ना आयो एवै पया विकार। महला तीजा, तन पिर एह ना आखियन, बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति, तन पिर कहिए सोए। पौड़ी, पै बिन भगत ना हो वई, नाम न लगे प्यार, सतगुर मिलिया पौ उपजै, पै पाए रंग सवार। तन मन रत्ता रंग सिया, हम मैं तृष्णा मार, मन तन निर्मल अत सोहना, पेटिया कृष्ण मुरार। पाओ पाओ सब तिसदा, सो सच वरतै संसार। श्लोक महला पहला, वाहो खसम तू वाहो, जिन रच रचना हम किए, सागर लहर समुंद सर, वेल वर्ष वराहो, आप खड़ोवै आप कर, आप पीना या पाहो, गुरमुख सेवा थाए पवै, उन मन तत कमाहो, मसक तलहो मजूरिया, मंग मंग खसम दराहो, नानक पुर दर वे प्रवाह, तव दरूणा नाहे को, सच्चा वे प्रवाहो। महला पहला, उज्जल मोती सोहने, रत्ना नाल जुड़न, तिन जन वैरी नानका, जे बुढ़े थिए मरन। पौड़ी, हर सालाही सदा सदा, तन मन सौब शरीर, गुर सबदी सच पाया, सच्चा गहर गंभीर। मन तन हिरदै रव रहया, हर हीरा हीर, जन्म मरण का दुख गया, फिर पवै ना फीर। नानक नाम सलाहे तू हर गुणी गहीर, श्लोक महला पहला। नानक हो तन जाल, जिन जलिया नाम विसारिया, पौंदी जाए पराल, पिछे हथ ना अंबड़ै, तित निवंदै ताल। महला पहला, नानक मन के काम, फिटिया गणत ना आवही, किती लहा साम, जां बख्से तां तक्का नहीं। पौड़ी, सच्चा अमर चलायो, न कर सच फुरमान, सदा निःचल रव रहया, सो पुरख सुजान। गुर प्रसादी सेवी, सच शब्द निशान, पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान। आगमा गोचर लख है गुरमुख हर जान। श्लोक महला पहला, नानक बदरा मालका।

कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जा का नाओ बबे को। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहकी सार सुहागन जान है, ताजा मान सुख रलिया मान है, तन मन दे न अंतर रख है, अवरा देखना सुने अपख है, सो कत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द ना पाई, रहाओ दुखी दुहागन दोए पख हीनी, जे ना निरंतर भगत ना कीनी, पुरस लात का पंथ दुहेला, संगना साथी गवने अकेला, दुखिया दर्द वंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो त्यों कर गत मेरी, सूही जो दिन आवै सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम्पी चलना, दूर गमन सिरी ऊपर मरना, क्या तू सोया जाग एना, तैं जीवन जग सच कर जाना, रहाओ जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै, सब कट पीतर हाट चलावै, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा, कह रविदास निदान दिवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने, सूही ऊचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रहन ना होई, एहो तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कास रल गयो माटी, रहाओ भाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काड़ सवेरा, घर की नार उरै तन लागी, ओ तो पूत पूत कर भागी, कह रविदास सवै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरो रहो, बावल होई सो सहलो रहो, तैं सह मन में किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोस, तैं साहेब की मैं सार ना जानी, जोबन खोए पाछे पछतानी, रहाओ काली कोयल तू कितगुन काली, अपने प्रीतम के हम बिरह जाली, पिरै बिहून का तैं सुख पाए, जा हुए कृपाल ता प्रभु मिलाए, विदन खूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली, कर कृपा प्रभ साध संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली, वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बहुत पैणी, उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद राग बिलावल महला।

रजाई, जैसे सच में रहो रजाई रहाओ, जो किश होवा सब किश तुझ ते, तेरी सब असनाई, तेरा अंत ना जाना मेरे साहेब, मैं अंधले क्या चतराई, क्या हूं कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई, जो तुद पावे सोई आखा, तिल तेरी वड़ियाई, एते कुकरा हूं बेगाना, पौका स्तनताई, भगत हीण नाक जे होएगा, ता खसम नाओ ना जाई, बिलावल महला पहला, मन मंदर तन वेस कलंदर, कठी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरा प्राण बस्त है, बाहुड़ जन्म नायावा,

अगमा गोचर लख्या पारा चिंता करो हमारी, जल थल मैयल भरपुर लीना कड़कड़ जो तुम्हारी। सिख मत सब तुम्हारी मंदिर छावा तेरे, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा गुण गावन तेरे। जी जंत सब सरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे, जो तुद पावे सोई चंगा। एक नानक की अरदासे बिलावल महला पहला, आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखे तान, तू दाता नाम प्रमाण। ऐसा नाम

ਰਾਜ ਰੂਪ ਝੂਠਾ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਨਾ ਮਿਲੈ ਚਾਨਣ ਅੰਧਿਆਰ। ਚੱਖ ਛੋਡੀ ਸਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਬਾਪ ਦਿਸੈ ਵੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਏਕੇ ਕਹੋ ਨਾਹੀ ਭਉ ਕੋਏ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਵੈ ਸੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਮੋਏ ਮਨ ਮਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਠਾਕ ਰਹੇ ਮਨਸਾ ਚੈ ਧਾਰਿਆ। ਅਵਰਨਾ ਸੂਜੈ ਗੁਰ ਕਉ ਵਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਨਿਸਤਾਰਿਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰਬਚਨੀ ਮਨ ਸਹਿ ਧਿਆਨੇ, ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਪਰਮ ਭੁਲੇ ਬੋਰਾਨੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਉ ਰਹੀਐ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨੇ। ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਅਰਾ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ। ਖਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਰਹਾਉ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰੈ ਹਮਰੋ ਦੁਖਾਲੀ। ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਜਪੋ ਆਪਣੇ ਹਰ ਭਾਲੀ, ਸਦ ਬੈਰਾਗਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਹਾਲੀ। ਅਵਜਾਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਲੀ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਹੀਐ ਗੁਰ ਭਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਗਮਾ ਗੋਚਰ ਦੇ ਦਿਖਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਰਨੀ ਕਿਆ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਹਉ ਮੈਂ ਮੇੜ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਵਿਛੜੈ ਖੋਟੀ ਰਾਸ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਸਾਬਾਸ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਦਸਨ ਦਾਸ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਰਾਸ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ। ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ, ਜਿਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਫਿਰ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਣੋ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਤੈ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਰਹਾਉ ਤੂੰ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਪਦਾਤਾ, ਕਿਆ ਏ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੁਕਤ ਬੰਦ ਸਭ ਤੂਤੇ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਮੁਕਤ ਕਹੀਐ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋ ਜਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸਦਾ ਰਹਿ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਤਿਨਕੀ ਗਹਿਣ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੇ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਕਹੀਐ, ਨਾਰੋ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰੇ। ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਰ ਜਨ ਮਾਇਆ ਮਾਹਿ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮਸਤਕ, ਕਾਲੈ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਅਤੁਲ ਕਿਉ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਪਾਏ। ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਕੂ ਹੋਏ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਣੈ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ। ਰਹਾਉ ਆਪ ਸਰਾਪ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਏ, ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਆਪ ਚਲਾਏ। ਆਪੇ ਤੋਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਕੋ ਸੋਏ। ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੂਪ ਸਭ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਸਨੋ ਮੇਲੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਸਨੋ ਲਾਏ ਲੱਗੈ ਤਿਸ ਆਏ, ਸਭ ਸੱਚ ਦਿਖਾਲੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਆਪੇ ਲਿਵ ਧਾਤ ਹੈ ਆਪੇ, ਆਪ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਆਪੇ ਜਾਪੇ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਏ ਆਪੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਿਆ ਕੋ ਕਹਿ ਬਹਾਨਾ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਨਾ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਅੰਦਨ ਲਾਗੈ ਸਹਿ ਧਿਆਨਾ, ਰਹਾਓ ਕਿਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਜਬ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੰਚੈ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ, ਤਬ ਕੋਈ ਕਰੋ ਦਿਖਾ ਵਖਿਆਨਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਜੋ ਆਪ ਚਲਾਏ ਤਿਵੈ ਕੋਈ ਚਾਲੈ, ਜੋ ਹਰ ਭਾਵੈ ਭਗਵਾਨਾ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਤੇਰੇ ਕਾਮਾ। ਇਕ ਨਾ ਕਰਮੈ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਇਕ ਪਰਮ ਭਵੈ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਪੂਰਾ ਥੜ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੈ, ਵੇਖੋ ਇਕ ਸਮਾਨਾ।
इस परपंच में साचे नाम की वड्याई मत को तरो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माए समाना। यह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा रहाओ। चहो जुगा का हुन नबेड़ा नर मनुखानो एक निदाना। जत संजम तीर्थ ओना जुगा का धर्म है कल मैं कीर्त हर नामा। जुग जुग आपो अपना धर्म है सोध देखो वेद पुराना। गुरमुख जिनी ध्याया हर हर जगते पूरे परवाना। कहत नानक सच्चे स्यो प्रीत लाए चूकै मन अभिमाना। कहत सुनत सबे सुख पावै मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बिलावल गुर शब्द सुहाए। मंगल नारी गावै आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हाँ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए। हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावै सह सुभाए रहाओ। सदा रंग राते तेरे चाए हर जो आ वसै मन आए। आपे सोभा सद ही पाए गुरमुख मेले मेल मिलाए। गुरमुख राते शब्द रंगाए निजकर वासा हर गुण गाए। रंग चलू लै हर रस पाए एहो रंग कदे न उतरै साज समाए। अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सच राते तन बौन ना फेरा नानक नाम दरड़ाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा। पूरे गुरते वड्याई पाई अचिंत नाम वस्या मन आई। हाँ मैं माया शब्द जलाई दर साचै गुरते सोभा पाई। जगदीश सेवो मैं अवर ना काजा अन दिन अंध होवे मन मेरा। गुरमुख मांगाओ तेरा नाम निवाजा रहाओ। मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुरते शब्द बुझाई। जीवन मरण को संसार वेखै बहु न मरे न जंपे खै। कर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभिमान। सद ही लागा सही ध्यान अंधन गावै एको नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुरते नाम ते आई। जै देखा तरिया समाई सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई। पूरे भाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निदान दिखाया। गुर का शब्द वत मीठा लाया नानक तृष्ण बुझी मन तन सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा कर तीजा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। उद्दम मत प्रभ अंतर जामी ज्यो प्रेरे त्यों करना। ज्यो नटुआ तंत वजाए तंती त्यों वाजे जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिखत लिखे गुर पाया। हर हृदय हर बसना रहाओ। माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना। ज्यो प्रहलाद हर नाक्ष ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत मित कही है हर किए पतत पवन्ना। ओह ढोवै ढोर हाथ चम चमरे हर उदरियो परयो सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पवतारनो हम पापी राख पपना। हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दसन्ना। बिलावल महला चौथा। हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती सरनागत पुरख्या जन्मा। कर कृपा रख लेवो मेरे ठाकरो हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन पज राम ना मैं रामा गुरमत हर रस पाई है होर त्यागो ने फल कामा रहाओ। हर जन सेवक से हर तारे हम निर्गुण राख उपमा। तुझ बिन अवर ना कोई मेरे ठाकुर हर जपिया वड्डे करमा। नामहीन त्रिग जीवते तिन वर दुख सहमा। ओए फिर जोन पवाई है मंद भागी मूड़िया करमा। हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे वड़कर्मा। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनमा। बिलावल महला चौथा। हमरा चित लुभत मोहे बिखिया बहु दुर्बत मैल परा।
तुमरी सेवा करना सके प्रभ हम क्यों कर मुग्ध तारा मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जानी ऊपर कृपा प्रभ तारी मेरे सतगुर पार परा रहाओ हमरे पिता ठाकर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा तुमरा संग लगे से उधरे ज्यो संग काष्ट लोह तारा सागत नर होची मत मध्यम जिन हर हर सेवना करा ते नर भागहीन दोचारी ओए जन्म ओए फिर मरा जिन कहो तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोख गुरसरा दुर्मत मैल गई हर भजया जन नानक पार परा बिलावल महला चौथा आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोथ है कल युग खेवट गुर सब तरो मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिख थिरखे गुण गाए मिल संगत पार परो रहाओ काया नगर मैं राम रासी उत्तम क्यों पाई अब दे जन करो सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखाओ गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बिखरसो राम नाम रस राम रसायण हर सेवो संत जनो चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर भजो बिलावल महला चौथा खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जपैनी गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो नित सेवो दिन सो सब रैनी हर जन देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ अन क्यो पाव चितविय बहु तेरे सा होवै जे बात हो वैनी अपना पला सब कोई बंश है सो करे जे मेरा चितना चितैनी मन की मत आगो हर जन एह बात कठैनी अन दिन हर हर नाम ते आवो गुर सतगुर की मत लैनी मत समत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जनतैनी जन नानके प्रभ करते स्वामी ज्यो पावै तवै बुलैनी बिलावल महला चौथा अनद मूल त्यायो पुरखोत्म अन दिन अंध आनंदे धर्मराय की कान चुकाई सब चूके जमके छंदे जप मानो हर हर नाम गोविंदे वड पागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे रहाओ साकत मूड माया के बद्धक विच माया फिरै फिरंदे तृष्णा जलत किरत के बांधे ज्यो तेली बल्द पवंदे गुरमुख सेव लगे से उधरे वड पागी सेव करंदे जिन हर जपया तिन फल पाया सब टूटे माया फंदे आपे ठाकुर आपे सेवको सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद बोलो भैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगतारनो हर भरपुरे रहा जल थले राम नाम नित गाइय हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसार नहारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम करया सा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निरासी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो राग बिलावल महला पंजवां चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवे तिस्यो मोह क्यों मिलिया प्रभ नासी तोहे कर कृपा मोय मार्ग पावो सात संगत कै अंचल लावो क्यों तरिया बिख्या संसार सतगुर बोहित पावे पार रहाओ पवन चुलारे माया।

हम मैं पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिंगार करे नहीं पावै, जा होए कृपाल ता गुरु मिलावै। हाँ फिरो उदासी मैं करतन दसाया, निर्मोल हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख पही निहाल। जिन चाखिया तिसे आया साध, जो गूंगा मन में मिसमाद। आनंद रूप सब नजरी आया, जन नानक हर गुण अक्ष माया। बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव। बिघन ना लागे जप अलाख्या पेव, तरत पुनीत पई गुण गाए, दुर्त गया हर नाम ते आए रहाओ। सबनी थाई रव्या आप, आद जुगाद जाकावड़ प्रताप। गुर प्रसादना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न होए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सदगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभै रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले। नानक दास खसम प्रतपाले, बिलावल महला पंजवा। सुख निदान प्रीतम प्र मेरे, अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे। मोहे अनाथ तुमरी सरनाई, कर कृपा हर चरण ते आई। दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़, हर सेवक नाही जम पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसे। प्रभ का नाम मन तन आधार, बिसरत नाम हो तन शार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर बिसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा जानड़िए कै कर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे। मैं मन तेरी टेक अवर स्याणपा बिरथिया प्यारे, राखण कौ तुम एक रहाओ। सतगुर पूरा जे मिले प्यारे, सो जन होत निहाला। गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला। सफल मूर्त गुरदेव स्वामी, सर्व कला परपूरे। नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए।

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप लिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय।

सिमरत सिमरत सिमरिय सो पुरख दातार मनते कवो न विसरै सो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरुदेव जा कहो कृपा करहो प्रभ ता कहो लाभो सेव निध निधान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कबो ना विसरै परमानंद। बिलावल महला पंजवा त्रिशन बुझी ममता गई नाठे पै परमा थित पाई आनंद पया गुर कीने धर्मा गुरपुरा आराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन तन तन मन सब शीतल पया पाया सुखबीर रहाओ सोवत हर जप जागया पेख्या बिस्माद पी अमृत तृप्ता सिया ता का अचरज स्वाद आप मुक्त संगी तरे कोल कुटां ब्योदारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे नीचा नाथया जान मैं निर्गुण गुणहीन नानक कहो कृपा पई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन नाही ठाओ तान दीबान परवार तन प्रभ तेरा नाओ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाओ संता एक त्यावना दूसर को ना है एक सिया गै बेनती रव्या सर्वथाए कथा पुरातन यो सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड की है जान लिए मानी सत बचन नानक कह प्रगट सब माहे प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिन को पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा बंधन काटै सो प्रभु जा कै कल हाथ अवर कर्म नहीं छूटी है राखो हरनाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखै गोपाल राओ आसा परम विकार मोह इन मैं लोभाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी तुम्हारे ज्यो तू राखै त्यो रहा प्रभ अगम्य अपारे करण कारण समर्थ प्रभ देह अपना नाओ नानक तरिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल महला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत महामोहनी मोहया नरक की रीत मन खुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा खरका पैखर तव छुटै जो ऊपर लादा रहाओ जप तप संजम तुम खंडे जम के दुख डांड सिमरै नाही जोन दुख निर्लजे पांड हर संग सहाई महामीत तेस्यों तेरा भेद बीदा पंच बटवारई उपजो महाखेद नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना तन तन सर्बसे अपना प्रभ जन कौ दीना। बिलावल महला पंजवा उद्यम करत्या आनंद भया सिमरत सुखसार जप जप नाम गोबिंद का पूर्ण विचार चरण कमल गुर के जपत हर जप हों जीवा पार ब्रह्म आराध ते मुख अमृत पीवा रहाओ जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच तन सो थान बसंत तन जह जपिए नाम कथा कीर्तन हर अत घना सुख सहज विश्राम मनते कदे न विसरै अनाथ को नाथ नानक प्रभ शरणागति जा कै सब किश हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़िया
ਫੁਰ ਸੁਖ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਸੀਤਲ ਹੋਤ ਆਇਆ। ਜੀਵਤ ਆ ਅਥਵਾ ਮੋਇਆ, ਕਿਛ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਜਿਨ ਇਹੋ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਉ ਤੇ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਰਹਾਓ। ਹਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸਨ ਸੀਤ ਕਰਤਾ ਕਰੈ, ਕਾਮ ਤੇ ਕੱਢ ਹੈ, ਕੀਰੀ ਤੇ ਹਸਤੀ ਕਰੈ, ਟੂਟਾ ਲੇ ਗੰਢ ਹੈ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਤ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਨ ਸਰਵ ਫਲ, ਰਵੀਐ ਹਰ ਨਿਰਤ। ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਨਾ, ਸਰਨ ਪ੍ਰਭਸਾਦ, ਮੋਹ ਮਗਨ ਕੂਪ ਅੰਧ ਤੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਾਢ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਖੋਜਿਤ ਖੋਜਿਤ ਮੈਂ ਫੇਰਾਂ, ਖੋਜੋ ਬਨਥਾਨ, ਅਸ਼ਾਲਿਆ ਸ਼ੇ ਦਾ ਭੇਦ ਪ੍ਰਭ ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ। ਕਬ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਆਤਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਪਲਾ, ਬਸੀਐ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਰਹਾਓ। ਵਰਨ ਆਸਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਣੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਪੰਚ ਤਤ, ਠਾਕਰ ਅਬਨਾਸ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਸੰਤਨ ਕਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਜੋਗੀ ਸਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਾ ਕੋ ਮਿਲੇ, ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਈਸਰ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰੇ, ਬਿਨਸੇ ਤਹਿ ਪਰਮਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੇਟਿਆ, ਜਾਂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜੀ ਜੰਤ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਏ, ਦੇਖ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕਰ ਜੋ ਤਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਹਰਿ ਆਪ। ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਨਿਬਹਤ ਰਹੇ, ਗੁਰਸਬਦ ਅਖੂਟ, ਪੂਰਨ ਪਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਤੂਟ। ਰਹਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗ ਆਰਾਧਨਾ, ਹਰ ਨਿਧ ਅਪਾਰ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਹਰ ਕਾਮ ਮੋਖ, ਦੇਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਰ। ਭਗਤ ਆਰਾਧੈ ਏਕ ਰੰਗ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਸੰਚਿਆ, ਜਾਂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਸੁਮਾਰ। ਸਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਈ ਐ ਬੇਅੰਤ ਗੁਸਾਈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ।

हाथ और हाओ जीवन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद। रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जय कार जगत में सफल जा की सेव। ऊच अपार गणत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा।

गावत प्रभु नाम सहज सुख आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल पय राखे प्रभु आप, नानक प्रभु शरणागति जा कावड़ परताप। बिलावल महला पंजवां तरत सुहावी सफल थान, पूर्ण पय काम पौनाठा प्रमिट गया रव्या नित राम। सात जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट भय संसार मैं फिरते पहनाम, नानक ते शरणागति कड़कड़ सब जान। बिलावल महला पंजवां रोग मिटाया आप प्रभ उपजा सुख सात, वट प्रताप अचरज रूप हर की नीदात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। बिलावल महला पंजवां मर मर जन्मे जन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेवया अंदन रंगराता। सात सहज आनंद घना पूर्ण पई आस, सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन तुम अंतर जामी, थान थनंतर रव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवां पाती वाओ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पय सहाई। बिलावल महला पंजवां अपने बाल के आप रखिया नो, पार ब्रह्म गुरुदेव सुख सात सहज आनंद पय पूर्ण पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जी वालिया नो जा कावड़ प्रताप। दोख हमारे बख्शियां नो अपनी कल तारी, मन बाइत फल दित्या नो नानक बलिहारी। राग बिलावल महला पंजवां चौप दे दुप दे कर शेवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मोहन श्रवण यह ना सुनाए, साकत गीत नाद तुन गावत, बोलत बोलिया जाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवाओ सदा करो करताए, अपैदान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख पंजन। मोहे चरण हृदय वसाए, सब हूं तले तले सब ऊपर, एह दृष्ट दृष्टाए अभिमान खोए खोए खोए खोई हों। मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए, अतुल अतुल अतुल नह तुलिये भगत वच्छल कृपाए। जो जो शरण पर्यो गुर नानक अपह दान सुख पाए। बिलावल महला पंजवां प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाओ बार है रहाओ। उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितार है, सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरा परिवार है। जो तुम करहो सोई पल हमरे, पेख नानक सुख चरणार है। बिलावल महला पंजवां सुनियत प्रभ तो सगले उदाहरण, मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मने बिसारन रहाओ। संच बिख्याले ग्रह जकीनी अमृत मनते डारन, काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बेदारन। इनते काढ़ लेहो मेरे स्वामी हार परे तुम सारन, नानक की बेनंती प्रप है साध संक रंक तारन। बिलावल महला पंजवां संतन कै सुनियत प्रभ की बात,
कथा कीर्तन आनंद मंगल तोन पूर रही दिन से रात रहाओ। कर कृपा अपने प्रभु कीने नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभु के काम क्रोध इस तन ते जात। तृप्त अगाए पेख प्रभु दर्शन अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवा। राख लिए अपने जने आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिरस गए सब शोक संताप। रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवारी राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुखदाते गुर कै बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम पै बिनसे कहो नानक ठाकर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। ताप लाहया गुर सिरजनहार सतगुर अपने कौ बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार। रहाओ कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगह परवान। राग बिलावल महला पंजमा चौपदे दोपदे कर सतवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्दो जारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा। रहाओ बिस्मन बिस्म पए जौ पेखियो कहन न जाए वड़ियाई। मगन पए ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा। ऊचन ऊंचा बीचना खींचा हों तेरा तू मोरा। एक अंकार एक पासारा एक है प्रयापारा। एक विस्तीर्ण एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा। अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर काम ना आवत है जा स्यो राच माज तुम लागे ओ मोनी मोहावत है। रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिन मैं जावत है। उर्ज रहे हो इंद्री रस प्रेरे हो बिखै ठगौरी खावत है। तिरण को मंदिर साज सवार हो पावक तलै जरावत है। ऐसे गढ़ में ऐठा ठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूंड पर ठंडे केस गहे फेर आवत है। दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहे हो मदमावत है। जाल पसार चोग विस्थारी पंखी जोफा हावत है। कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम या पारिया मोली प्राण प्यारो मन अधारो चीत चितवो जैसे पांत बोली। रहाओ सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली। प्रेम मुख लागो जाओ वट पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली। कहो नानक प्रेरवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा। गोबिंद गोबिंद गोबिंद मई जब ते पेटे सा दयारा तब ते दुर्मत दूर पही। रहाओ पूर्ण पूर रहे हो संपूर्ण शीतल सां दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते हो मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साकै एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा। बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किश कथन न जाई। जह जह देखा तै रया समाई। रहाओ जय महा भयान दुख जम सुनिए
तह मेरे प्रभ तुह सहाई, शरण परयो हर चरण गए प्रभ, गुरु नानक बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, आगम रूप अविनाशी करता, पतत पवित एक निमख जपाई है, अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले, संत चरण चरण मन लाई है, कित विधि है कित संयम पाई है, कौ सुरजन के जुगति त्याई है, रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, ओ तिसकी लई लई फुन जाई है, नानक सरन सरन सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत सरन संत टहल करी, तंद बंद अर सगल जंजारो, अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज अर करो आनंदा, गुरते पायो नाम हरी, ऐसो हरस बरना सा कहो, गुरपुर है मेरी उल्ट दरी, पेख्यो मोहन सब कै संगे, ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहो कृपा निद, कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हों क्या कहता, जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे, तिसे आज्ञा क्या कहता रहाओ, अन बोले कहो तुही पछाने, जो जियन मैं होता, अरे मन काए कहां लौ डहके, जो पेहती संग सुनता, ऐसो जान पए मन आनंद, आन न बियो करता, कहो नानक गुर पहे दयारा, हर रंग न कभू लहता। बिलाव महला पंजवा, निंदक ऐसे ही चर परी है, ए निशानी सुनो तुम पाई, ज्यो कालर पीत गिरी है, रहाओ जो देखे शिदर तो निंदक उमा है, पलो देख दुख परी है, आठ पहर चितव नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरी है, निंदक प्रभु पुलाया, काल नेरे आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानका रखाया प्रभ स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा, ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे, पेखत सुनत सदा संघरे रहाओ, काज बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिखिया मैं लपटाए जरे, अंधकूब मैं परे उपरानी, परम गुबार मोहे बंद परे, कहो नानक प्रभ हो दयारा, गुर पेटे काडे भा फरे। बिलावल महला पंजवा, मंत्र रसना हर चीना, पय आनंदा मिटे आंदे से, सर्व सुख मोको गुरदीना, रहाओ एआनप ते सब पई सियानप, प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे रखे अपने कहो, काहू ना करते कछ कीना, बल जावो दर्शन साधु कै, जे प्रसाद हर नाम लीना, कहो नानक ठाकुर पारोसै, कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई रहाओ,

परताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण पर्यो नानक दास, जाते उपर को नाही। बिलावल महला पंजवा, सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कहीं दुख न व्यापै, आगै दरगै पूर्ण काम। रहाओ आप त्याग परिय नित सरणी, गुर ते पाइय हो निदान, जन्म मरण की कटिया फांसी, साची दरगै का निशान। जो तुम करहो

आप रहाओ कर कृपा हस्त प्रभ दीने जगत उदार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा कृष्ण बुझी मन तन सहित राप अनाथ को नाथ शरण समर्था सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वच्छल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक आलाप बिलावल महला पंजवा जिस ते उपजत सह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम होए कल्याण रहाओ गुरपुरा पेट्यो वड पागी अंतर जामी सुगण सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समर्थ निमाण्या को मान प्रम पै बिनस गए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास आराधे नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बिलावल महला पंजवा दोवै थाव रखे गुरसूरे हल्त पल्त पार ब्रह्म सवारे कार्य होए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु तूरे आवन जान रहे थित पाई जन मरण के मिटे बिसूरे प्रम पै तरे छुट्टे पै जमके कट कट एक रहया पर पूरे नानक सरन परयो दुख पंजन अंतर बाहर पेख हजूरे बिलावल महला पंजवा दर्शन देखत दोख नसे कबो न होवो दृष्टया गोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण्या धार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार सुमारी सास सास प्रभ तुझै चितारी कृपा निध प्रभ दीन दयाला जी जंत की करो प्रतपाला आठ पहर तेरा नाम जन जापे नानक प्रीत लाई प्रभ आपे बिलावल महला पंजवा तन तन योबन चलत गया राम नाम का भजन ना कीनो करत बिकार निस्पोर पया रहाओ अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस

रहाओ। गुर को शब्द मेरा ही हरै बस है, हर नामा मन संग धरो, तस्कर पंच निवारो ठाकर, सगलो परमा होम जरो। जो तुम करो सोई पल मान, पावन दुबदा दूर टरो, नानक के प्रभु तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उदरो। बिलावल महला पंजवा, ऐसी दीख्या जन स्यो मंगा, तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा, तुमरी सेवा तुम्हारे अंगा रहाओ। जन की टहल संपाखन जन स्यो, उठन बैठन जन कै संगा, जन चर राज मुख माथे लागी, आशा पूर्ण अंत तिरंगा। जन पार ब्रह्म जा की निर्मल महिमा, जन के चरण तीर्थ कोट गंगा, जन की तूर कियो मज्जन नानक, जन्म जन्म के हरे कलंगा। बिलावल महला पंजवा, ज्यो पावै त्यो मोहे प्रतपाल, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु, हम पार्ग तुम पिता कृपाल रहाओ। मोहे निर्गुण गुण नाही कोई, पहुंच ना सको तुमरी काल, तुमरी गतमित तुम ही जानो, जियो पिंड सब तुमरो माल। अंतरजामी पुरख स्वामी, अन बोलत ही जानो हाल, तन मन शीतल होए हमारो, नानक प्रभ जियो नदर निहाल। बिलावल महला पंजवा, राग सदा प्रभ अपने साथ, तू हमरो प्रीतम मन मोहन, तुझ बिन जीवन सगलिया काथ रहाओ। रंक ते राओ करत खिन पीतर, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, जल ते अगर मैं जन आप उधारे, कर अपने दे राखे हाथ। शीतल सुख पायो मन तृप्ते, हर सिमरतो श्रम सगले लाथ, निर्दान नानक हर सेवा, अवर सियानप सगलिया काथ। बिलावल महला पंजवा, अपने सेवको कबो ना बिसारो, उरला गोस्वामी प्र मेरे, पूर्व प्रीत गोबिंद विचारो रहाओ। पतत पावन प्रभ बिर तुमारो, हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जा रहो। जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारो, जन नानक प्यास चरण कमलन की, पेख दर्श स्वामी सुख सारो। बिलावल महला पंजवा, आगे पाछे कुशल भया, गुरपुरे पूरी सब राखी, पार ब्रह्म प्रभ कीनी माया रहाओ। मन तन रव रहया हर प्रीतम, दुख दर्द सगला मिट गया, सांत सहजया नंद गुण गाए, दूत दुष्ट सब होए खया। गुण अवगन प्रभ कछ ना बिचार्यो, कर कृपा अपना कर लया, अतुल बड़ाई अचुत बनासी, नानक उचरे हर की जया। बिलावल महला पंजवा, बिन पै भगती तरन कैसे, करो नगरो पतो धारनो, राग स्वामी आप भरोसे रहाओ। सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत, बिख्या राता स्वान जैसे, औद बिहावत अधिक मोहावत, पाप कमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख निरंजन, साधु संगत रमन जैसे, केशव कलेस नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे। राग बिलावल महला।

तन तन कलातो सब देख अभमाना, बिन नामै किछ संग ना जाना रहाओ। कीचै रस भोग खुशियां मन केरी, तन लोका तन पसमै टेरी। खाकू खाक रलै सब फैल, बिन शब्द नहीं उतरै मैल। गीत राग कंताल से कूरे, त्रिगुण उपजे बिन से दूरे। दूजी दुर्मत दर्द ना जाए, छूटै गुरमुख दारू गुण गाए। तोती उजल तिलक गल वाला, अंतर क्रोध।

गोबिंद पूर्ण आस एक निमख रहन ना जाए वड़ भाग नानक पाए प्रभ तुझ बिना नहीं होर मन प्रीत चंद चकोर जो मीन जल सो हेत अल कमल भिन ना पेत ज्यो चकवी सूरज आस नानक चरण प्यास ज्यो तरन भरत प्राण ज्यो लोभिए धन दान ज्यो दूध जलै संजोग ज्यो महा खुदियारथ भोग ज्यो मात पूतै हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हिरत निसंग महंग लै का मैं बंद ज्यो ग्रस्त बिखई तंद ज्यो जुआर बिसन ना जाए हर नानक्यो मन लाए कुरंक ना दैने हो चात्रक चाहत में हो जन जीवना सतसंग गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्व फल हर ले कुल समूह कर तो दार संसार उत्तर सपार हर चरण बोस्तता है मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मुरार

एकमेक अंकार निराला, अमरा जोनी जात ना जाला, आगमा गोचर रूप ना रेखिया, खोइत खोइत कटकट देखिया, जो देख दिखावे तिसको बल जाई, गुरप्रसाद परम पद पाई, क्या जब जापो बिन जगदीसै, गुर के शब्द महल कर दीसै रहाओ। दूजे पाए लगे पछताने, जम दरबां दे आवन जाने, क्या ले आवे क्या ले जाहे, सिर जम काल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूट सकोए, पाखंड कीने मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, धरत आकाश किए बैसन को थाओ, रात दिनंत किए पहु पहाओ, जिन किए कर वेखण हारा, अवरना दूजा सिरजन हारा, तृतीया ब्रह्मा बिशन महेसा, देवी देवो पाए वेसा, ज्योति जाति गणत ना आवै, जिन साजी सो कीमत पावै, कीमत पाए रहा भरपूर, किस नेड़ै किस आखां दूर, चौथे उपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी पेदा, अष्ट दशा खड़की ने उपाए, सो बुझे जिस्या बुझाए, तीन समावै चौथे वासा, प्रणवत नानक हम ताके दासा, पंचमी पंच भूत बेताला, आपा गोचर पुरख निराला, एक ब्रह्म भूखे मोह प्यासे, एक रस चाख शब्द तृप्तासे, एक रंग रात एक मर तूर, एक दर कर सच देख दूर, झूठे को नाही पत नाओ, कबो न सूचा काला काओ, पिंजर पंखी बंदिया कोए, शेरी परमै मुक्त ना होए, तव छूटै जा खसम छड़ाए, गुरमत मेले भगद रड़ाए, खष्टी खट दर्शन प्रभ साजे, अनहद शब्द निराला वाजे, जे प्रभ पावै ता महल बुलावै, शब्दे भेदे तव पद पावै, कर कर वेस खपै जल जावै, साचे साचे साज समावै, सप्तमी सत संतोख शरीर, सात समुंद भरे निर्मल नीर, मज्जन सील सचरदै विचार, गुर कै शब्द पावै सब पार, मन साचा मुख साचो पाए, सच नी साने ठाक ना पाए, अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधै, सच नेह केवल कर्म आराधै, पौन पानी अग्नि बिसराओ, तही निरंजन साचो नाओ, तिसमै मनुआ रहया लिवलाए, प्रणवत नानक काल ना खाए, नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा, घट घट नाथ महाबलवंडा, आई पूता एहो जग सारा, प्रभ आदेश याद रखवारा, आज जुगा दी है पी होग, ओह परंपर करण है जोग, दसमी नामदान इशनान, अंदन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान, सच मैल न लागै भ्रम पौ पागै, बिलम न टूट सका चै तागै, ज्यो तागा जग एवै जानो, अस्त्र चा अस्त्र जी साच रंग माणो, एकादशी करदै वसावै, हिंसा ममता मोह चुकावै, फल पावै ब्रत आत्म चीनै, पाखंड राज तत् नहीं बीनै, निर्मल निराहार नेह केवल, सूचे साचे ना लागै मल, जै देखो तहे को एका, होर जियो पाए वेको वेका, फलो हर किए फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़ै लालच लपटै लपटाए, छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुंद्रा मन अवदूता, अहनस जागै कवै ना सूता, जागत जाग रह लिवलाए, गुर परचै तस खाल ना खाए, अतीत भय मारे बैराई, प्रणवत नानक तैं लिवलाई, द्वादशी दया दान कर जाणै, बाहर जातो भीतर आणै, बरती बरत रह नेकाम, अजपा जाप जपै मुख नाम,
तीन पवन मैं एको जाना सब सुत संयम साच पछाण है। तेर सतरवर समुंद किनार है अमृत मूल शिखर लिवतार है। डर डर मरै ना बूढ़ कोए निडर बूढ़ मरै पत खोए। डर मैं घर घर मैं डर जाना तख्त निवास सच मन पाण है। चौदस चौथे थावै लै पावै राजस तामस सतकाल समावै। ससियर कै कर सूर समावै जो जोत की कीमत पावै। चौदस पवन पताल समाए खंड ब्रह्मंड रहा लिवलाए। अमावस्या चंद गुप्त गैनार बुझो ज्ञानी शब्द विचार। ससियर गगन जोत त्यो लोई कर कर वेखै करता सोई। गुरते दिसै सो तिसी माहे मनमुख पूले आवै जाए। घर दर थाप थिरथान सुहावै आप पछाणै जा सतगुर पावै। जह आसा तह बिनस बिनासा फूटै खप्पर दुबदा मनसा। ममता जाल ते रह उदासा प्रणवत नानक हमता के दासा। बिलावल महला तीजा वार सत कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आदित वार आद पुरख है सोई आपे वरतै वरना कोई। ओत पोत जग रहा परोई आपे करता करे सो होई। नाम रते सदा सुख होई गुरमुख विरला बूझै कोई। हृदय जपनी जपो गुणतासा हर अगम्या गोचर परंपर स्वामी। जन पग लग त्यावो होए दसन दासा रहाओ। सोमवार सच रहा समाए तिसकी कीमत कहीं ना जाए। आख आख रहे सब लिवलाए जिस दे वै तिस पल्लै पाए। अगमा गोचर लखिया ना जाए गुर कै सबधार रहा समाए। मंगल माया मोह उपाया आपे सिर सिर तंदै लाया। आप बुझाए सोई बूझै गुर कै शब्द दर कर सूझै। प्रेम भगत करे लिवलाए हम मैं ममता शब्द जलाए। बुद्ध वारे आपे बुद्ध सार गुरम करनी शब्द विचार। नाम रते मन निर्मल होए हर गुण गावे हम मैं मल खोए। दर सच्चै सद सोभा पाए नाम रते गुर शब्द सुहाए। लाहा नाम पाए गुरुद्वार आपे देवै देवनहार। जो देवै तिसको बल जाइए गुर प्रसादी आप गवाइए। नानक नाम रखो उरतार देवनहारे कौ जयकार। वीरवार वीर परम पुलाए प्रेत पूत सब दूजै लाए। आप उपाय कर वेखै वेका सबना करते तेरी टेका। जी जंत तेरी सरनाई सो मिले जिस लहै मिलाई। शुक्रवार प्रभ रहा समाई आप यो पाए सब कीमत पाई। गुरमुख होवै सो करै विचार सच संयम करनी है कार। वर्त नेम नेता प्रत पूजा बिन बूझे सब पाओ है दूजा। शनिश्चरवार सौन शास्त्र विचार हम मैं मेरा परमै संसार। मनमुख अंधा दूजे पाए जमदर बाधा चोटा खाए। गुरप्रसादी सदा सुख पाए सच करनी साच लिवलाए। सतगुर सेवै सेवट पागी हम मैं मार सच लिवलागी। तेरा रंगराते सह सुभाए तू सुखदाता लह मिलाए। एक स्ते दूजा नहीं कोए गुरमुख बूझै सो जी होए। पंद्रह थित्ती तैं सत वार महारुति आवै वार वार। दिन सरैण तवै संसार आवा गौण किया करतार। निहचल साच रहा कल तार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार। बिलावल महला तीजा आद पुरख आपे सृठ साजे। जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए परपंच लागे। आवै जाए मरै आ भागे।
ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਪਰਪੰਚ ਚੁਕੈ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਰਹਾਉ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਸਭ ਵੇਖੈ, ਕੋਈ ਨ ਮਿਟੈ ਤੇਰੇ ਲਿਖੈ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਹਾਏ, ਭਰਮੇ ਪੂਲਾ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨ ਬੂਜੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਜੈ। ਏਕ ਸਤੇ ਸਭ ਦੂਜਾ ਹੂਆ, ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਅਵਰ ਨ ਬੀਆ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੇ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਦਰ ਨੀਸਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਏਕੋ ਪਾਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਠਾਕ ਰਹਾਏ। ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਤਿਸਨੋਂ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਸਰਨਾਈ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਤਿਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਕੌਣ ਡਰੈ ਡਰ ਕਿਸਕਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸੈ ਸਰੀਰ, ਸਭ ਚੀਨ ਫਿਰ ਲੱਗੈ ਨਾ ਪੀਰ। ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਹਿ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖੈ ਹਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਦ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਹਰ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਮਨ ਰੋਸ ਕੀਜੈ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਏ। ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸਭ ਆਵੈ ਜਾਹੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਹਚਲੋ ਸਦਾ ਸਚ ਸਮਾਹੇ। ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸੱਚ ਰਾਤੇ, ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਚੇ। ਮਨਮੁਖ ਮਰੈ ਮਰ ਬਿਗਤੀ ਜਾਹੇ, ਇਕ ਨਾ ਚੇਤੈ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਹੇ। ਅਚੇਤ ਪਿੰਡੀ ਅਗਿਆਨ।

ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिया। आप करता आप पहुता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया। बिलावल महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सखी आओ सखी वस आओ सखी असी फिरका मंगल गावे तजमान सखी मत अपने प्रीतम पावे। तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजन हो लग चरण सरण दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो। होए दास दासी ताजो दासी बहुड़ बिदी ना तावा नानक पयम पै करो कृपा ताम मंगल गावा। अमृत प्रेका नाम मैं अंधले टोहनी ओह जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी। मोहनी महाबचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए टीठ मीठी मन लागे नाम लैण ना आवे। गृह बने तीरे बर्त पूजा बाट काटे जोहनी नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंदरे टोहनी। मोहया नाथ प्रे नाथ ज्यो जानो त्यों रखो चतराई मोहे नाए रिझावो कै मुखो। नह चतर सुगर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं

वाए गुण रवै गुण संग्रह ज्योति ज्योत में लाए इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंद चित लाए नानक जिन को नजर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाए महला तीजा सतगुर की सेवना कीतिया शब्द ना लगो पाओ हम मैरू कमावना अदीर्घ बहु सुआओ मन हठ कर्म कमाव दे फिर जोनी पाए गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लय मिलाए नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल पाए पौड़ी सब वड्याईया हर नाम विच हर गुरमुख त्याई है जे वस्त मंगी है साई पाई है जे नाम चित लाई है गोहज गल जी की कीचै सतगुरु पास ता सर्व सुख पाई है गुरपुरा हर उपदेश दे सब भुख लै जाई है जिस पूर्व होवै लिखिया सो हर गुण गाई है सलोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरे प्रभ मेल मिलाए सतगुर का दर्शन सफल है जिहा को इच्छे तिहा फल पाए गुर का शब्द अमृत है सब तृष्णा भुख गवाए हर रस पी संतोख होवा सच वस्या मन आए सच ते आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सचो दै दस पसरिया गुर कै सह सुवाए नानक जिन अंदर सच है से जन छपै ना किसै देश पाए महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जा को नदर करे मानस ते देवते पए सच्ची भगत जिस दे हाँ मैं मार मिलायन गुर कै शब्द सोचे नानक सह जे मिल रहे नाम वड्याई दे पौड़ी गुर सतगुर विच नाम है की वड्डी वड्याई हर करतै आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओना अंदर हिरदै पाई निंदक दुष्ट वड्याई वेख ना सकन ओना प्राया भला ना सुखाई क्या होवै किसी दी क्या होवै किसी की चख मारी जा सच्चे स्यों बने आई जे गल करते पावै सा नित नित चढ़ै सवाई सब चख चख मरै लोकाई सलोक महला तीजा त्रिग एह आसा दूजे भाव की जो मोह माया चित लाए हर सुख पल्लर त्यागया ना विसार दुख पाए मन मुख अज्ञानी अंधले जन्म मरे फिरे आवै जाए कार्य सिद्ध न होवनी अंत गया पछताए जिस कर्म होवै तिस सतगुर मिले सो हर हर नाम ते आए नाम रते जन सदा सुख पाए न जन नानक तन बल जाए महला तीजा आसा मनसा जग मोहनी जिन मोया संसार सबको जम के चीरे विच है जेता सब आकार हुक्मी ही जम लगदा सोबरै जिस बख्शै करतार नानक गुर प्रसादी हो मनता तरै जा छोड़ै हंकार आसा मनसा मारे निराश होए गुर शब्दी विचार पौड़ी जिथे जाइए जगत मैं तिथे हर साई अगै सब आपे वरतदा हर सच्चा न्याई कूड़ यारा के मोह फिटकी सच भगत वड्याई सच साहेब सच्चा न्याओ है सिर निंदक शाई

मीठा बोलै अमृत बाणी अंदर हर गुण गाओ, निज घर वासा सदा सोहंदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जिवे हरी, सो गुरु हर तन हर पासो देवाया, जे किसै किहो दिस आवै तां कोई किहो मंग लै, अकै कोई किहो देवाए, एहो हर तन जोर कीते किसै नाल ना जाए वंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर सरदा लाए, तिस हर तन की वंड हथ आवै, जिसनो करतै तुर लिख पाया, इस हर तन का कोई शरीक नाही, किसै का खत नाही, किसै कै सीव बन्नै रोल नाही। जे को हर तन की बखीली करे, तिसका मोह हौर चौ कुंडा विच काला कराया। हर के दिते नाल किसै जोर बखीली ना चलई, देहो देहो नित नित उचड़ै सवाया। श्लोक महला तीजा।

कोई वाहे को लुणे को पाए खलहान, नानके अपना जापई कोई खाए निदान। महला पहला जिस मन वसया तरिया सोए, नानक जो पावे सो होए। पौड़ी पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुर मेहरवान परम पौ मारिया। काम क्रोध विकराल दूत सब हारिया, अमृत नाम निदान कंठे उर तारिया। नानक साधु संग जन मरण सवारिया, सलोक महला तीजा जिन्नी नाम विसारिया। कूड़े कहन कहन पंच चोर तिन्ना घर मोहन, हम मैं अंदर सन साकत मुठे दुरमति हर रस ना जानन। जिन्नी अमृत परम लुटाया बिकसो रचै रचन, दुष्टा सेती परहड़ी जन से वाद करन। नानक साकत नरक मैं जम बदे दुख सहन, पया किरत कमाम दे जब राखै तवै रहन। महला तीजा जिन्नी सतगुर सेवया तान निताने तिस, सास ग्रास सदा मन वसै जम जोहे न सकै तिस। हिरदय हर हर नाम रस कवला सेवक तिस, हर दासा का दास होए परम पदार्थ तिस। नानक मंतन जिस प्रभ वसै हौ सतगुर बाणै तिस, जिनको पूर्व लिखिया रस संत जना स्यों तिस। पौड़ी जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेसर सुनिया, सोई वर्तिया जगत मैं कट कट मुख पणिया। बहुत वडियाइया साहेब नै जाही गणिया, सच सहज आनंद सतगुरु पास सच्ची गुरमणिया।

तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार। कह कबीर सेवा करो मन मंज मुरार, बिलावल जन मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी, जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रहाओ। काशी ते तुनि उपजै तुन काशी जाई, काशी फूटी पंडता तुन कहां समाई। त्रिगुटी संद मैं पेखिया कट हूं कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी कट माहे त्यागी। आप ते जानिया ते समाना, कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना। बिलावल चरण कमल जा कर दे बसै, सो जन क्यों डोले देव। मानो सब सुख नव नित ता कै, सहज सहज जस बोले देव रहाओ। तब एह मत जो सब मैं पेखै कुटल गांठ।

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग गोंड चौप दे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर जिस की आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रह समाई। मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय। साने फल आस सब बिरथी जाई रहाओ जो दिसै माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनकै किश हाथ नहीं कहां करै एह बपड़े इनका वाहया कश ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारै तेरा कुटंब सब छड़ाई। जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कितै कम आई। यह आस पर मित्री पाओ दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की जो तेरा कालिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसी तू आस करावै तैसी को आस कराई। किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बुझ बुझाई। जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित्याई है जो खिन मैं किले विखो सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेव है सब भूख लहसा। मेरे मन हरि उपर की जय परवासा जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी। हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत कटासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए अवरा पह कहे मन लाज मरासा। जो संसार है के कुटंब मित्र भाई दिसै मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा। जे

जो तुद उपकरै दुख सुखासा तिसका प्रवासा, क्योंकि जय मन मेरे जोवंती अवसर रखना सुकासा। हर जप मंत गुरु उपदेश लै जप, तन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अंदर नाम जपो हर संतो, एहो छूटन का साचा प्रवासा। गोंड महला चौथा, हर सिमरतो सदा होए आनंद, सुख अंतर सांत शीतल मन अपना। जैसे सगत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे माने अंदन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखै सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ, जा मैं सब निदान। सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लो हर तना, जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी। तिनके चरण मलो हर दसना, शब्द पछाण राम रस पावो। ओ उत्तम संत भयो बड़ बड़ना, ते जन की वडियाई हर आ वधाई। ओ कटै ना किसै की कटाई, एक तिल तिल तिल ना। जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याय नित कर जुरना। जन नानक हर दान एक दीजै, नित बसै हृदय हरि मोहि चरना। गुण महला चौथा, जितने साहा पातशाह उमराव, सिकदार चौधरी सब मिथिया झूठ पाव दूजा जान। हर अबनासी सदा थर नेह चलो, तिस मेरे मन भज परवान। मेरे मन नाम हरि भज सदा दीबान, जो हर महल पावै गुरबचनी। तिस जेवड़े अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत, दिसै मन मेरे सब बिनस जाहे। जो रंग कुसुंभ कचान, हर सत निरंजन उसदा सेव मन मेरे। जित हर दरगै पावै तू मान, ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है। जो हर त्यावै सो प्रधान, ज्यों चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा। त्यों सत संगत

ओट, नाम जपत मिटै पाप कोट, रास दी हरे को नाम, मन का इष्ट गुर संग ध्यान रहाओ।

तब पेटे गुरसा दयाल दिन रहन नानक नाम ते आए सुख सहज आनंद हरन आए। गोंड महला पंजवा गुर की मूर्त मन में ध्यान गुर कै शब्द मंत्र मन मान गुर के चरण हृदय लै तारों गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारों मत को परम पुलै संसार गुरबिन कोई नवतर सपार रहाओ पूले कौ गुर मार्ग पाया अवर त्याग हर पंक्ति लाया जन्म मरण की त्रास मिटाई गुर पूरे की बेअंत वडाई गुर प्रसाद ऊर्द कमल विगास अंधकार मैं भया प्रगास जिन किया सो गुर ते जानिया गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया गुर करता गुर करना जोग गुर परमेश्वर है पी होग कहो नानक प्रभ यह जनाई बिन गुर मुक्त ना पाई है पाई। गोंड महला पंजवा गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही होर गुर की टेक रहो दिन रात जाकी कोई न मिट है दात गुर परमेश्वर एको जान ज्योत पावे सो प्रवान रहाओ। गुर चरणी जाका मन लागे दुख दर्द प्रमता का भाग है गुर की सेवा पाए मान गुर ऊपर सदा कुर्बान गुर का दर्शन देख निहाल गुर के सेवक की पूर्ण काल गुर के सेवक को दुख ना व्यापै गुर का सेवक दे दे जापै गुर की महिमा कथन ना जाए पार ब्रह्म गुर आसमाए कहो नानक जाके पूरे भाग गुर चरणी ता का मन लाग। गोंड महला पंजवा गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत गुर मेरा देओ अलाखा पेओ सर पूचरण गुर से गुर बिन अवर नाही मैं थाओ अंधन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर दे ध्यान गुर गोपाल पुरख भगवान गुर की शरण रहो कर जोर गुरु बिना मैं नाही होर गुर बोइथ तारे पवपार गुर सेवा जमते छुटकार अंधकार मैं गुरमंत्र उजारा गुर कै संग सगल निस्तारा गुर पूरा पाइए वडभागी गुर की सेवा दुख ना लागी गुर का शब्द ना मेटै कोए गुर नानक नानक हर सोए। गोंड महला पंजवा राम राम शंकर व्यवहार राम राम राम प्राण आधार राम राम राम कीर्तन गाए रमत राम सबरे उसमाए संत जना मिन बोलो राम सब ते निर्मल पूर्ण काम रहाओ। राम राम तन संच पंडार राम राम राम कर्याहार राम राम विसर नहीं जाए कर कृपा गुर दिया बताए राम राम राम सदा सहाय राम राम राम लिवलाए राम राम जप निर्मल पै जन्म जन्म के किल बिख गए रमत राम जन्म मरण निवारे उचरत राम पै पार उतारे सब ते ऊच राम प्रगास निस्बासर जप नानक दास। गोंड महला पंजवा उनको खसम किन्नी ठाक हारे दास संगते मार बिदारे गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल श्रेष्ठ के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ।

पाहे नारायण सेव सगल फल पाहे। नारायण मन माहे आधार, नारायण बोध संसार। नारायण कहत जम भाग पलायण, नारायण दंत पाने डायण। नारायण सद सद बख्शिंद, नारायण कीने सुख आनंद। नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप। नारायण साध संग नारायण, बारंबार नारायण गायण। बस्त्या गोचर गुर मिल लही, नारायण ओट नानक दास गही। गुण महला पंजवा, जा कौ राख राखण हार, तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्व में अगन ना जो है, काम क्रोध लोमो ना पो है। साध संग जप निरंकार, निंद कै मोय लागै शार। राम कवचो दास का सना हो, दूत दुष्ट तिसको हत नाहे। जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो शरण पया हर राए, सो दास रखिया अपने कंठ लाए। जे को बहुत करे अहंकार, ओ खिन में रुलता खाकू नाल। हैपी साचा होवनहार, उस दास दा जाई बलिहार। अपने दास रखे कृपा तार, नानक प्र प्राण आधार। गोंड महला पंजवा, अचरज कथा महानूप। प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ। ना हो बूढ़ा ना हो बाला, ना इस दुख नहीं जमजाला। ना हो बिनसै ना हो जाए, आज जुगादी रहा सुमाए। ना इस पुसन नहीं है सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत। ना इस अर्ख नहीं है सोग, सब किस इसका एह करने जोग। ना इस बाप नहीं है समाया, एह परंपर होता आया। पाप उनका इसलिए अपना लागे, कटकट अंतर सद ही जागे। तीन गुणा एक सकतो पाया, महामाया ता की है छाया। अशाला शेद भेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल। ता की गत मित कशु ना पाए, नानक ता कह बल बल जाए। गोंड महला पंजवा, संतन कै बलहारे जाओ। संतन कै संग राम गुन गाओ। संत प्रसाद किलवख सब गए, संत शरण वड पागी पए। राम जपत कछ विघ्न ना लागे, राम जपत कछ विघ्न ना व्यापै। गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै रहाओ। पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करे लवाल। काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसै मन आए। सफल जन्म ताका प्रवाण, पार ब्रह्म निकट कर जान। पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे। चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तुहूर।

केस जले जैसे कास का पूला, कहो कबीर तभी नर जागे, जम का डंड मूड में लागे, गोंड आकाश गगन पाताल गगन है, चौ दिस गगन रहाए ले, आनंद मूल सदा पुरखोत्तम, कट बिनसै गगन न जाए ले, मोहे बैराग पयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ, पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे, कर्म बद तुम जियो कहताओ कर मैं किन जियो दीन रे, हर मैं तन है तन मैं हर है सर्ब निरंतर सोए रे, कह कबीर राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे, राग गोंड

रे महावत तुझ दारो काट, इसे तुरावो कालो साट। हस्त ना तोरै तरै त्यान, वा कर दे बसै भगवान। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार, बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया पर लीना, मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोबिंद, चौथे पद मैं जन की जिंद। गोंड नायो मानस नायो देओ, नायो जति कहा वैसे ओ। ना यो जोगी ना अवधूता, ना समाय ना काहू पूता। या मंदिर मैं कौन बसाई, ताका अंत ना को उपाई रहाओ। ना यो गृही ना यो दासी, ना यो राजना पीख मगासी। ना इस पिंड ना

देख इस मरते कहो जे कहो रोवे जो रोवे सोई पत खोवे गुर प्रसाद मैं डगरो पाया जीवन मरण दो मिटवाया कहो कबीर एहो राम की अंश जस कागत पर मिटे ना मंस गोंड टूटे तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चिलकावे कान कूच बिचारे फूए फाल या मुंडिया सरचट बोकाल एहो मुंडिया सगलो दरब खोई आवत जात नागसर हो।

राग गोंड बाणी नाम देओ जी की कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। असमेत जग ने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्त नामा अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पड़ता सगल धर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहित रहता सेवा सख्त संवादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं भज नामा तरस पव सिंदं। गोंड नाद प्रमे जैसे मिर गाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेराओ राम छोड़ चित अंत ना फेराओ रहाओ। ज्यो मीना हेरै पशुआरा सोना गढ़ते हरै सुनारा ज्यो बिखई हेरै परनारी कौडा डारत हरै जुआरी जय जय देखो तै तै रामा हर के चरण नित त्यावै नामा। गोंड

नर ते सुर होए जात निमुख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई नर ते उपज सुरग कौ जीते ओ सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेकै नैकट का।

मुरारी जैसे तापते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गोंड बाणी नाम देव जियो की कर दूजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम लै उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंधले की लकरी हर ए नमस्ते हर ए नमः हर हर करत नहीं दुख जमै रहाओ हर हर नक्श हरे परा।

कपटै परी सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सला निस्तरी केसी कंस मथन जिनकिया जी दान काली कौदिया प्रणवै नामा ऐसो हरी जास जपद पै अपदा तरी गोंड पैरो पूत सीतला तावै खर बाहन ओ शारो डावै हाँ तो

बर्द चढ़े डौरू टमकावे, महामाई की पूजा करै, नरसै नर होए अवतरै। तू कहत ही अद भवानी, मूत की बरिया कहां छपानी। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो पी आवत देखिया था। रावण सेती सरबर होई कर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुर्कू काना दोहां ते ज्ञानी सियाना। हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या। जय देहोरा नाम सीत। रागोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता।

जप मुकंद मस्तक निशानं, सेव मुकंद करै बैरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादी, एक मुकंद करै उपकार हमरा कहां करै संसार।

बस अब तृष्णा चुकी जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड जे हो 68 तीर्थ नावे जे हो द्वादश शिला पूजावे जे हो कूप तटा देवावे करे निंद सबिरथा जावे साध का निंदक कैसे तरै।

करने दो कमने नहीं गुना। जे हो अनक प्रसाद करावे भूमदान शोभा मंडप पावे। अपना बिगार बिराना संड करे निंद बोजो नी हंड। निंदा कहाँ करो संसारा निंद।

को नाम पहचाना, ना जाना हरे मेरी कवन गते। हम मूर्ख ज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नरहरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंध कुप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सर्ब रहा भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रया सुमाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसै कवन दर कहिय। दरा पीतर दर कवन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिय। जीव त्यान मरिय रहाओ, दुख दरवाजा रोहो रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कै आसन पुरख रह, किंते न मायंत न जानिया। तुम सर नाही अवर हरे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना। आपे जाने आप करे, जब आसा अंदेसा तब ही। क्यों कर एक कह, आसा पीतर रह निराशा। तव नानक एक मिले, इन बिद सागर तरिय। जीवत आयो मरिय रहाओ दूजा। राम कली महला पहला, सुरत शब्द साख

गोरख सोजन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन को धरती दीनी एते गुण विसरे। सिद्ध साधक यार योगी जंगम पीर पुरस बहु तेरे जेतन मिला ता कीर्त आखा ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला सुन माशिंद्रा नानक बोले वसगत पंच करे नहीं डोले। ऐसी जुगत जो कौ पाले आप तरह सगले कुल तारे। सो अवधूत ऐसी मत पावे अहनिस सुन समाज समावे रहाओ। भिखिया पाए भगत पै चल होवे सो तृप्त संतोख अमुल। ध्यान रूप होए आसन पावे सच नाम ताड़ी चितलावे। नानक बोले अमृत बाणी सुन माशिंद्रा औदू निशानी। आसा महे निरास वलाए निहचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगमुख सुनाए गुर चेले की संध मिलाए। दीखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए। राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई। सनमुख सिद्ध पेटन को आए निहचो दे वड़ियाई। गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अविनाशी हाँ तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक योगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी त्याया। परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेसर नानक पेटे ओ साचे शब्द नवेरा। राम कली महला पहला सुरती सुरत्र लाइया एत तन कर तुल्हा लंगे जेत। अंतर पाहित सह तू रख एनस दीवा बल अथक।

रामकली महला पहला, सागर मैं बूंद, बूंद मैं सागर, कवन बुझै बिद जाना, उत्पो चलते आप कर चीना, आपे तत् पछाण, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन मैं रहण रहण मैं दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित अवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई। पुरख मैं नार, नार मैं पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन मैं ध्यान, ध्यान मैं जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। मन मैं जोत, जोत मैं मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई। राम कली महला।

मेरे एक खैन प्राण न रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड भाग गुरसरणी आए हर गुरमिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूझे बूझे मन हर जप जपो जपाया। नामहीन फिर से नकटे तन कस कस नक वड़ाया। मोको जग जीवन जीवा लै स्वामी हृदयंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया। आराम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है। जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरे दिया। हर अमृत नाम समारे राम गुर हर हर नाम कंठ तारे। गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड भाग हमारे रहाओ। कोट कोट ते तीस ते आवे ता का अंत न पावे पारे। हृदय काम काम नी मांगे रिद मांगे हाथ पसारे। हर जस जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उर तारे। जे वड़ भाग होवे ता जपिए हर पौजल पार उतारे। हर जन निकट निकट हर जन है हर राख है कंठ जन तारे। नानक पिता माता है हर प्रभ हम बारक हर प्रतपारे। राग राम कली महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई। माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गाते ही। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। जो इच्छा हो सोई फल पावो फिर दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे अंतर ज्योत समाई। जैसा लिखत लिखिया तुर करता है हम तैसी कृत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना ए हो आवन जाना। जिन दिया सोचित न आवे मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने हर काम है लिया पारा। भगत करी हर के गुण गावा नानक दास तुम्हारा। राम कली महला पंजवा पवो चरना तल ऊपर आवो। ऐसी सेव कमावो आपस ते ऊपर सब जानो तो दरगह सुख पावो। संतो ऐसी कथो कहानी सुर पवित्र नरदेव पवित्रा। खिन बोलो गुरमुख बाणी रहाओ। परपंच छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो ना कोई। सतगुर मिलो नवे निद पावो इन बे तत् बिलोई। परम चुकावो गुरमुख लिव लावो आत्म चीनो पाई। निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर किस्यों कहो बुराई। सतगुर मिले आए मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी। तन तन से जन जिन्नी कल मैं हर पाया जन नानक सत कुरबानी। राम कली महला पंजवा आवत हरखना जावत दुखा नह व्यापे मन रोगनी। सदा आनंद गुर पूरा पाया ता उतरी सगल बेयोगनी। एह बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापे तय हर हर हर रस भोगनी रहाओ। स्वर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचे जतकत पेखो हर गुनी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना तह आकार नहीं मेदनी। सतगुर जोग का तहा निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी। तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी। कहो नानक हम तुम गुर खोई है अंबे अंब मिलोगनी। राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी। साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने।
ਅਚਰ ਜਗਿਸ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਭਾਈ ਰਹਾਓ। ਮੋਲ ਨਾਹੀ ਕਛ ਕਰਨੈ ਜੋਗਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਕਹਿ ਸੁਣਾਵੈ। ਕਥਨ ਕਹਿਣ ਕਉ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ, ਜੋ ਭੇਖੈ ਤਿਸ ਬਣ ਆਵੈ। ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ, ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਬੇਚਾਰਾ। ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਹਰੇ ਆਪੇ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰਾ। ਐਸਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਚਾਖਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆ ਗਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨ ਆਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੈ। ਬੈਰੀ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ, ਜਿਨ ਬੈਰੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਗ ਲੂਟਿਆ, ਤੇ ਬੈਰੀ ਲੈ ਬਾਧੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ, ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਰਸ ਮਾਣੀ, ਨਾਉ ਜਪੀ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਰਹਾਓ। ਚੀਤਨਾ ਆਵਸ ਦੂਜੀ ਬਾਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਉੱਪਰ ਰਖਵਾਰਾ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਵਾਮੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਹਿ ਆਧਾਰਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖਦਾਈ, ਊਨ ਨਾ ਕਾਈ ਬਾਤਾ। ਤਤ ਸਾਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਛੋੜ ਨਕਤ ਹੂੰ ਜਾਤਾ। ਵਰਨ

राम कली महला पंजवा। तू दाना तू अबजल तू ही, तू जात मेरी पाती, तू अडोल कदे डोले नाही, ता हम कैसी ताती। एक है एक है एक तू ही, एक है एक है तू राया, तौ कृपा ते सुख पाया रहाओ। तू सागर हम हंस तुम्हारे, तुम मैं मानक लाला, तुम देवो तिल संक ना मानो, हम पुंचे सदा निहाला। हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा, हम खेले सब लाड लडावे, तुम सदगुणी गहीरा। तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण, हम पी संग आ गाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहे आ, नानक कहन ना जाए। राम कली महला पंजवा। कर कर ताल पखावज नैनो, माथे वजै रबाबा, करनो मद बासरी बाजै, जेवा तुनिया गाजा। नृत करे कर मनुआ नाचै, आने कुगर साजा, राम को नृतकारी, पेखै पेखन हार दयाला, जेता साज सिंगारी रहाओ। आखार मंडली तरन सबाई, ऊपर गगन चंदोवा, पवन विचोला करते अकेला, जलते उपत होवा। पंच तत् कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा होवा, चंद सूरज दुए जरे चरागा, चहो कुंट पीतर राखे। दस पातो पंच संगीता, एकै पीतर साथे, भिन्न भिन्न होए भाव दिखावै, सबो निरारी पाखे। घर घर निरत होवै दिन राती, कटकट वाजै तूरा, एक नचावै एक पवावै, एक आए जाए होए तूरा। कहो नानक सो बहुर ना नाचै, जिस गुर भेटै पूरा। राम कली महला पंजवा। ओंकार एक तुन एक है रागा लापै, एका देसी एक दिखावै, एक को रया व्यापै, एका

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चाल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे एहो नृतकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक।

कोई कह तुर्क, कोई कह हिंदू, कोई बंश है पिस्त, कोई सुरग हिंदू। कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन है मैं पवन।

अगली किश खबर ना पाई, रोवनहार पे उठ सिधाई, पर मोह के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंद। एहो तौ रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार, नह को मुआ ना मरने जोग, नह बिनसै अविनासी होग। जो एहो जानो सो एहो नाए, जानन हारे कौ बल जाओ। कहो नानक गुर भरम चुकाया, ना कोई मरै ना आवै जाया। राम कली महला पंजवा, जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवै, फिर ना खाई महाकाल रहाओ। कोट जन्म प्रम प्रम प्रम आयो, बड़े भाग साध संग पायो। बिन गुर पूरे नाही उदार, बाबा नानक आखै हो बीचार। राग राम कली महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। चार पुकारै ना तू मानै, खट पी एका बात वखानै। दस अष्टी मिले को कहया, तापी जोगी भेद न लया। किंकरी अनूप वाजै, जोगी अमतवार रे रहाओ। प्रथमे वसिया सतका खेड़ा, तृतीय मैं किश भया दुतेड़ा। दुतिया अर्धो अर्ध समाया, एक रया ता एक दिखाया। एक सूत परोए मणिए, गाठी पिन पिन पिन पिन तणिए। फिरती माला बहुविद पाए, खिंचा सूत आई थाए। चाहो मैं एक मट है किया, तह बिखड़े थान अनक खिड़किया। खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया। इं किंकरी अनूप वाजै, सुन जोगी कै मन मीठी लागै। रहाओ दूजा राम कली महला पंजवां।

जप नाथ दिन रहन आई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी विभूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगै टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचै लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजै नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला। ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर जन नानक जोगी होवा अस्थिर। इउं जपया नाथ दिन रहन आई हुण पाया गुर गोसाई रहाओ। दूजा राम कली महला पंजवा करन करावन सोई आना दिसै कोई। ठाकुर मेरा सूड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै डीठा रहाओ। निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर भय ने काम। तन मन शीतल अगन निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किश तेरा सत बलिहार जाओ लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब पर्दा टूटा

संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सोरत मत बुद्ध प्रगास, गहर गंभीर अपार गुणतास, जी जंत

जाल इष्ट मीत जान सब चले हर हर नाम संग तेरे चले राम नाम गुण गाए ले मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत जम कश ना कह रहाओ बिन हर सगल निरार्थ काम सोना रूपा माटी दाम गुर का शब्द जाप मन सुखा इहा उहा तेरो उजल मुखा कर कर थाके वडे वडेरे किन्ही ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आसा पूर्ण होए हर भगतन को नाम आधार संती जीता जन्म अपार हर संत करे सोई प्रमाण नानक दासता कै कुर्बान आराम कली महला पंजवा सिंचे दर्ब देह दुख लोग तेरे काज ना अवरा जोग कर अहंकार होए वरते अंध जम की जेवड़ी तू वागे बंद छाड़ विडानी तात मूड़े इहां बसना रात मूड़े माया के माते तैं उठ चलना राच रहे हो तू संग सुपना रहाओ बाल व्यवस्था बार के अंध पर जोबन लागा दुर्गंध तृतीय व्यवस्था सिंचे माए बिरद पया छोड़।

आप कपट खुलाने भ्रम नाठे दूरे नानक कौ गुर पेटे पूरे। राम कली महला पंजवा कोट जापता विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रसै गुरमुख नाम निमख हृदय वसै हर के नाम की वड़ियाई कीमत कहन न जाई रहाओ सूर बी

हर की कथा सुनत पवित जेवा भगत पाई गत मत सो प्रवान जिस हृदय वसाई नानक ते जानी उत्तम भाई राम कली महला पंजवा गहो कर पकरी ना आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ।

रहाओ जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे, तब यो सेवक सेवा करे। मुख बेरावे अंत ठगावे, एक ठौर ओ कई ना समावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड, राम जनी की नी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रह, इस संग राचे सो कशु ना लह। ऐसे त्याग सत्संगत करे, वडभागी नानक हो तरे। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्व मैं पेख। पूर्ण पूर्ण रहा प्रभ एक, रत्न मोल हृदय मैं जान। अपनी वस्तु आप पछान, पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाईए, बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ दस बेद सुने कह डोरा, कोट प्रकाश न दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचे, जिसने बुझावे सो कित बिद बुझे। जानन हार रहया प्रभ जान, ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे, नानक तिन जम नेण न आवे। राम कली महला पंजवा, दीनो नाम कियो पवित। हर तन रास निरास हे बित, काटी बंद हर सेवा लाए। हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा, रसक रसक गुण गावे। हर जानो अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ

मिट जाए, कर कृपा पार ब्रह्म दयाल, मन ते कबो न विसर गोपाल, तेरे दास की हो मातूर, नानक की प्रभ सरदा पूर, रामकली महला पंजवा, तेरी शरण पूरे गुरुदेव, तुझ में दूजा नाही कोय, तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म, सो त्याए पूरा जिस कर्म, तरण तारण प्रभ तेरो नाओ, एका शरण गही मन मेरा, तुझ बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ, जप जप जीवा तेरा नाओ, आगे दरगे पावो ठाओ, दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिनसै रचै हर नाए, चरण कमल स्यो लागी प्रीत, गुरपुरे की निर्मल रीत, पहो भागा निरपव मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा तन लाहे, तोट न आवै अखुट भंडार, नानक भगत सोहै हर द्वार, राम कली महला पंजवा, रतन जिवे हर नाम, सत संतोख ज्ञान, सुख सहज दया का पोता, हर भगता हवाले होता, मेरे राम को भंडार, खात खर्च कष्ट उठ न आवै, अंत नहीं हर पारावार रहाओ, कीर्तन निर्मोल कहीरा, आनंद गुणी गहीरा, अनहद बाणी पूंजी, संतन हथ राखी कुंजी, सुन समाध गुफा तय आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन, भगत भगत संग प्रभ गोष्ठ करत, तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत, कर कृपा जिस आप देवाया, साध संग तिन हर तन पाया, दयाल पुरख नानक अरदास, हर मेरी

अवतार न जानै अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। अपनी गाते आप जानै, सुन सुन अवर वखानै रहाओ। संकरा नहीं जानै भेव, खोज तहारे देव। देविया नहीं जानै मर्म, सभी ऊपर वाला।

रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास, बिखे ब्याद के गाव में बास। करण हार मेरे प्रभ एक, नाम तेरे की मन में टेक। सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम, पाप खंडन प्रभ तेरो नाम। तू अगंत जी का दाता, जिसे जनाम है तिन तू जाता। जो उपायो तिस तेरी आस, सगला राधा है प्रभ गुण पास। नानक दास तेरे कुर्बान, बेअंत साहिब मेरा मेहरबान। राम कली महला पंजवां, रखन हर दयाल। कोट पव खंडे निमख ख्याल, सगल आराध्य जंत। मिलिया प्रभ गुर मिलमंत, जीवन को दाता मेरा प्रभ। पूर्ण परमेश्वर स्वामी, घट घट राता मेरा प्रभ। रहाओ ताकि गही मन ओट, बंधन ते होई छोट। हृदय जप परमानंद, मन माहे पय आनंद। तारण तरण हर शरण, जीवन रूप हर चरण। संतन के प्राण आधार, ऊचे ते ऊचे पार। सुमत सार।

आए बूढ़ तलोहो साध संग तरह नानक शिक्षा प्राप्त करै। रामकली महला पंजवा मन माहे जा भगवंत गुरपुर एहो दीनो मंत मिटे सगल पैतरास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किश कहण ना जाई साचे साचा लाखा पेवा रहाओ। कर्ण कराम ने आप तिसको सदा मन जाप तिसकी सेवा करनी तो सच सह सुख पावे मीत। साहिब मेरा अत पारा खिन मैं था प्यो था पनहारा तिस बिन अवर ना कोई जनका राखा सोई। कर कृपा अरदास सुनी जय अपने सेवको दर्शन दी जय नानक जापी जब जाप सब ते ऊजा का प्रताप। राम कली महला पंजवा बिरथा परवासा लोक ठाकर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकर भेटे गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्ज तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ। तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही ते आया आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओर सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान राखण हार निदान। सर्व की रेण हो बीजै आ मिटाए मलीजै अंदन त्याई नाम सफल नानक हो काम। राम कली महला पंजवा कारण करण करीम सर्व प्रतपाल रहीम अल्लै लाख्या पार खुद खुदाए वड बेसुमार। ओ नमो भगवंत गोसाई खालक रव रया सर्व ठाई रहाओ। जगनाथ जग जीवन माधो पौ पंजन रिद माया राधो रिखी केस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद मेहरवान।

सगले साज करत जगदीसै, ठगन हार अनठगदा ठग है, बिन मखर फिर उठ लागै। संत सवा मिल करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, ब्रह्म विचार विचारे कोए, नानक तां की परम गत होए। रामकली महला पंजवा, जो तिस पावै सो थिया, सदा सदा हर की सरनाई, प्रभिन नाही आन बिया। रहाओ पुत्र कलत्र लक्ष्मी दिसै, इनमें किछु ना संग लिया, बिखैठ गौरी खाए भुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगुता, गर्भ जोन में किरत पया, पुरब कमाने छोड़ै नाही, जम दूत करा स्यो महा पया। बोले झूठ कमावे अवरा, त्रिसन ना बुझे बहुत हया, असाध रोग उपजया संत दुखन, देह बिनासी महा खया। जिन्हें निवाजे तिन्हीं साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। रामकली महला पंजवा, ऐसा पूरा गुरदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई। रहाओ दर्शन पेखत होए निहाल, जाकी तूर काट जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्य सवारे सगले तन के, जाकै मस्तक रखै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतो धारण कृपा निधान, सदा सदा जाइए कुर्बान। निर्मल मंत दे जिस दान, तजै विकार बिनसै अभमान, एक तिहाई साधकै संग, पाप बिनासे नाम कै रंग। गुर परमेसर सगल निवास, घट घट रव रया गुणतास, दर्श देहे तारो प्रभ्यास, नित नानक चितवै सच अरदास। राग राम कली महला पंजवा, घर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गावो राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाइए, आवा गौण मिटै मेरे मीत। रहाओ गुण गावत होवत प्रगास, चरण कमल मैं होए निवास, संत संगत मैं होए उधार, नानक भव जल उतरस पार। राम कली महला पंजवा, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जब सदा सुहेले, सगल बिना से रोग कूरा। रहाओ एक अरादो साचा सोए, जाकी सरण सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिन सह सब दुख। सहज आनंद करो मेरे भाई, गुरपूरै सब चिंत मिटाई, आठ पहर प्रभ का जप जाप, नानक राखा होवा आप। राग राम कली महला पंजवा, पड़ताल करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नर नर है नमस्कारं, जलन थलन बस गगन।

क्यों लागी निवरै प्रताप। गुर कै शब्द रचै मन पाए, भिख्या सहज विचारी खाए, भस्म चढ़ाए करै पाखंड, माया मोहे सहजम डंड। फूटै खापर पीख ना पाए, बंधन बांध्या आवै जाए, बिंदना राखै जति कहावै, माई मांग तो त्रै लोबावै। निर्दया नहीं जो तो जाला, बूढ़त बूढ़े सर्व जंजाला, पेख करै खिंथा बहु थटुआ, झूठो खेल खेलै बहु नटुआ। अंतर अगन चिंता बहु जारे, विणकर्मा कैसे उतर सपारे, मुंद्रा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान। जेहवा इंद्री साध लोबाना, पशु पय नहीं मिटै निशाना। त्रिबद लोगा त्रिबद जोगा, शब्द विचारै चूक सोगा, उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए। तुझ पह नौ निद तू करना जोग, थापो थापे करे सोहोग। जत सत संजम सच सोचीत, नानक जोगी त्रि पवन मीत, राम कली महला पहला। खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द तोने अंतर जागी, वाजे अनहद मेरा मन लीना, गुरबचनी सचनाम पतीना। प्राणी राम पग सुख पाई है, गुरमुख हर हर मीठा लागे, हर हर नाम समाई है रहाओ। माया मोह विवर्ज समाए, सदगुर पेटा मिल मिलाए, नाम रतन निर्मोल कहीरा, तितराता मेरा मन तीरा। हम मैं ममता रोग न लागे, राम पग जम का पौ भागे, जम जम दार न लागे मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे। शब्द विचार पय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अंधन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुक्त गति अंतर पाई। अलिप्त गुफा में रहे निरारे, तस्कर पंचो सब संगारे, पर कर जाए न मन डोलाए, सहज निरंतर रहो समाए। गुरमुख जाग रहे ओ दूता, सत्वै रोगी तत्परोता, जग सूता मरिया वह जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए। अनहद शब्द वजै दिन राती, अवगत की गत गुरमुख जाति, तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहा निर्वानी। सुन समाद सहज मन राता, तजह लोबा एको जाता। गुर चेले अपना मन मानिया, नानक दूजा मेट समानिया, राम कली महला पहला। साहा गणे ना करे विचार, साहे उपरे एकंकार, जिस गुर मिले।

गुरमुख जोग शब्द आत्म चीनै हृदय एक मुरारी मनुआ अस्त्र शब्द राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पाखंड औदू गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कमावै औदू जत सत शब्द विचारी शब्द मरै मन मारे औदू जोग जुगत विचारी माया मोह पवजल है अवधू शब्द तरै कुल तारी शब्द सूर जुगचारे उधारे शब्द सूर जुगचारे औदू बाणी भगत विचारी एह मन माया मोया औदू निकसै शब्द विचारी आपे बख्शे मेल मिलाए नानक सरन तुमारी राम कली महला तीजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सरमै दिया मुंद्रा कन्नी पाए जोगी खिंथा कर तू दया आवन जान भूत लाए जोगी ता तीन पवन जन लया ऐसी किंगरी वजाए जोगी जित किंगरी अनहद वाजै हर सों रह लिवलाए रहाओ सत संतोख पत कर चोली जोगी अमृत नाम पुगत पाई ध्यान का कर डंडा जोगी सिंगी सुरत वजाई मन दृढ़ कर आसन बैस जोगी ता तेरी कल्पना जाई काया नगरी मैं मंगन चढ़ै जोगी ता नाम पल्लै पाई इत किंगरी ध्यान न लागै जोगी ना सच पल्लै पाए इत किंगरी सांत ना आवै जोगी अवमान ना विचों जाए।

मनसा मार मन सहि समाना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी चेता दिष्ट लगाई अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति जोत मिलाई हां गुरसा लाही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई नानक एक है बेनंती नाम गत पत पाई राम कली महला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु न जाई संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ हर बिन सब किश मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई हर साचे पावे सा पूजा होवे पाणा मन वसाई पूजा करे सब लोग संतो मन मुक्ताए ना पाई शब्द मरै मन निर्मल संतो एह पूजा थाए पाई पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिव लाई बिन नामै होर पूजना होवी भरम भुली लोकाई गुरमुख आप पछाणै संतो राम नाम लिव लाई आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई पूजा करै पर विद नहीं जाने दूजे पाए मल लाई गुरमुख होवै सो पूजा जाने पाणा मन वसाई पाणे ते सब सुख पावै संतो अंते नाम सखाई अपना आपना पछाणै संतो कूड़ करै वड्याई पाखंड कीने जम नहीं छोड़ै लै जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप पछाणै गत मित तिन ही पाई एहो मनुआ सुन समाद लगावै ज्योति ज्योत मिलाई सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे सतसंगत मिलाई गुरमुख गावै आप गवावै दर साचै शोभा पाई साची बाणी सच वखाणे सच नाम लिव लाई पै भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सिखाई सब किछ आपे आप वरतै नानक नाम वड्याई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी मिल सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी सच्चा नाम वस्या कट अंतर करतै आप सवारी रहाओ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करै फिर अभिमानी तिन जुए बाजी हारी एक आंदन भगत करै दिन राती राम नाम उर तारी आंदन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी पै बिन भगत ना होई कभी पै पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत् बिचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द विचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विचों आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया खुट सचे भंडारी अपने भगतां नूं आपे तुठा अपनी किरपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखण बिख विचारी शब्द लगे से जन निस्तरे पौजल पारे उतारी बिन हर साचे को पार ना पावै बूजे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी काया कंचन शब्दे राती साचै नाए प्यारी काया अमृत रही पर पूरे पाइय शब्द विचारी जो प्रभ खोजै से ही पावै होर फूट मोए हंकारी बादी बिनसै सेवक सेवै गुर कै हित प्यारी सो जोगी तत् ज्ञान विचारे हम मैं तृष्णा मारी सतगुर दाता तने पछाता जिसनो कृपा तुम्हारी सतगुर ना सेवै माया लागे डूब मुए अहंकारी जिचर अंदर सास तिचर सेवा कीचै जाय मिलिय राम मुरारी
ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗਤ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੀ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਕੁਮਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਵਿੱਟੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏਗਾ ਉਬਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਜਗਾਏ ਸਹੀ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਮੂਏ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਭਗਤ ਜੀਵੇ ਵਿਚਾਰੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਈ ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤਗਤ ਪਾਈ ਏਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਘਟ।

अवर न करना जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए सिर सिर धंधा लाई, तिसै सरे वो ता सुख पावो सतगुर मेल मिलाई। अपना आप आप्यो पाए अलख न लखना जाई, आपे मारजी वाले आपे तिसनो तिल ना तुमाई, एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई, सेवड भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कहन न जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पुलाई, वड्डा दाता गुरमुख जाता निगुरी अंध फिरै लोकाई, जिनी चाखिया तिना साध आया सतगुर बूझ बुझाई, एक ना नामो आप पुलाए एक ना गुरमुख दे बुझाई, सदा सदा सा लाहो संतो तिस दी वड्डी वड्याई, तिस बिन अवर ना कोई राजा करत पावस बढ़त बनाई, न्याओ तिसै का है सद साचा विरले हुक्म मनाई, तिसनो प्राणी सदा त्यावो जिन गुरमुख बणत बनाई, सतगुर भेटै सो जन सीजै जिस हिरदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई, नानक सुन वेख रया विस्माद मेरा प्रभ रवया सर्ब थाई। राम कली महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किन्ही किया परविरत पसारा किन्ही किया पूजा विस्तारा, किन्ही निवल भयंगम सादे मोहे दीन हर हर आराधे, तेरा भरोसा प्यारे आना जाना वेसा रहाओ, किन्ही गृह तज वनखंड पाया किन्ही मोन अवधूत सदाया, कोई कहतो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती, किन्ही कहया हाँ तीर्थवासी कोई अन्न तज पया उदासी, किन्ही पवन

बाबा पाई, कोई कहे मैं तने पसारा, मोहे दिन हर हर आधारा। किन्ही कुगर नृत कराई, किन्हू वर्तने माला पाई, किन्ही तिलक गोपी चंदन लाया, मोहे दिन हर हर हर त्याया। किन्ही सिद्ध बहुत चेटक लाए, किन्ही पेख बहुत हाट बनाए, किन्ही तंत मंत बहु खेवा, मोहे दिन हर हर हर सेवा। कोई चतर कहावे पंडित, को खट कर्म सहत स्यो मंडित, कोई करे आचार सुकरणी, मोहे दिन हर हर हर सरणी। सगले कर्म धर्म जुग सोदे, बिन नामे ओ मन ना प्रबोधे। कहो नानक जो साध संग पाया, बूझी तृष्णा महा सीत लाया। हराम कली महला पंजवा, इस पानी ते जंतु करया, माटी काले देहरा करया। उक्त जोत ले सुरत परीखया, मात गर्भ में जंतु रखया। राखण हार समार जना, सगले छोड़ विचार मना रहाओ। जिन दिए तुद बाब महतारी, जिन दिए प्रात पुतहारी, जिन दिए

तुम ही आगे सारना तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना अनक बार कोट जनी ऊपर नानक वन्ये वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई हरहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुखलाई पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई कारण कारण समरथ स्वामी नानक ते शरणाई बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई नाम रसायण एहो मन राता अमृत पी तृपताई संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वसया जाई पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिनयान ना पाई नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई जप तप संजम सोच है सोई आपे करे कराई पुत्र कलत्र महा बिखिया मैं गुरसाचै लाए।

सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दों ता गावो हरी केरा मन जिनी वसाया।

राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वछलते होलोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमरिया टालिया तोल ठाकर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रपाह जियो सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज रखो हर जना केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चलदिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबाह जियो मेरे सिख सुनो पुत पाई हो मेरा हर पाणा आओ मैं पास जियो हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत पाई परवार मेरा मन वेखो कर निर्जाह जियो तुर लिखिया प्रमाणा फिरै नाही गुर जाए हर प्रपाह जियो सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिकसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पैनावे सतगुरु प्रतख होंदै बहराज आप टिकाया सब सिख बंदप पुत पाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंड सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आण निवाया हर गुरह पाणा दी वडियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो रामकली महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोए अड़ा मेरा साजनड़ा जानी अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोए अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोया कटकट सोया अत अमृत प्रे गूड़ा नाल होवंदा लहना सकंदा स्वाओ न जाने मूड़ा माया मदमाता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा कहो नानक गुरबिन नहीं सूजै हर साजन सब कह निकट खड़ा गोबिंदा मेरे गोबिंदा प्राणिया धारा मेरे गोबिंदा कृपाला मेरे कृपाला दान दातारा मेरे कृपाला दान दातारा प्रापारा कट कट अंतर सोहने आ एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोहने आ जिसनो राखै सो सच पाखै गुर का शब्द भी

पहावै, महा गर्भ मुठिया, जल बाज मछली तड़फड़ावै, संग माया रुठिया। कर पाप जोनी पै पीत होई, दे सासन जाम जियो, बिनवंत नानके ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो। सलोक सरदा लागी संग प्रीत मैं, एक तिल रहन ना जाए, मन तन अंतर रव रहे, नानक सह सुभाए। कर गैलीनी सजने जन्म जन्म के मीत, चरने दासी कर लई नानक प्रभित चीत। शंत रुत बरस सुहेलिया, सावन भादवे आनंद जियो, कण उन्नम बुठे जल थल पूरिया मकरंद जियो। प्रभ पूर रहया सर्ब ठाई, हर नाम नवनित गृह भरे, सिमर स्वामी अंतर जामी, कुल समूहा सब तरे। प्रेरंग जागे ने शिदर लागे, किरपाल सद बख्शिंद जियो, बिनवंत नानक हरकंत पाया, सदा मन पावंद जियो। सलोक आस प्यासी मैं फिराऊं, कब पेखा गोपाल, है कोई साजन संत जन, नानक प्रभ मिलनहार। बिन मिल बे सांत ना उपजै, तिल पल रह ना जाए, हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। शंत रुत सर्द अडंबरो, असू कतके हर प्याह जियो, खोजंती दर्शन फिरत, कब मिलिए गुणताह जियो। बिनकंत प्यारे ने सूख सारे, हार कंगन त्रिग बना, सुंदर सुजान चतर बेती, सास बिन जैसे तना। ईत ओत दह दिस्या लोकन, मन मिलन की प्रभ प्यास जियो, बिनवंत नानक तार कृपा, मिलो प्रभ गुणताह जियो। सलोक जलन बुझी शीतल पए, मन तन उपजी सांत, नानक प्रभ पूर्ण मिले, दुतिया बिनसी प्रांत। साध पठाए आप हार, हम तुमते नाही दूर, नानक भ्रम पै मिट गए, रमन राम भरपूर। शंत रुत सिसियर शीतल, हर प्रगटे मंगर पोहे जियो, जलन बुझी दर्स पाया, बिन से माया त्रहो जियो। सब काम पूरे मिल हजूरे, हर चरण सेवक सेवया, हार डोर सिंगार सब रस, गुण गाओ लाखा पेवया। पाओ भगत गोविंद बांशत, जमना साकै जोहे जियो, बिनवंत नानक प्रभ आप मेली, तहना प्रेम बिश हो जियो। सलोक हर तन पाया सोहागणी, डोलत नाही कीत, संत संजोगी नानका, गृह प्रगटे प्रभ मीत। नाद बिनोद आनंद कोड, प्रे प्रीतम संग बने, मन बाइंत फल पाया, हर नानक नाम पने।

आए मंत आए से सुंदर सोहिया वन त्रैण त्र पवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो सलोक संत सहाय जी के पव जल तारनहार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया सही तरे से सूरे से बीर नानक तिन बलिहारने हर जप उतरे तीर संत चरण विराजत सब उपरे मिटिया सगल क्लेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल ना मनते बिसरै तज आप सरणी परे चरणी सर्ब गुण जगदीश्वरै गोविंद गुण निध श्री रंग स्वामी आदि कौआ देह जियो बिनवंत नानक मया तारो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली महला पहला दखनी ओवंकार एक ओवंकार सतगुर प्रसाद ओवंकार ब्रह्मा उत्पत ओवंकार किया जनचित ओवंकार सैल जुग पए ओवंकार वेद निर्मय ओवंकार शब्द उदरे ओवंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर त्रिपवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस प्राप्त होवै चुन लै मानक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सा समाले बिन साचे जग काचा तदै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन तीरा तदै तूल पड़ै मुख मस्तक कंचन पय मनूरा तन तरणी तर आप जोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुरस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मंतन साज सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एको एक कह सब कोई हम मैं गर्भ व्यापै अंतर बाहर एक पछाण इं कर महर सियापै प्रभ नेड़ै हर दूर न जान हो एको सृष्ट सवाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते कहो क्यों गह राखो अफरियो तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ गौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर पछताई एक सिरे वै ता गत मित पावै आवन जान रहाई एक आचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि असरूप एको पवर पवै तिहो लोए एको बूझै सूझै पत होए ज्ञान ध्यान ले समसर रह गुरमुख एक विरला कोल है जिसनो दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊरम तूरम जो त्यो जाला तीन पवन में गुर गोपाला ऊग व्या असरूप दिखावै कर कृपा अपने कर आवै ऊन बरसै निजर तारा उत्तम शब्द सवारण हारा इस एके का जाने पे ओ आपे करता आपे दे ओ उगवै सूर असर संघार है उचो देख शब्द विचार है ऊपर आद अंत तिहो लोए आपे करे कथे सुने सोए ओह विधाता मन तन दे ओह विधाता मन मुख सोए प्रभ जग जीवन अवर ना कोए नानक नाम रते पत होए राजन राम रवै हितकार रण में लूजै मनुआ मार राध अनंत रह रंग राता तीन पवन जुग चारे जाता जिन जाता सो तिसी जेहा अत निरमायल सिज सेहा रैसी राम हृदय पाए अंतर शब्द साच लिव लाए रोस ना कीजै अमृत पीजै रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना।

चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोए, चेता एक तही सुभोए चित वसै राचै हर नाए, मुक्त भया पत स्यों कर जाए। छीजै देह खुलै एक गंड, छे अन देखो जगहंड, तू पिशाब जे सम कर जाना, बंधन काट मुक्त कर आना। छाया छूछी जगत पुलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना, छीजै जोबन जरुआ सिरकाल, काया छीजै पई सिवाल। जापै आप प्रभु त्यो लोए, जुग दाता अवर न कोए, ज्यो पावै त्यो राखै राख, जस जाचौ देवै पत साख। जागत जागरा हां तुद पावा, जा तू मेलै तां तुजै समावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीसा कीस। चख बोलन क्या जग स्यो वाद, चूर मरै देखै प्रमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पहे आस निरासा।

योग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत् चुगे मिलेख से तिनको फास नारंच। उड है ता बेगल बेगले ता कै चोग घणी पंख टुटे फाही पड़ी अवगुण पीड़ बनी। बिन साचे क्यों छुट्टी है हर गुण कर्म मणि आप छड़ाए छुट्टी है वड्डा आप धनी। गुरप्रसादी छुट्टी है कृपा आप करे अपने हाथ वड्याइया जय भावे तें दे। थर थर कंपे जियड़ा थान में हुना होए थान मान सच एक है काजना फिटे कोए। थिर नारायण थिर गुरु थिर साचा बीचार सुर नर नाथ है नाथ तू नेदार आयाधार। सर्वे थान थनंतरी तू दाता दातार जै देखा तै एक तू अंत न पारा वार। थान थनंतर रव रहया गुरसब दी विचार अण मंगया दान देवसी वड्डा अगम्या पार। दया दान दयाल तू कर कर देखण हार दया कर है प्रभ मेल लह खिन मै टाहे उसार। दाना तू बीना तू ही दाना कह सिरदान दालद पंजन दुख दलन गुरमुख ज्ञान ध्यान। धन गया बह झूरी है धन मैं चीत गवार धन विरली सच संचया निर्मल नाम प्यार। तन गया ता जान दे जेरा चैरंग एक मन दीजे सिर सौंपिए पी करते की टेक। तंदा तावत रह गए मन में शब्द आनंद दुर्जन ते साजन पए पेटे गुरु गोविंद। बन बन फिरती ढूंढती बस रही कर बार सतगुर मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार। ना ना करत ना छुट्टी है विण गुण जमपुर जाहे ना तिस एहो ना एहो है अवगुण फिर पछताहे। ना तिस ज्ञान ना ध्यान है ना तिस धर्म ध्यान विण नावै निरपव कहा क्या जाना अभमान। थाक रही कवि अपड़ाओ हाथ नहीं ना पार ना साजन से रंगले किस पै करी पुकार। नानक प्रयो प्रयो जे करी मेले मिलन हार जिन विछोड़ी सो मिल सी गुर कह त्यापार। पाप बुरा पापी को प्यारा पाप लदे पापे पासारा पर हर पाप पछाणे आप ना तिस सोग वियोग संताप। नरक पड़न तो क्यों रहे क्यों बंचे जमकाल क्यों आवन जाना विसर झूठ बुरा खै काल। मन जंजाली वेड़िया पी जंजाला माहे विण नावै क्यों छुटिए पापे पचै पचाहे। फिर फाही फासे कौआ फिर पछताना अब क्या हुआ। फाथा चो चुगै नहीं बूझे सतगुर मिले ता आखी सूझे ज्यो मछली।

आवा गौण मिटै गुर शब्दी आपे परखे बख्श लया एका बेदन दूजै व्यापी नाम रसायन विसरिया सो बूजै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त पाया नानक तारे तार नहारा हम मैं दूजा पर हरिया मनमुख पूलै जमकी कान पर कर जो है हाणे हाण मनमुख परम पवै बेबाण वे मार्ग मूसै मंत्र मसाण शब्द ना चीनै लवै कुबाण नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अगड़गड़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साज समावै गुरमुख परचै वेद विचारी गुरमुख परचै तरियै तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर विद जानी गुरमुख पाईऐ अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै विचार गुरमुख निभै सब परवार गुरमुख जपिए अंतर प्यार गुरमुख पाईऐ शब्द आचार शब्द भेद जाने जानाई नानक हों मैं जाल समाई गुरमुख तरती सच है साजी तिसमें उपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाए साच रतो पत स्यों कर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नामै क्यों साज समावै गुरमुख अष्टो सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पव जल तरियै सच सुद्धि गुरमुख सारे अवसर बिद जाणै गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते हम मैं जाए नाम रते सच रहे समाए नाम रते जोग जुगत विचार नाम रते पावै मुख द्वार नाम रते त्रिपवन सोजी होए नानक नाम रते सदा सुख होए नाम रते सिद्ध गोष्ट होए नाम रते सदा तप होए नाम रते सच करनी सार नाम रते गुण ज्ञान विचार बिन नामै बोले सब वेकार नानक नाम रते

अभ्यागत है ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उदर कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रैन आयर मह सब किश है, करमी पल्ले पाए, नानक नौ निद पाई है, जे चले तसैर जाए। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवियो, विच होमै जन्म विनाश, रसना हरस ना चखियो, कमला होयो परगास, बिख खादी मन मुख मुआ, माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम विण, त्रिग जीवन त्रिगवास, जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा, ता होवै दासन दास, ताय अंदन सेवा करे सतगुरु की, कबे न छोड़े पास, ज्यों जल में कमल अलिप तो वरता, त्यों विचे ग्रह उदास, जन नानक करे कराया सबको, ज्यों पावे तिव हर गुणतास, पौड़ी शती जोग वारसा, आपे गणत कीनी, आपे सिरट सब साजियानो, आप मत दीनी, सिमरत शास्त्र साजियान, पापुन गणत गणिनी, जिस बुझाए सो बुझसी, सच्चे शब्द पतिनी, सब आपे आप वरतदा, आपे बख्स मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला।

हर का मंदिर शरीर अत सोहना, हर हर नाम दिड़ मन मुखे आप खोआयन, माया मोह नित कड़ सबना साहब एक है, पूरे भाग पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला, ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंत फिरै, ना सत मुंड मुंडाई केसी, ना सत पड़िया देश फिरै, ना सत रुखी बिरखी पत्थर आप छावै दुख सहै, ना सत हस्ती बदे संगल, ना सत गाई काओ चरै, जिस हथ सिद्ध देवै जे सोई, जिसनो देत से आए मिलै, नानक तां को मिलै वडाई, जिस कट पीतर शब्द रवै, सब कट मेरे हौ सब ना अंदर, जिसे खुवाई तिस कौन कहै, जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे भुलावै कौन, जिसे भुलाई पंध से।

थम अहन से अंतर रहते आन ते बैरागी सत समान बोले परथर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप महला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ धूप छाप जे सम कर रह ता नानक आखे गुर को कह छे वरतारे वरतै पूत ना संसारी ना ओ दूत निरंकार जो रह समाए काहे पीखिया मंगण जाए पौड़ी हर मंदर सोई आखिया जिथों हर जाता मानस देह गुर बचनी पाया सब आत्म राम पछाता बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी तिन्नी जन्म गवाता सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला तीजा मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लखन है क्या मूर्ख का करना मूर्ख ओहो जे मुग्ध है अहंकारे मरना एतक माने सदा दुख दुखी मैं रहना अत प्यारा पवे खूहे क्यों संयम करना गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना हर नाम जपै आप उदरे ओस पिछे डुबदे पी तरना नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना महला पहला नानक आखैरे मना सुनिए सिख सही लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही तलबा पौसने आकिया बाकी जना रही अजराइल फरेस्ता होसी आए तई आवन जान न सुजई भीड़ी गली फही कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है हर रवर या सब आप हर की कीमत ना पवे किश कह ना जापे गुर प्रसादी साला ही है हर भक्ति रापे सब मंत्र हरिया होया हंकार गवापे सब किश हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला पहला सहंसर दान दे इंद्र रोवाया परशुराम रोवे घर आया अजय सो रोवे पीखिया खाए ऐसी दरगह मिले सजाए रोवे राम निकाला पया सीता लखमण विछड़ गया रोवे दैसर लंक गवाए जिन सीता आंदी डौरू वाए रोवे पांडव पै मजूर जिनकै स्वामी रहत है दूर रोवे जन्मे जा खोए गया एकी कारण पापी पया रोवे शेख मसाइक पीर अंतकाल मत लागे पीड़ रोवे राजे कन पड़ाए कर कर मांगे पीखिया जाए रोवे किरपन संचय तन जाए पंडित रोवे ज्ञान गवाए बाली रोवे नाहे पतार नानक दुखिया सब

जप तप सब किश मन्ने अवर कारा सब बाद नानक मन्या मनिया बुझिए गुर प्रसाद पौड़ी काया हंस तुर मेल करतै लिख पाया सब मैं गुप्त वरतदा गुरमुख प्रगटाया गुण गावै गुण उच्चरै गुण महे समाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया सब किश आपे।

रामकली की वार महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवा जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कट्टे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवा एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपुरै देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साद जन नानक है प्रभुजिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत पर प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हाँ तिस सेवी हाँ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन जिन सद ही वरतै नाल। महला पंजवा मेरा अंतर लोचा मिलन की क्यों पावा प्रभ तो है कोई ऐसा सज्जन लोड लहो जो मिले प्रीतम मोहे। गुरपुरै मिलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़ियावर ना कोए। पौड़ी देवन हार दा तार कित मुख सालाही है जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है। कोय न किस ही वस सब ना एक तार पाले बालक वांग देके आप कर करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है। सर्व तार समरथ हौ तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगया। सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई कीतियान सब रखे कुटुंबै नाल कार्ज आप सवारियान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल। महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। गुरवण तिण हरिया कीतिया नानक क्या मनुख। पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै कड़ी ना मोहत चसा तिस बिन ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो पवजल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्र है। सलोक महला पंजवा तन सो राग सुरंगड़े आलापत सब तिख जाए तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे ना। जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सदबलिहारै जाओ तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए। जो रते रंग गोविंद कै
ਹਾਂ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ।

जन नानक पाया अगम रूप अंत ना काहू जाए महला पंजवा तन सो वेला घड़ी तन तन मूरत पल सार तन सो दिन सो संजोगड़ा जित डिठा गुरदर सार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगमा पार हों मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेवार उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितिया न सौपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतिया न जिसनो लगा रंग सो रंग रत्या ओना एको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे पो गई ओना प्यारा रब ओ ना हां जो गई जिस मिलिया गुर आए तिन प्रभ जानिया हों बलिहारी तेनू जे खसमै पाणिया सलोक महला पंजवा हर एक सह नाल मैं दोस्ती हर एक सह नाल मैं रंग हर एको मेरा सज्जनो हर एक सह नाल मैं संग हर एक सह नाल मैं गोष्टे मुह मैला करे ना भंग जाने बिरथा जी की कदे ना मुड़े रंग हर एको मेरा मसलती पन्नन कण समरथ हर एको मेरा दातार है सिर दातिया जग हथ हर एक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मिलाया मस्तक तर कै हथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया जनतारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग महला पंजवां।

व्यापया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी वेख दो कड़ै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिस कहै स्वामी वल निरपौ सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थई जिसनो तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुरते मत लई श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा।

मन की किंगरी बजाई। पंच तत् लै हृदय राखो रह निराल मताड़ी, कहत कबीर सुनोरे संतो धर्म दया कर बाड़ी। कवन काज सिरजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया, भव निद तरन तारण चिंता मन, एक निमख नायो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जी ओ पिंड था दिया, जिसकी भाव भगत ने साधी रहा। पारतान पारतान पारती निंदा, पर अपवाद ना छूटै, आवागमन होत है फुन फुन, एहो प्रसंग ना टूटै। जेह कर कथा होत हर संतन, एक निमख ना कीनो मैं फेरा, लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर, ए संपै मोह माही, दया धर्म यार गुर की सेवा, ए सुपनंतर नाही। दीन दयाल कृपाल दमोदर, भगत वछर पैहारी, कहत कबीर पीर जन राखो, हर सेवा करो तुम्हारी। जेह सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार, निरपौ कै कर बजावै तूर, अनहद बजै सदा भरपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कत नाहे।

जे सिमरन करै तू केलो दीपक बान धरियो बिनतेल सो दीपक अमरक संसार काम क्रोध बेका डीले मार। जे सिमरन तेरी गत होए सो सिमरन रख कंठ पर होए सो सिमरन कर नहीं राखो तार गुरप्रसादी उतरै पार। जे सिमरन नाही तोहे कान मंदर सोवै पटंबर तान से सुखाली बिकसै जियो सो सिमरन तू आंदन पियो। जे सिमरन तेरी जाए बलाए जे सिमरन तुझ पोहै नाम आए सिमर सिमर हर हर मन गाइयै एहो सिमरन सतगुर ते पाइयै। सदा सदा सिमर दिन रात उठत बैठत सास ग्रास जाग सोए सिमरन रस भोग हर सिमरन पाइयै संजोग। जे सिमरन नाही तुझ पार सो सिमरन राम नाम आधार कहे कबीर जाका नहीं अंत तिसके आगे तंत न मंत। राम कली कर दूजा बाणी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंद च बंधन पाया मुक्त गुर अनल बुझाया। जब नख सिख एहो मन चीना तब अंतर मज्जन कीना पवन पत ओन मनो रहन खरा नहीं मृत ना जन्म जरा रहा। उल्टी ले सख्त सहारंग पैसी ले गगन मझारंग बेदी अले चक्र पयंगा पेटी अले राय नसंगा। चूकी अले मोह मयासा सस कीनो सूर गिरासा जब कुंभक भरपुर लीना तह बाजे अनहद बीणा। बगतै बग शब्द सुनाया सुनतै सुन मन बसाया कर करता उतर सपारंग कह कबीरा सारंग। चंद सूरज दोय जो स्वरूप ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप कर रे ज्ञानी ब्रह्म विचार ज्योति अंतर धरिया पसार रहाओ। हीरा देख हीरे करो आदेश कह कबीर निरंजना लेख। दुनिया होशियार बेदार जागत मुसीयत हौरे पाई निगम होशियार पहरुआ देखत जम ले जाई रहाओ। नींब पयो आंब आंब पयो नींबा केला पाका चार नालियेर फल से बरपाका मूर्ख मुग्ध गवार। हर पयो खांड रेत मैं बिखरियो हस्ती चुन्यो ना जाई कह कमीर कुल जात पाता जो चीटी होए चुन खाई। बाणी नाम देव जियो की राम कली कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनी ले कागद काटी ले गुडी आकाश मदे भरमी अले पंच जना स्यों बात बतौआ चीत सो डोरी राखी अले। मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले रहाओ। आनी ले कुंभ भराई ले उदक राजकुमार पुरंदरीये हस्त बिनोद विचार करती है चीत सो गागर राखी अले। मंदिर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडी अले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखी अले। कहत नाम देव सुनो तिलोचन बालक पालन पौडी अले अंतर बाहर काज विरोधी चीज सो बार कराखी अले। वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कवित ना गावो गो अखंड मंडल निरंकार मैं अनहद वेद मजाओ गो। बैरागी राम गावो गो शब्दा तीता नह दराता या कुल कह कर जाओ गो रहाओ। एड़ा पिंगला और सुख मना पौने बंद रहाओ गो चंद सूरज दो समकर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। तीर्थ देखना जल में पैसो जी जंत ना सतावोगो। 68 तीर्थ गुरु दिखाए कठी पीतर नाओगो। पंच सहाई जन की शोभा पलो पलो ना कहावोगो। नामा कह चित हर स्यों राता सुन समाध।

माय ना होती, बाप ना होता, कर्म ना होती काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहां ते आया। राम कोई न किसी केरा, जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ। चांद ना होता, सूर ना होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता, वेद ना होता, कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत है, सतगुरु होए लिखाया। राम कली कर दूजा, बनारसी तप करे, उल्ट तीर्थ मर

निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै। जथ रथ राय नंद राजा मेरा राम चंद, प्रणवै नामा तत रस अमृत पीजै। राम कली बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिया नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्श। लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जौ पारस नाम परस। देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर। इन पंचों मिल लूटे रहाओ, हम बाडो कब कुलीन हम पंडित। हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कबै ना नासी। कहो रविदास समय सबै नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे। मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगलाय और सुख मना, तीन बसाय कठाई। बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहां निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए। तहां निरंजन रमैया होए रहाओ, देव स्थान क्या निशानी। तह बाजे सबदा नाहद बाणी, तह चांदना सूरज पौन ना पानी। साखी जागी गुरमुख जानी, उपजै ज्ञान दुरमत शीजै। अमृत रस गगन अंतर पीजै, एस कला जो जाने पे ओ। पेटे तास परम गुरदेओ, दसम द्वारा अगम अपारा। परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट हाट पर आला। आले पीतर थाती, जागत रह सो कवो ना सोवै। तीन तलोक समाज पलोवै, बीज मंत्र लै हृदय रह। मनुआ उल्ट सुन महंग है, जागत रह ना अलिया पाख। पांचों इंद्री बस कर रख, गुर की साखी राख चीत। मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत, कर पल्लव साखा बिचारे। अपना जन्म ना जुए हारे, असर नदी का बंदै मूल। पच्छम फेर चढ़ावै सूर, अजर जरै सो निजर चरै। जगन्नाथ्यों गोष्ट करै, चौमुख दीवा जो द्वार। पलुवंत मूल बिचकार, सर्व कलाले आपे रहै। मन मान करत नाम है गुहै, मस्तक पद्म द्वालै मणि। माहे निरंजन त्रिपवन धनी, पंचे शब्द निर्मायल बाजे। टुलके चवर संख कान गाजे, दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान। बेणी जाचै तेरा नाम, राग नट नारायण।

जन जप मिलो सलो सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन कै बल बलले परखोत्म हर नाम जन गायो सब दालद दुख दलले विच देही दोख असाध पंच तातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई जो देखै सस कमले उनवै कहन कहन कहन हर गर जय मन बिकसै मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवै देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो अंध भले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम ते आयो हम सतगुर चरण पखे रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीशरो हम पापी शरण रखे तुम वड पुरख दीन दुख भंजनो हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सखे जो चंदन संग बसे निम बिरखा गुण चंदन के बसखे हमरे अवगन बिखिया बिखै के बहु बार बार निमखे अवगन आरे पाथर पारे हर तारे संग जनखे जिनको तुम्हार राखो स्वामी सब तिनके पाप करखे जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हरणखे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो जन पग लगे रहाओ जन्म जन्म के भूल चूक हम अब आए प्रभ शरणगे तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी हम राखो वड पापगे तुमरी संगत हर

गुण गावै स्वामी हौ बल बल बल तिन गे भवन भवन पवित्र सब किए जह धूर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह ना सकै हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवै तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुर सुने किलबिख नाम किलबिख पाप नाम हर काटे जब खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यो जल कुंचर तंदुए बंदो हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुरु हर जपने रहाओ हर तुम वड अगम गोचर स्वामी सब त्यावै हर रुणने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो पर पंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यो सलल सलल उठे बो लहरी मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जाना हम न जाही हर गहने हम बारक कौर दुस्त धारो हम करे प्रभु सिमरणे तुम जल निधार मान सरोवर जो सेवै सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांछ हर देवो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एको ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुरपग रे नरवाल सब दाल दुपाई दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाओ हर का गृहो रे आप सवार्यो हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हरे अपनी